ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 17वीं तिथि। तदनुसार

हम आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल से बोल रहे हैं 102.6 पर। आप जुड़े हैं हमारे प्रातःकालीन सभा में। आइए लेते हैं एक संक्षिप्त जानकारी उन कार्यक्रमों की जो अब से लेकर दिन भर तक एफएम रेनबो पर आएंगे आपकी जानिब। अब से कुछ देर बाद यानी ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसके ठीक कुछ देर में यानी 6:02 से और सुबह के 7 बजे तक आप जुड़ेंगे गौतम गौड़ के साथ कार्यक्रम सुप्रभात में। इसके ठीक बाद आप जुड़ेंगे रेणु भट्ट के साथ पर। रेणु भट्ट ही लेकर आएंगी गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। इसमें आज आप सुनेंगे एक जानकारी मॉर्निंग इन्फॉर्मेटिव ये कार्यक्रम रहेगा। सूचना प्रदेश कार्यक्रम के बाद एक बार पुनः हम आपको लिए चलेंगे हिंदी समाचारों के लिए सुबह के 8 बजे। 8:02 पर समाचारों के बाद पुनः गौतम गौड़ होंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के साथ। रेणु भट्ट लेकर आएंगी दिल के तराने गाने नए पुराने। इस कार्यक्रम में आप ताज़ा तरीन बॉलीवुड के गाने सुनेंगे नॉनस्टॉप। विदुषी वत्स इस कार्यक्रम के बाद लेकर आएंगी वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित हमारा दैनिक कार्यक्रम मैचलेस म्यूजिक आर सुबह 10:02 से। ज्योतिका सिंह के साथ जुड़ेंगे बॉलीवुड ट्रेल्स में। इसमें आप बॉलीवुड के गाने और सूचनाएं सुनेंगे सुबह के 11:02 से।

एक बार पुनः विदुषी वत्स लेकर आएंगी वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित हमारी अन्य दैनिक प्रस्तुति प्ले इट कूल। इसके बाद होंगे हिंदी में समाचार दोपहर के 1 बजे। ठीक समाचारों के बाद ज्योतिका सिंह ही लेकर आएंगी रेनबो हेल्पलाइन। इसमें आज आप सुनेंगे यूपीएससी प्रिपरेशन अ बिगिनर्स रोड मैप फॉर स्मार्ट स्ट्रेटजी एंड टाइम मैनेजमेंट पर हमारा कार्यक्रम। इसमें आमंत्रित अतिथि होंगे सुरभि यादव, जो कि यूपीएससी सीएससी 2025 की रैंक 14 होल्डर हैं, और इसके अलावा होंगे उत्कर्ष, यूपीएससी सीएससी 2025 के ही 32वें रैंक के उम्मीदवार। ये थी जानकारी उन कार्यक्रमों की जो आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुनेंगे अब से लेकर दोपहर और शाम तक। सुबह के 6 बजने को हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

स्वागत है। और इसी के साथ आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने विभिन्न क्षेत्रों पर अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। यह बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पी के मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों और उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई है। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोगों के लापता होने की खबर है। मौसम विभाग ने वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अमेरिका ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं। ये हमले हॉर्मुज और जल डमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों को निशाना के बाद शुरू किए गए हैं। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा कि सेना ने ईरान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में संचालित वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के जवाब में ये हमले किए हैं। मौसम विभाग का अगले 4 दिनों में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के मैच में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वैंकूवर में खेले गए मैच में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया है। इस जीत के साथ अर्जेंटीना भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। क्रिकेट में नॉटिंगम के ट्रेंट ब्रिज में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार समाप्त हुए।

मैं ना बदला तू ना बदली, दिल्ली देखो सारी बदल गई। नहीं, दिल्ली बदली नहीं है, सिर्फ मौसम बदला है। और दिल्ली तो दिल वालों की है। वेल नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड कॉफी टू ऑल। आपका होस्ट, आपका दोस्त आरजे गौतम जुड़ चुका है आपके साथ स्टूडियो में। एंड बेसब्रियां काफी हो जाती हैं अक्सर जीवन में ना, आपके बहुत सारी मुश्किलें हो ना, जब आपको घेर के रखें तो आप कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आते हैं और आपको लगता है कि क्या वो फैसला लूं जिससे ये जीत का जो फासला है ये तय हो जाए। मिलेगी परिंदों को मंजिल यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ये बेसब्रियां कम हो जाएंगी। सुप्रभात, लेकर आ गया हूं मैं 102.6 FM, दिल से दिल तक। अपने दिल की सुन के तो देखो एक बार।

बेसब्रियां ये जीवन में काफी होती हैं और यूं ही कुछ किए बिना हासिल तक तो ताज नहीं होते, मेहनत करनी पड़ती है। और हम भी मेहनत करने के लिए आ गए, आपको स्टोरी सुनाने के लिए आ गए, ताकि आपका दिन भी बन जाए। जो लोग अकेले चलते हैं ना, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। और अगर आपकी राह थोड़ी अलग होना तो कभी घबराना मत। चलिए एक छोटी सी प्रेरक कहानी सुनाता हूं, जो हमें सिखाती है कि दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय अपनी कमियों को पहचानना, उन्हें अपनी ताकत में बदलना ही असली सफलता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास पानी लाने के लिए दो बड़े घड़े थे। एक घड़ा एकदम सही था, लेकिन दूसरा घड़ा बीच में से थोड़ा फूटा हुआ था। कमियां सब में होती है ना। और जब भी किसान नदी से पानी भरकर घर लौटता, फूटा घड़ा आधा ही भर पाता था।

क्योंकि उसमें से पानी रिस जाता था। रोजाना ऐसा होता और सही घड़ा हमेशा अपनी तारीफ करता, मुंह मियां मिट्ठू बनता, जबकि फूटा घड़ा अपनी इस कमी के कारण बहुत उदास और शर्मिंदा रहता था। एक दिन फूटे घड़े ने किसान से अपनी गलती की माफी मांगी और कहा कि मेरी इस कमी की वजह से आपकी आधी मेहनत बेकार चली जाती है मालिक। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी रास्ते के उस तरफ ध्यान दिया है? जहां तुम रहते हो वहां कितने सुंदर फूल खिले हैं। घड़े ने देखा कि रास्ते के उसी किनारे पर बहुत सारे खूबसूरत फूल खिले। किसान ने समझाया कि मुझे तुम्हारी इस कमजोरी का पता था, मैंने उसी रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम जब भी नदी से लौटते हो तुम्हारे रिसने वाले पानी से उन बीजों की सिंचाई होती है। अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो मैं इतने प्यारे फूल कभी देख ही नहीं पाता। सीख ये है जनाब कि इस दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। हमारी कमियां ही अक्सर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। खुद को कभी कम मत आंकना। कहते ना कि खराब घड़ी भी अच्छा समय सही समय एक दिन में बताई देती है। और अपना टाइम आएगा। सुप्रभात सुन रहे हैं 102.6 FM।

वेल, आजकल मौसम कभी भी बदल जाता है और बड़े शहर की हवा कई बार आपके लिए दवा का काम करती है। कहते ना कि माँ बाप का साथ नहीं, किसी के कहे पे भरोसा हो जाए, ऐसी किसी में भी बात नहीं। ए बड़े शहर, तेरा बहुत कर्जा है मुझ पर, सब चुकाऊंगा बारी बारी। अपना अपना फर्ज तो निभाना ही है, लेकिन सबसे पहले ऐसी वाणी बोलिए जो खुल के झगड़ा होए, पर ऐसे से मत बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। ये तो मजाक की बात है, लेकिन वाणी शब्दों में मिठास, ये आपको जीवन में काफी आगे लेकर जाएगी, है ना। एक स्टोरी के माध्यम से बताऊं आपको। एक बार की बात है, एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया। अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता होगा, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा कि गलती तो मुझसे हो गई है, लेकिन गलती हो जाए, गलत फहमी या ना हो। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर दोबारा संत के पास पहुंच गया। उसके आगे क्या हुआ पता है आपको? जुड़े रहना पड़ेगा आपको हमारे साथ 102.6 FM, दिल से दिल तक। और परवाह, अपने हैं तभी तो सपने हैं, लेकिन परवाह कई बार अपने शब्दों की भी करनी पड़ती है। पत्थर के समय

अगर परवाह नहीं है तो परवाह करना सीखिए। अक्सर कहा जाता है कि रास्ते की परवाह करूंगा तो फिर मंजिल को बुरा लग जाएगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो ब्रेक बाय ब्रेक आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा, सफलता की तरफ लेकर जाएगा। नहीं होता विश्वास? तो चलिए हम लाए आपके लिए कुछ खास, वो कहानी जो आपको मोटिवेट करने के लिए मैं सुना रहा था ना। पॉजिटिव सोच के साथ शुरुआत होनी चाहिए, अच्छे शब्दों के साथ शुरुआत होनी चाहिए और बुरा नहीं बोलना चाहिए कभी किसी को। कि नहाए धोए क्या हुआ जो मन का मैल ना जाए, नीम सदा जल में रहे धोए बास ना जाए। वो कहानी मैं आपको बता रहा था कि संत ने किसान से कहा कि तुम खूब सारे पंख लेकर आओ और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया, महात्मा संत की बात मानी और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा कि अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। समझ में नहीं आया ना उस व्यक्ति के, उस किसान के समझ में भी नहीं आया था। किसान वापस गया, तब तक सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है, तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो पर चाहकर भी वापस नहीं ले सकते, है ना। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कुछ कड़वा बोलने से पहले ये याद रखें कि भला बुरा कहने के बाद कुछ भी करके अपने शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। एक बार तीर चल गया तो फिर चल गया। हाँ, आप उस व्यक्ति से जाकर क्षमा याचना जरूर कर सकते हैं और मांगनी भी चाहिए कि इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर दिया और उसे मैंने माफी मांग ली और खुद को मैंने माफ कर दिया। पर ह्यूमन नेचर कुछ ऐसा होता है कि कुछ भी कर लीजिए इंसान कहीं ना कहीं तकलीफ में होता है, हार्ट हो जाता है शब्दों के द्वारा। और जब आप किसी को बुरा कहते हैं ना तो वो उसे कष्ट पहुंचाने के लिए होता है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप सुन लीजिए, मीठी वाणी बोलिए ताकि सब लोग आपको सुने। सुप्रभात 102.6 FM RJ गौतम के साथ, एनर्जी चाहिए मॉर्निंग में।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
0: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो।

0: फजिन
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
1: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

102.6 FM दिल से दिल तक और सुप्रभात आरजे गौतम के साथ। और कहते हैं यार, मतलब अच्छे दोस्त ना आजकल बहुत कम रह गए हैं। कि दूर है मंजिल, कि दूर है मंजिल, फार है किनारा, फिर क्यों नहीं आता मैसेज तुम्हारा। भूल गए नंबर या यार नाम हमारा, या यू फाउंड समवन हमसे भी प्यारा। वेल, हमसे ज़्यादा प्यारा कोई होगा नहीं। एंड प्यारों में प्यारा कहते हैं कि रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है, हज़ारों से नहीं। अपने यारों को, अपने जिगरी को और अपने दोस्तों को अपने बहुत करीब रखिए, क्योंकि एक अच्छा दोस्त, एक सच्चा दोस्त बहुत सारी सौ नहीं कहूँगा मैं, हज़ार किताबों के बराबर होता है। और मेरे जैसा हो तो फिर बुक ऑफ नॉलेज, कंप्लीट पैकेज।

जिंदगी में छेड़ने के लिए दिलों की तार जरूरी है। दोस्त यार, दोस्त यारों के साथ भी थोड़ा सा समय व्यतीत कर लिया करो। वेल, समय ये कहता है कि हम आगे चलते हैं स्टोरी की तरफ, है ना। मोटिवेट करने के लिए आपको हूं मैं। जिंदा है तो प्याला पूरा भर ले, घुट घुट के क्या जीना। लेकिन कई बार उस प्याले को, उस ग्लास को नीचे रखना बहुत जरूरी है। पता कैसे? एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं आपको। एक प्रोफेसर ने अपने हाथ में पानी से भरा एक ग्लास पकड़ते हुए क्लास शुरू की। 50 ग्राम, 100 ग्राम, 125 ग्राम, क्योंकि सवाल यह था। उन्होंने उसे ऊपर उठाकर सभी स्टूडेंट्स को दिखाया और पूछा कि आपके हिसाब से ग्लास का वजन कितना होगा। बच्चों ने यह जवाब दिया, सर इतना थोड़ी ना ज्यादा होगा कि आप थक जाए। और जब तक मैं इसका वजन ना कर लूं, मुझे इसका सही वजन मैं आपको कैसे बताऊं। स्टूडेंट ने कहा, लेकिन प्रोफेसर ने बातों को ज्यादा ना घुमाते हुए कहा कि मेरा सवाल यह है, यदि मैं इस ग्लास को थोड़ी देर तक इसी तरह उठाकर पकड़े रहूं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना। अच्छा, और अगर मैं इसे इसी तरह 1 घंटे तक उठाए रखूं तो क्या होगा? यह सवाल फिर से प्रोफेसर का था। कई बार फिर से उड़ना काफी जरूरी होता है। आगे क्या हुआ ये आपको बताएंगे, लेकिन उड़ान के बाद। शून्य से सफर शुरू होता है, लेकिन शून्य पर खत्म नहीं होना चाहिए। बिगिनिंग इज एंडिंग एंड एंडिंग इज द न्यू बिगिनिंग। सुप्रभात।

कि हर दफा जिंदगी में मेहनत का सिक्का है कमाया मैंने और खुद ही गिरता संभलता रहा, कभी किसी को गिराया नहीं मैंने। आगे बढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी को पीछे खींचें, आप बस अपने आप पर फोकस कीजिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए। और मैंने आपसे कहा था ना कहानी की शुरुआत में कि जिंदा है तो प्याला पूरा भर ले, उस कहानी की तरफ लेकर चलता हूं मैं आपको, अक्सर मैं भी भटक जाया करता हूं। टीचर ने कहा कि इसका वजन बताओ मुझे, इस ग्लास का वजन बताओ। प्रोफेसर ने पूछा और कहा कि यदि मैं इस ग्लास को थोड़ी देर तक इसी तरह उठाकर पकड़े रहूं तो क्या होगा। स्टूडेंट्स ने कहा कुछ नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं इसे इसी तरह एक घंटे तक उठाए रखूं तो क्या होगा। प्रोफेसर ने पूछा। बच्चों ने कहा सर आपका हाथ दर्द करने लगेगा, कमाल कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो आप। प्रोफेसर ने कहा तुम सही हो। अच्छा, अगर मैं इसी तरह इस ग्लास को पूरे दिन उठाए रखूं तो क्या होगा। स्टूडेंट्स खड़े हो गए और एक स्टूडेंट ने कहा सर आपका हाथ सुन्न हो सकता है, आपके मसल भी खिंच सकते हैं, तनाव आ सकता है मसल में, लकवा मार सकता है और पक्का आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। इस पर सारे स्टूडेंट्स हंसने भी लगे। बहुत अच्छा, प्रोफेसर ने कहा पर क्या इस दौरान ग्लास का वजन बदला। मैं कभी एक घंटे उठाने की बात कर रहा था, कभी दो घंटे इस ग्लास को उठाने की बात कर रहा था, कभी पूरे दिन, लेकिन क्या इससे इसके वजन पर कोई फर्क पड़ा। उत्तर आया नहीं। तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया। स्टूडेंट्स काफी अचरज में पड़ गए। फिर प्रोफेसर ने पूछा अब दर्द से निजात पाने के लिए मैं क्या करूं, ग्लास को नीचे रख दीजिए। स्टूडेंट्स ने कहा बिल्कुल सही, कई बार लेट इट गो करना लाइफ में बहुत जरूरी होता है। लाइफ की प्रॉब्लम्स भी कुछ इसी तरह होती हैं, इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए और लगेगा सब कुछ ठीक है, उनके बारे में ज्यादा देर सोचिए और आपको पीड़ा होने लगेगी।

और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखिए और ये आपको बहुत ज्यादा घेर लेंगे और आप भी कहेंगे ये तो लोचा उल्फत हो गया। लोचा उल्फत नहीं होने दीजिए अपनी लाइफ में, इसीलिए तो हमें 102.6 FM सुप्रभात आरजे गौतम के साथ।

की दिल लागे बैठे सी तुसी दिमाग हिला गए। लोचा, ये केमिकल लोचा जो है आपके दिमाग में भी हो रहा होगा, लेकिन आपको करना ये है कि बस जपना है। क्या जपना? 102.6 FM, ये नाम याद कर लीजिए। वैसे तो आपके दिल पर लिखा ही हुआ है, लेकिन लेकिन लेकिन अब समय आ गया है कि मैं जाऊं। पता नहीं लगता यार समय कब व्यतीत हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा तभी तो रेणु भट्ट आएंगी। एंड गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR लेकर। तो मुझे पता है आप कह रहे हो तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ ना।

एफएम रेनबो पर प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं, विकास मार्ग पर चलता है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने विभिन्न क्षेत्रों पर अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेन देन, अवैध रूप से धन संग्रह और हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केवल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई है। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोगों के लापता होने की खबर है। मौसम विभाग ने वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अमेरिका ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद शुरू किए गए हैं। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि सेना ने ईरान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में संचालित वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के जवाब में ये हमले किए हैं। मौसम विभाग का अगले 4 दिनों में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के मैच में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली है। वैंकूवर में खेले गए मैच में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को हराकर 3-2 से हराया। इस जीत के साथ अर्जेंटीना भी क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गया है। और क्रिकेट में नॉटिंगम के ट्रेंट ब्रिज में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रनों से हरा दिया। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आपकी वाणी आकाशवाणी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं रेणु भट्ट, गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में, और आप सुन रहे हैं हमें 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर। आप हमारे साथ यूं ही बने रहते हैं, हमें पता है आपकी और हमारी दोस्ती बहुत खास है, बहुत अनमोल है। हम दिल्ली वाले बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे बारिश का, कि मानसून अपनी कृपा हम पर भी दिखाए, बरसाए और झमाझम बारिशों का दौर शुरू हो। तो कल बहुत बहुत अच्छी बारिश हुई है, और आज सुबह जब मैं स्टूडियो आ रही थी ना शो के लिए, तो 5 बजे से भी बारिश जो है शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि चलो अब सुबह हो गई है, मैं उठ जाती हूँ और अपने काम पर लग जाती हूँ। इसी तरह से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी उठ गए हैं और अपने काम के लिए तैयार हो गए हैं। नहीं हुए हैं तो बॉस उठ जाइए, नींद का दामन छोड़िए और देखिए दिन शुरू हो चुका है।

अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि कितनी भी कोशिश कर लें, जो गिरा हो जाती है, बन जाती है, उसे खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार बहुत अनजाने में ऐसी चीज़ें होती हैं, कई बार जानबूझकर होती हैं। अब यहाँ पर व्यक्ति का जो अपना विवेक है, अपनी समझ है, वो बहुत बहुत मैटर करती है। और उस समझ से हो सकता है कई बार आपका रिश्ता आपकी तरफ से नहीं, सामने वाले की तरफ से बचा हुआ हो। आपको लग रहा हो कि हाँ, मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ या करती हूँ, लेकिन हो सकता है कि सिर्फ को आपको ऐसा लगता है, जो होता है, जितने भी प्रयास होते हैं वो सामने वाले की तरफ से होते हैं। तो यहाँ पर ना अपने आप को बहुत अच्छे से ना, बहुत अच्छे से बोलती ना कि क्रिटिक बन के अपने ना देखना चाहिए अपने आप को, अपने कर्मों को, अपने कार्यों को, जो हम कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, आर वी डूइंग द राइट थिंग्स, हम सही चीज़ कर रहे हैं, सही दिशा में कर रहे हैं, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत मुश्किल लगती हैं चीज़ें, लेकिन होती नहीं है, बहुत ज़रा सा आपको बस बदलाव करना है। बदलाव की बात हम तो करते ही रहते हैं, जो भी चीज़ें बदलती हैं हम आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे इतिहास की, कि ऐसा क्या हुआ था आज के दिन इतिहास में, जिसने आज के दिन को इतिहास में ख़ास बनाया, और जो चीज़ें आज के दिन जानना ज़रूरी है। हम अगर समय में पीछे जाएं तो आज ही के दिन सन 1954 में सतलुज नदी पर निर्मित भाकड़ा नागल पन बिजली परियोजना पर बनी सबसे बड़ी नहर का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था। और वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 1497 में वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत की प्रथम जल यात्रा आरंभ की थी। और 1994 में शिमाकी मुकाई जापान की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी थी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिन्होंने आज के दिन को स्पेशल बनाया है और जिन्हें हम याद कर रहे हैं। और डेफिनेटली आपको ये बातें जानकर भी अच्छा लग रहा है।

वेल दिल नाचने के लिए क्यों कर रहा है? दिल नाचने के लिए इसलिए कर रहा है क्योंकि आज जन्मदिन है दो ऐसे पर्सनालिटीज़ का जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं। डेफिनेटली आप इनको जानते हैं और आप इन्हें पसंद करते हैं। हम बात कर रहे हैं सौरभ गांगुली की, जिन्हें हम दादा के नाम से भी जानते हैं, बुलाते हैं सारे, क्योंकि अगर हम भारतीय खिलाड़ियों की बात करें, क्रिकेट खिलाड़ियों की बात करें, तो इनकी गिनती सफलतम कप्तानों में होती है। और बाएँ हाथ से खेलने वाले एक बहुत बहुत बढ़िया बल्लेबाज रहे वो, उनका करियर बहुत बहुत अच्छा रहा। आज इनका जन्मदिन है, 8 जुलाई 1972 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ। ढेरों ढेरों पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया है, बहुत सारे प्राइजेस हैं इनके पास। अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया 1998 में। और अगर इनके पूरे नाम की हम बात करें तो सौरभ चंडीदास गांगुली इनका नाम है। और हम इनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं, बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं। लेकिन एक और नाम हम आपके साथ शेयर करेंगे और वो है नीतू सिंह, हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री। बहुत छोटी उम्र से उन्होंने फिल्मों में अपना डेब्यू कर लिया था, यानी कि चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उन्होंने अपने डेब्यू किया था फिल्म सूरज के साथ। और उसके बाद वो बाद में कई फिल्मों में आई और मोस्टली उन्होंने जो फिल्में की वो मल्टी स्टारर फिल्में रही जो बहुत बहुत हिट रहीं। और इनका भी आज जन्मदिन है, हम इन्हें बधाई देते हैं, इनके जन्मदिन के हम ढेर सारी शुभकामनाएँ देते हैं और हम चाहते हैं कि इनके स्वास्थ्य अच्छा रहें और जब ये स्क्रीन पर नजर आए तो हमें बहुत बहुत मजा आए। आप सभी को यूं ही हमारे साथ बने रहना है, आपको कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं करना है, बस छोटा सा काम करना है, आपको ट्यून करना है एफएम रेनबो और आपको उस चैनल को चेंज नहीं करना है, उसे लगा करके छोड़ देना है, हमारे साथ ही रहना है। गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर में आपके साथ हूं मैं रेणु भट्ट।

ऑलराइट, जब हम बात करते हैं अपने भावों को एक्सप्रेस करने की, अपनी बात को जो आप सोच रहे हैं उसे एक्सप्रेस करने की, तो उसके तरीके बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, आपको पता है कहा जाता है कि अगर आप अपनी कोई भी समस्या या कोई भी बात अगर अच्छे से लिख सकते हैं तो काफ़ी हद तक आप उसको सोल्यूशन उसका आपके पास ही है, आप उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। जब आप उस समस्या को लिख देंगे अच्छे से तो यानी कि वो ऑलरेडी आधी सॉल्व हो चुकी है, आपके मन में आपके दिमाग में बहुत क्लैरिटी है। तो लिखना इतना सशक्त होता है कि हर चीज़ हर व्यक्ति लिख नहीं सकता, और जिसके पास ये एक गुण है वो बहुत बहुत गुणी है। और हम आपके साथ अब साझा करेंगे उन कुछ व्यक्तित्व के बारे में बातें जिन्हें आज के दिन याद करना ज़रूरी है, और हम बात करेंगे बांग्ला साहित्यकार विष्णु डे जी की, जिनकी आज जयंती है। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था, 8 जुलाई 1909 में कलकत्ता में। और जैसे मैंने आपको बताया कि बांग्ला साहित्यकार रहे, और उनके द्वारा रचित स्मृति सत्ता भविष्यति इस के लिए उनको, इस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद के युग में एक बंगाली कवि, लेखक और शिक्षाविद रहे वो, और प्रतीकवादी के रूप में उन्होंने शुरुआत की अपनी कविताओं से। कुछ जवातें जैसे हम आपके साथ साझा कर रहे हैं आज इनकी जयंती के दिन, इनको बता दें कि साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ साथ इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, और नेहरू स्मृति अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आज इनकी जयंती, हम इन्हें याद करते हुए हम एक और व्यक्तित्व के बारे में आपके साथ बातें साझा करेंगे, लेकिन हम आपको ये ज़रूर बताएंगे कि इनकी कविताओं से काफ़ी लोगों के मन को छुआ उन्होंने, और गहराई तक वो गई। हम बात कर रहे हैं दूसरी बात, जो दूसरा व्यक्तित्व है जो हम आपके साथ साझा करने वाले हैं वो है गिरिराज किशोर जी, और आज इनकी भी जयंती है। और हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, साहित्यकार होने के साथ साथ ये एक कथाकार, नाटककार और आलोचक भी रहे, और इनकी रचनाएं जो हैं वो बहुत ख्याति इन्होंने प्राप्त की। एक बात जो हम आपके साथ शेयर करेंगे इनकी, कि जब इन्होंने लिखना शुरू किया, कुछ प्रमुख रचनाएं आपके साथ साझा करें, ढाई घर, पहला गिरमिटिया, शहर दर शहर, पेपर वेट, दावेदार, यातना घर, जुगलबंदी, और जैसे कई रचनाएं इन्होंने की। तो पहली रचना जब बहुत बहुत प्रसिद्ध हो गई तो भी इनकी जो बाद की रचनाएं हैं उनका कद पिछली रचना से ऊपर ही गया और ऊँचा ही होता गया, और ये इनके सशक्त लेखन का एक उदाहरण है। और हम इन्हें नमन करते हैं, आज के दिन याद करते हैं, नमन करते हैं, और ये भी बताना चाहेंगे आपको

किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, व्यास सम्मान जैसे सम्मानों से सम्मानित किया गया। आप यूं ही हमारे साथ बने रहे आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, रेणु भट्ट के साथ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

इस बात पर कोई संदेह नहीं है, यकीनन हमारा देश महान है और वर्ल्ड की शान है, और इसी तरह से हम ग्रो करते जा रहे हैं और करते जाना है। क्योंकि जब हम लाइफ की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, हमें आगे देखना चाहिए और आगे ही बढ़ते रहना चाहिए और अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब जब चिड़िया भी हवा में आकाश में उड़ती है ना, तो लौट कर वो अपने घर ही आती है, क्यों उधर आना ज़रूरी है। सब चीज़ें सीखना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, लेकिन बेसिक चीज़ें जो होती है ना, उनकी क्लैरिटी होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब हम देश के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें नागरिक होने के तौर पर, एक इंसान होने के तौर पर, हमें भी अपना विकास करना चाहिए और ये बातें सोचने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ हमें अपने आप में बदलने की ज़रूरत है। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर रेणु भट्ट के साथ आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर। आपको ढेर सारी बातें हम बता रहे हैं, ढेर सारी बातें हम बताते रहते हैं, और आपको अपनी बात हमें कैसे बतानी, आप मैसेज करते हैं, मैसेज आप करते रहेंगे, लेकिन आपको मेल भी करना है। आप मेल करेंगे ना तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। feedback@fmrainbow@gmail.com पर आपको मेल करना है। feedback@fmrainbow@gmail.com पर आप करेंगे मेल और हमें बताएंगे कि क्या चीज़ है जो आप हमें कहना चाहते हैं। आप फ्रिक्वेंसीज के माध्यम से ऐप और ऑनलाइन हर तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसी तरह जुड़े रहें और हमें सुनते रहें साल के 365 दिन 24/7, क्योंकि आपकी और हमारी दोस्ती बहुत ख़ास है, बहुत अनमोल है।

बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें अपने में ना बदलनी पड़ती हैं, बदलनी चाहिए ताकि हम एक बेहतर नागरिक बने। इससे पहले हम बात कर रहे थे ना, उससे जुड़ी हुई बात बोल रही हूँ। अगर हमें पता है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमें कचरा बाहर नहीं फेंकना, बहुत बेसिक बहुत छोटी सी बात पर हम बात कर रहे हैं, तो नहीं फेंकना है। अगर आपके पास है तो आप अपने पास रख सकते हैं और उसे किसी सूटेबल जगह पर डाल सकते हैं, या फिर जहाँ पर उसकी जगह है, या फिर आप अपने रैपर को अपने पास रखें, घर पर आके फेंक दें। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं आप जो कर सकते हैं। मेट्रो में जाएं तो उधम ना मचाएं, बहुत बड़ी सहूलियत है मेट्रो हमारे लिए। अगर हम दिल्ली की बात करें, जहाँ पर भी मेट्रो, बहुत अच्छी एक सुविधा है। तो इन सब बेसिक चीज़ों को, बेसिक एटिकेट्स के साथ हम जब चीज़ें फॉलो करेंगे ना, तो देखिए ये सारी चीज़ें सुधरती रहेंगी। व्यवस्था ख़राब करने में कई बार ना हमारा भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है। अब हम बात करेंगे बांग्ला कवि और साहित्यकार सुभाष मुखोपाध्याय की, जिनके आज पुण्यतिथि है। और ये बहुत बड़ा नाम है बांग्ला अगर साहित्य की बात करें तो। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। सन 1940 में एक छात्र रहते हुए इन्होंने पदातिक

यानी कि पैदल यात्री कविता का अपना पहला खंड प्रकाशित किया और कई आलोचक इस पुस्तक को आधुनिक बंगाली कविता के विकास में एक मील का पत्थर मानते हैं और इस तरह से इनके करियर की शुरुआत हुई और वो प्रमुख बंगाली साहित्यिक पत्रिका परिचय के संपादक भी रहे और बच्चों के लिए इन्होंने कुशल और लोकप्रिय लेखक भी रहे। बच्चों के बीच में इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा, बच्चों के लिए भी लिखा और बड़ों के लिए भी लिखा। पत्रकारिता में भी ये सक्रिय रहे, गद्य की रचनाएं भी की इन्होंने और आज इनकी पुण्यतिथि पर हम इन्हें याद कर रहे हैं और अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं। आपको बस एक काम करना है छोटा सा, आपको पता है ना, पता है मैं दोबारा नहीं बताऊंगी आपको।

ऐसा कुछ नहीं होता, सच में कुछ नहीं होता। मानते हैं आप इसे ऐसा कुछ होता है तो एक बार ट्राई करके देखिए, हंस के देखिए आपको प्यार होता है या नहीं होता। और जो भी होता है वो हमें ज़रूर बताएं। हमको सब कुछ आप बताते रहें, लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब हम गाड़ी लेके बाहर निकलते हैं ना, तो पूरी कोशिश करते हैं कि हम ना ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। अभी ये बात कितनी सच है बताइए, करते हैं हम फॉलो? बहुत बार करते हैं। कई बार होता है अनजाने में हमारा चालान कट जाता है। अगर ऐसा अनजाने में आपके चालान्स कटे हैं जो पेंडिंग है, जो आपने नहीं सॉल्व कराए हैं, जिनको रिजॉल्व नहीं किया है, तो आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, कान खोल कर सुनिए आप। 12 जुलाई को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, और जिन भी लोगों की गाड़ियों के चालान कटा है आप ज़रूर यहाँ पर जाएं। कहाँ पर लगेगी, कैसे लगेगी बता देती हूँ आपको। 12 जुलाई को लगने वाली है, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक। और ये स्पेशल लोक अदालत दिल्ली के सभी ज़िला अदालत परिसरों में चलने वाली है। 30,000 राउस एवेन्यू, पटियाला हाउस, करकडूमा, रोहिणी, द्वारका और साकेत कोर्ट इसमें शामिल है। आपको कोर्ट में जाना होगा, जो नाम आपकी चालान स्लिप पर लिखा होगा वो आपको पता होगा कि आपका कहाँ पर है। एक चीज़ आपको बार बार हम बताते हैं कि जब आप ऐसी जगह पे जाएं, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि पैर आप अपने साथ ना सारे फोटोकॉपीज लेके जाएं। आप फोटोकॉपी ज़रूर कराएं, अपने चालान का अपने पास रखें। और जो चालान 31 मार्च 2026 तक वर्चुअल कोर्ट में लंबित हैं उनका निपटारा किया जाएगा, और ट्रैफिक चालानों का भी निपटारा किया जाएगा, नोटिसों का भी निपटारा किया जाएगा। तो आप पहले चेक करें और सारे उसके फोटोकॉपीज अपने पास रखें, ताकि आप जाएं और अपना काम तुरंत तुरंत आप करवा सकें। इन सभी बातों का ध्यान रखें, और बहुत बहुत ध्यान रखें जब आप सड़कों पर गाड़ी लेकर निकलते हैं। तो गाड़ी के साथ साथ आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप रूल्स भी फॉलो करें। एनी हाउ, किसी भी तरह से रूल जो है वायलेट नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें।

वेल, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी, पर एक बात आपको जाते जाते जरूर बताना चाहूंगी कि स्वामी नारायण मार्ग एक महीने के लिए बंद रहने वाला है। अगर आप उस तरफ से जाते हैं तो आप जरूर अपना ऑल्टरनेटिव रूट लेकर रखें। उत्तरी दिल्ली में स्वामी नारायण मार्ग, नंदलाल मार्ग रेड लाइट से शास्त्री नगर रेड लाइट तक यातायात प्रभावित रहने वाला है। पीडब्ल्यूडी ने यहां पर सीमेंटेड रोड निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से 3 अगस्त तक ये स्ट्रेच पूरी तरह से बंद रहने वाला है। तो आप ज़रूर अपना ऑल्टरनेटिव रास्ता ढूंढें। आपने ढूंढ लिया होगा, नहीं ढूंढा है तो आप ज़रूर इसके बारे में सोचें और अपना समय बचाएं ताकि आपको रास्ते में समय ना लगे। और मेरे जाने का समय हो गया है। मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो आप मेरे जाने के बाद आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर सुन सकते हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग डेली NCR का दूसरा घंटा गौतम के साथ, और ठीक 9 बजे आपके साथ आऊँगी मैं दिल के तराने गाने नए पुराने में, और 10:02 पर आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम मैचलेस म्यूजिक का विदुषी के साथ। आप इन सभी प्रोग्राम्स में हमारे साथ बने रहें, आप हमारे साथ 24/7 रहें, क्योंकि हम और आपकी दोस्ती हमारी बहुत खास है और एंटरटेनमेंट का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म होने वाला बिल्कुल नहीं है। गुड बाय, टेक केयर।

आखिरी कुछ नहीं है, थोड़ी जमीन मिल गई, आसमान अभी बाकी है। कौन कहता है मुझ में थकान अभी बाकी है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड कॉफी टू ऑल। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त आरजे गौतम, एक बार फिर से आ गया। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, लेकर जुड़े रहिए हमारे साथ।

वेल, कोई भी गुम हो जाए लेकिन आप कहीं गुम मत होइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एंड चलिए चलिए चलते हैं, चलना ही हमारी दलील है कामरानी, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और कहीं ना कहीं कोशिश यही कीजिए जब मॉर्निंग में आप उठे ना तो पॉजिटिव थॉट के साथ उठे। कहें कि किसी को पसंद आओ क्या फर्क पड़ता है, लेकिन खुद को पसंद आना बहुत जरूरी है। और लोग आपको देखकर कहें कि एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे? हर रोज जीतेंगे, बार बार जीतेंगे।

नहीं जी, मैं कहता हूँ हर रोज होता है और आपसे ही होता है। 102.6 FM, दिल से दिल तक। और स्टूडेंट्स यार, यही तो सबसे बड़ी जंग है कि हर कोई छात्र एडमिशन के लिए थोड़ा सा तंग है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। हालांकि इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे पता लगा कि यार नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आपको अलर्ट करने के लिए आपकी सारी जो क्वेश्चंस हैं, आपके सारे जो सवाल हैं, उनका जवाब देने के लिए एक नाम याद कर लो, वह छात्र प्रहरी और कैंपस दोस्त। दाखिले की दौड़ में जुटे विद्यार्थियों और अभिभावकों तक ऐसी जानकारियां कॉलेजों के छात्र प्रहरी और कैंपस दोस्त पहुंचा रहे हैं। और DU में स्नातक दाखिला प्रक्रिया के बीच मार्गदर्शन के लिए कॉलेजों में छात्रों की ओर से विशेष जागरूकता अभियान शुरू किए गए हैं। कैंपस कनेक्ट जैसी पहल के माध्यम से छात्रों को प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी हर जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, तो फिर देरी किस बात की है। वैसे हम भी तो आपके दोस्त हैं ना, ये दोस्ताना सलामत रखने के लिए आप

आपको जागना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। साथ ही साथ निभाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर जोर लगाना, जोर नहीं शोर कर लो, कम वाइब कर लो, वाइब वाइब।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक।

0: रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।

मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और ऑसम वैसे आप कितने भी हो ऑसम, बहुत जबरदस्त हो रखा है दिल्ली का मौसम, क्या कहूँ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। वाओ फैक्टर जरूर है, लेकिन ऐसे में भी काम पर तो जाना ही पड़ेगा, काम करो और फल की इच्छा ना करो। वेल, मानसून की बारिश ने दिल्ली यूपी से लेकर मुंबई तक आफत मचा रखी है। दिल्ली एनसीआर और यूपी के कई जिलों में सुबह से बारिश हो रही है। देखो बारिश हो रही है, इट्स रेन, इट्स रेन, इट्स रेनिंग, मजा आ रहा है और मेरा दिल भी बोल रहा है हड़िप्पा, मजा आ जाए। चाय समोसे का स्वाद लुफ्त उठाने के लिए आप लोग लगे होंगे, लेकिन मौसम विभाग ने आज महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का हाई अलर्ट भी जारी किया। अभी आया नहीं है जो, अभी आने वाला है जो, वो प्यार का तूफान है, बिकॉज आई लव यू एंड आई नो यू लव मी बैक एज वेल।

एक पौधा बनता पेड़ और सुख संपदा देता ढेर, ढेर सारी खुशियां भी और प्यार बांटता चलो, प्यार बांटते चलो माफ कीजिएगा। और इसी के साथ ये प्यार और भी परवान चढ़ जाता है जब आपका साथ हमें मिल जाता है। मैं कहता हूं कि साथ ही साथ निभाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर जोर लगाना। ये जोर किस तरीके से लगाया गया है? NDMC ने 34 स्थानों पर 612 वृक्ष तो 50,200 झाड़ियां लगाई। NDC के चेयरमैन केशव चंद्रा, दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा समेत अन्य लोग इस अभियान में शामिल हुए। और दिल्ली सरकार ने बहुत ही अच्छी मुहिम ये लगाई है ना, मतलब मौसम बहुत सुहाना है ही, साथ में देखिए लिखनी है आपको नई कहानी तो पीते रहिए पानी, डिहाइड्रेटेड मत रखिए अपने आप को। वेल बादल बरसो बिजोली, और पानी तो देखिए कमाल करता ही आपकी सेहत के लिए, और जैसा मौसम अभी हो रखा है ना तो फिर इसमें तो एक नई कहानी बनती है लॉन्ग ड्राइव की। अगर ड्राइव करते हुए जा भी रहे हैं ऑफिस तो भी एंजॉय कीजिए। 102.6 FM।

महल की बात नहीं करते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी मीनार और सोने के दिनार दूर से चमकती हैं। कहते हैं ना कि ब्रेड पे बटर और क्रिकेट में कटर, ये सबको पसंद है, लेकिन फीफा की भी बात कर लेते हैं। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हराकर फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और अटलांटा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में अर्जेंटीना कमाल कर दिया, 2-0 से पीछे कहीं ना कहीं थी। और यहां से रोमेरो और फर्नांडीज ने 13 मिनट में 3 गोल कर टीम को जीत दिला दी। वर्ल्ड कप इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब अर्जेंटीना की टीम 2 गोल से पिछड़ने के बाद वापसी, कमबैक, ये लाइफ में कमाल का होना चाहिए। नजरें हैं और सेटबैक पे हो तो क्या हुआ, कमबैक कभी भी हो सकता है। देखना है उसकी उड़ान को तो जाओ और ऊंचा कर दो आसमान को। स्काई इज द लिमिट, फ्लाई हाई।

वेल, यकीन रखना खुद पर काफी जरूरी है। जहाँ चाह है वहाँ राह है, और राहतों का ये सफर हमारे साथ आपका खूबसूरत जरूर होगा, बिकॉज अभी तो शुरुआत हुई है। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसले से बड़ी तो नहीं। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए।

मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए। लेकिन एक चीज है जो मत छोड़िएगा, हमें जाने के लिए मत कहिएगा। हम जिद करेंगे लेकिन फिर भी लौट कर आएंगे। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं।

बिल्कुल नहीं कि किसी से मिलता जुलता नहीं है आजकल, कि किसी से मिलता जुलता नहीं है आजकल। वो खुद को अच्छे से जान रहा है, वो तैयारी कर रहा है एक बड़ी उड़ान की। लोग सोच रहे परिंदा हार मान रहा है, परिंदे तैयार है उड़ान भरने के लिए। बिकॉज आईआईटी दिल्ली ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए यूजी, पीजी और पीएचडी छात्रों का ओरिएंटेशन और रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम जारी कर दिया है। संस्थान के अनुसार यूजी कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले नए छात्र 20 जुलाई से हॉस्टल में रिपोर्ट कर सकेंगे एंड 21 जुलाई से ओरिएंटेशन की शुरुआत होगी, जबकि 21 से 25 जुलाई तक 5 दिवसीय इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। एक नई शुरुआत के लिए नाचो जश्न मनाओ। मैं तो कर नहीं पाया आईआईटी, लेकिन बेस्ट विशेस सभी को।

हर इम्तिहान के सामने मुस्कुरा कर खड़ा हूँ, देखो मुश्किलों में तुमसे कितना बड़ा हूँ। वेल, अगर किसी को आपसे लाइफ में प्रॉब्लम है ना, तो वो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है ना। ये उपदेश मैं देना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के साथ। मस्ती है तो हस्ती है, नहीं तो जिंदगी बहुत सस्ती है। और मस्ती होती रहनी चाहिए रोज, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। 102.6 FM दिल से दिल तक।

आप नेचर के जितने करीब रहेंगे आपका नेचर भी उतना, स्वभाव जो है ना वो उतना और भी अच्छा हो जाएगा। स्वभाव में मिलावट, कार्य में रुकावट और मुझ में थकावट, ये आपको कभी नजर नहीं आएगी बिकॉज कार्य प्रगति पर है। और बारिश के चलते तापमान में गिरावट जरूर आई है और पिछले कई दिनों से उमस और गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली।

होगी ये हसी वादियां। और मन कर रहा होगा आपको भाई कि थिरक लिया जाए थोड़ा, तो थिरक लीजिए, मॉर्निंग वर्कआउट भी हो जाएगा। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

वेल, रुकावट में कोई खेद नहीं है और इस टाइटैनिक में कोई छेद नहीं है, कार्य प्रगति पर है, लेकिन मेरे जाने का समय आ गया है और जब भी मैं जाता हूं तो कहता हूं कि जेंटलमैन, दिस इज द डे यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट यू ऑलमोस्ट गॉट कैप्टन जैक स्पैरो। नाउ कैप्टन जैक स्पैरो इज साइनिंग आउट, लेकिन मैं जाऊंगा तभी तो रेणु भट्ट आएंगी और उसके बाद वेस्टर्न म्यूजिक लेकर विदुषी वॉट्स होंगी आपके साथ। बॉलीवुड प्रेज विद ज्योतिका सिंह।

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अलनीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई जगहों पर छापेमारी की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर हमला के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल में प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने की समय सीमा में अब केवल 4 वर्ष शेष हैं, लेकिन अब तक केवल 36% लक्ष्यों पर ही संतोषजनक प्रगति हुई। संयुक्त अरब अमीरात के शारजा से पाकिस्तान के कराची जा रहे एक बोइंग 737 विमान नेविगेशन प्रणाली में खराबी और पाकिस्तान में हवाई यातायात नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूटने के बाद लापता हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पुरुष T20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया है। 5 मैचों की श्रृंखला के तीसरे मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए कल रात नॉटिंगम में इंग्लैंड ने भारत को 202 रन का लक्ष्य दिया था। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

एफएम रेनबो पर प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल को ट्यून करो। देखो क्या मैजिक होता है, मैजिक ही मैजिक है यहाँ पर हर घंटे में। आप सभी के साथ हूँ मैं रेणु भट्ट, दिल के तराने गाने नए पुराने में लेकर आई हूँ ढेर सारा नया म्यूजिक और तीन रेट्रो गानों का तड़का। डेफिनेटली आपको पसंद आने वाले हैं। आपको पसंद आते हैं तो हमें ज़रूर बताएं, अगर आपको कम पसंद आते हैं तो भी हमें बताएं। और जब बात करने का दिल हो तो आप बिंदास हमारे सभी तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेल भेजेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आपने देखा ना, मैं मेल पे बहुत ज़्यादा जो है एम्फेसाइज करती हूँ। feedback@gmail.com पर आपको हमें मेल भेज कर बताना है कि क्या चाहते हैं आप, क्या सुनना पसंद करते हैं, क्या पसंद आ रहा है आपको, क्या ना पसंद आ रहा है, ये भी बता सकते हैं।

एग्जैक्टली यही तो हम आपको बताते रहते हैं कि बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, शर्माना भी नहीं है। शर्माना क्यों है भाई, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने में इसमें शर्म वाली क्या बात है? जब रेड लाइट हो रही है तो आपको रुकना है, जब ग्रीन हो रही है तो आपको चलना है। बहुत सिंपल फंडा है ये, लो आपको अलर्ट रहने के लिए बता रही है कि अलर्ट रहना आपको इस टाइम पर, देखिए अपने आसपास क्या हो रहा है, क्विक एकदम गाड़ी भगा के नहीं ले जाना है, रुकना है, आपकी सहूलियत के लिए है वो। अगर आपको नहीं लगता कि आपकी सहूलियत के लिए, तो आप सोचिए कोई चीज़ मेरे सामने आ रही है, ये रूल्स बने तो क्यों बने, इसको फॉलो करने के लिए बने। तो बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, शर्माना भी नहीं है, प्राउडली आपको कहना कि मैं ट्रैफिक रूल्स फॉलो करता हूँ और करती हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दिल्ली की सड़कों का हाल क्या है। अगर आप मेहरौली बदरपुर रोड पर हैं तो आप डेफिनेटली ट्रैफिक में फंसे हुए हैं वहाँ पर, और अगर आप शहीद भगत सिंह मार्ग पर हैं तो आपको 10 मिनट का डिले मिल रहा है। द्वारका फ्लाईओवर पर भी 12 मिनट का डिले है, और अगर आप रावतुला राम मार्ग पर हैं तो आप रुक रुक के चल रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे पर भी आप रुक रुक के चल रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई और बात बताना चाहते हैं तो आप हमसे जरूर शेयर करें 9868107070 पर, 9868107070 पर आपको हमें व्हाट्सएप करना और बताना है दिल्ली की सड़कों का हाल, दिल्ली की सड़कों पर कहाँ पर आपको ट्रैफिक मिल रहा है, कहाँ पर आपको एकदम स्मूथ रास्ता मिल रहा है। वैसे बारिश का मौसम है और ये पीक टाइम है, अगर आपको स्मूथ रास्ता मिल रहा है तो हमें ज़रूर बताएं। और हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में बेहद बेहद खूबसूरत ट्रैक, दिल के तराने गाने नए पुराने में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर, रेणु भट्ट के साथ बने हुए हैं आप।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ हमारे फोन इन प्रोग्राम्स जो आप सुन सकते हैं। 1:02 पर आप सुनेंगे रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम, और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते होंगे, कोई बड़े बड़े एग्जाम यूपीएससी जैसे, तो आपको सोच में पड़ जाते होंगे कि किस तरह से शुरुआत करनी है, कैसे हम प्रिपेयर करें, तैयारियाँ कैसे करें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर आए। आप ज़रूर इस प्रोग्राम को सुने, अपनी क्वेरीज हम तक पहुँचाएं। हम बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रिपरेशन अ बिगिनर्स रोड मैप फॉर स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड टाइम मैनेजमेंट, और हमारे गेस्ट रहेंगे सुरभि यादव। आप यूपीएससी सीएससी 2025 रैंक 14 है, और उत्कर्ष आप यूपीएससी सीएसई 2025 के रैंक 32 हैं। ज्योतिका सिंह रहेंगे आपके साथ। आप ज़रूर 1:02 पर हमारे साथ जुड़ें, और हम बात करेंगे अब रेडियो डॉक्टर की, जिसका समय है 3 बजे, और आप सभी को बहुत अच्छे से पता है ये समय। आज हम बात करने वाले हैं फ्रैक्चर्स कॉजेज एंड ट्रीटमेंट्स पे। तो फ्रैक्चर्स पे बात करेंगे, हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर विनय सिंगला, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, और डॉक्टर अजय शर्मा, आप भी ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। तो हम चाहते हैं कि आप इन कार्यक्रम

फिल्मों में हमारे साथ ज़रूर बने रहें, और वैसे हम चाहते हैं कि आप 24/7 हमारे साथ रहें, और आप हमारे साथ रहते भी हैं क्योंकि आपकी और हमारी दोस्ती बहुत ख़ास है, बहुत अनमोल है। आप सभी के लिए ये बेहद खूबसूरत ट्रैक मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, दिल के तराने गाने नए पुराने में, रेणु भट्ट के साथ हैं आप।

देखो आप कभी भी जाओ, कहीं भी जाओ, किसी भी समय पे जाओ, पर जो वेदर फोरकास्ट है ना वो अभी देख कर जाना, कहीं बाहर फंस ना जाओ, क्योंकि मानसून सीजन है, बारिश हो रही है। और अगर आप बाहर ऐसे किसी समय में जाएंगे जहाँ पे बारिश हो गई और आपके पास कुछ बचने का साधन नहीं है, तो फंस भी सकते हैं। तो अपने आप के पास आपको काफ़ी चीज़ें रखनी है जो आपको बचाए बारिश से, ठीक है। और अब फंस जाएंगे तो क्या ही कर सकते हैं, इन्जॉय करिए बारिश को। मैं आपको बता देती हूँ कि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर क्या रहने की संभावना है। अगर अभी करंट टेम्परेचर की तरफ नज़र डालें तो दिल्ली में 29 डिग्री सेल्सियस है, जो अभी आज का मैक्सिमम टेम्परेचर भी है। और न्यूनतम तापमान की ओर नज़र डालें तो 26 डिग्री सेल्सियस, और नंबर बहुत कम है, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, आपको अपना बचाव करने की ज़रूरत है। पानी पीते रहिए, कुछ ना कुछ लिक्विड आप लेते रहिए, ताकि आपकी बॉडी को पानी की कमी ना हो। और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भारी काम ना करें तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। अगले कुछ दिन आपको ऐसे ही बारिश में आपको भीगना पड़ सकता है, और आप बारिश का, मानसून का लुत्फ ले सकते हैं। आप सुन रहे हैं कर गुड मॉर्निंग दिल्ली, तो नहीं सुन रहे हैं दिल के तराने गाने, नए पुराने सुन रहे हैं आप रेणु भट्ट के साथ, और एक बेहद खूबसूरत ट्रैक मुकेश और शारदा की आवाज़ में। आप सभी के लिए समय में पुराना ज़रूर है, लेकिन आपको बहुत पसंद आने वाला है।

12 मेरे जाने का समय हो गया, लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी, सिर्फ लवली को जो है खुश नहीं करना, लवली के साथ जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग आपको मिलते हैं, आपके आसपास हैं, आपके घर में हैं, बाहर हैं, ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में, उन सबको खुश करना है भाई। बहुत ही छोटे छोटे आपको काम करने हैं, कुछ काम नहीं भी करेंगे, चेहरे पर स्माइल रखेंगे तब भी बहुत बहुत बड़ा एक काम हो जाएगा। ये यकीन मानिए, आप चेहरे पर स्माइल रखें, काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। मैं रेणु भट्ट आपसे इजाज़त लूँ, लेकिन जाने से पहले आपको बताना चाहूँगी मेरे जाने के बाद आप कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो FM रेनबो पर सुन सकते हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम मैचलेस म्यूजिक का, विदुषी रहेंगे आपके साथ, ज्योतिका सिंह के साथ आप सुनेंगे बॉलीवुड ट्रेल्स 11:02 पर, और आप विदुषी के साथ ही सुनेंगे प्ले इट कूल 12:02 पे। तो आप ये और सारे प्रोग्राम्स आप हमारे साथ सुने, हमारे साथ बने रहें, हम यही चाहते हैं, क्योंकि आपकी हमारी दोस्ती बहुत खास है और एंटरटेनमेंट का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म होने वाला बिल्कुल नहीं है। तो मैं रेणु भट्ट लेती हूँ आप सभी से इजाज़त, गुड बाय एंड टेक केयर।

0: It's time for a short break now. Stay with us because we'll be right back with more unforgettable melodies.
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू 102.6 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी FM रेनबो एंड दिस इज द मैचलेस म्यूजिक आर। आवर म्यूजिकल जर्नी नाउ टेक्स अस टू अ टाइमलेस क्लासिक दैट ब्यूटिफुली कैप्चर्स द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड लॉन्गिंग। स्पीकिंग ऑफ द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड लॉन्गिंग, आई थिंक दिस ऑल पेयर्स रियली वेल विद द वेदर दैट वी हैव आउटसाइड। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस सॉन्ग, इट इज बियॉन्ड द सी by Bobby Darin. It was released in 1959 and became one of Bobby Darin's signature songs, celebrated for its vibrant swing, style and unforgettable charm. Let's listen to Beyond the Sea.

0: That was Oh Mere Dil Ke Chain. It's time right now for another short break. Stay with us because there is plenty more wonderful, wonderful music coming up for you.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू 102.6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM रेनबो एंड दिस इज द मैचलेस म्यूजिक आर। वी हैव बीन लिसनिंग टू द टाइमलेस ब्यूटिफुल मेलोडीज विच आर मेकिंग आर वेंसडे मॉर्निंग अ लिटिल बेटर विद द ब्यूटिफुल वेदर आउट देयर। सो मूविंग ऑन, वी आर मूविंग विद दिस ट्रैक दैट वॉज रिलीज्ड इन 1977। इट इज बाय द बी जीज, रिटन बाय बैरी रॉबिन एंड मोरीस फॉर द फिल्म सैटरडे नाइट फीवर। विद इट्स gentle melody, heartfelt lyrics, it became one of the trio's most beloved songs and remains a classic of soft rock and pop. It is How Deep Is Your Love.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
9: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
10: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू 102.6 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी FM रेनबो एंड दिस इज द मैचलेस म्यूजिक आवर वेयर वी हैव ट्रैवल्ड थ्रू द साउंड्स ऑफ द 50s, 60s, 70s एंड नाउ द वेरी अनफॉरगेटेबल 80s। सो वी आर गेटिंग इनटू दिस डेकेड विद वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट, नन अदर देन Billy Joel. Released in 1983, we are going to play Uptown Girl, which became one of Billy Joel's biggest hits and continues to win hearts with its catchy tune and timeless charm. Here is Uptown Girl.

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं हूं ज्योतिका और आप सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं आप? बॉलीवुड ट्रेल्स सिर्फ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। हर हफ्ते की तरह एक बार फिर हम लेकर आए हैं बॉलीवुड की दुनिया की वो खबरें, वो बातें, वो दिलचस्प किस्से, कुछ नए अपडेट्स और ढेर सारे यादगार गीत जो आपके साथ पूरा वीक रहते हैं। बॉलीवुड सिर्फ एक फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, जबकि ये एक जज्बातों का एक खूबसूरत सफ़र है। कभी कोई गाना हमें बचपन की याद दिला देता है, कभी कोई डायलॉग जिंदगी का नया नज़रिया दे देता है, और कभी कोई फिल्म हमें हंसाते हंसाते कुछ गहरी बात भी सिखा जाती है ना? आज के इस सफ़र में हम बात करेंगे इस महीने जुलाई के मंथ में कि कुछ चर्चित फिल्में जो रिलीज़ होंगी, जो रिलीज़ हो चुकी हैं, और उन कलाकारों की जिन्हें बड़े पर्दे पर देखने का इंतज़ार है। बॉलीवुड की कुछ रोचक बातें भी हम करेंगे यहाँ।

तो अगर आप चाय की चुस्की ले रहे हैं, ऑफिस में हैं या कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हैं, अगले एक घंटे तक मैं आपके साथ यहीं बनी रहूंगी, क्योंकि शुरू हो रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स। और क्या, शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जो बॉलीवुड की तरह ही हमेशा ताजा महसूस होता है।

दिल्ली का मौसम आज बहुत ही प्यारा है और जब किशोर दा के गाने आपके साथ हो जाएं तो उन पे क्या कहते हैं ना, सोने पे सुहागा हो जाता है। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स विद मी ज्योतिका, ओनली ऑन एफएम रेनबो। देखिए, जुलाई का महीना बॉलीवुड के लिए काफी दिलचस्प रहा है और इस महीने की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है अल्फा, जो हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। ये फिल्म यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है और इसका निर्देशन शिव रावेल ने किया है। फिल्म में आलिया भट्ट और शर्वरी लीड रोल्स में आपको यहां नजर आएंगे विद अनिल कपूर एंड बॉबी देओल। जी हां, इतनी दमदार स्टारकास्ट और एक वुमन लेड स्पाई स्टोरी की वजह से फिल्म ने रिलीज से पहले ही इतनी चर्चा बटोरी थी कि आपको क्या बताएं। देखिए, बॉलीवुड के स्पाई जॉनर में ये फिल्म एक अलग पहचान बनाने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि इस बार की कहानी ये आपकी दो फीमेल प्रोटैगनिस्ट के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म के म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर की भी काफ़ी चर्चा हो रही है, काफ़ी बातचीत हो रही है, क्योंकि इसका जो साउंड ट्रैक है वो ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस की कॉम्पोजिशंस लेकर आया है, कहीं से कुछ कॉपी नहीं है, एकदम ओरिजिनल, जो आजकल थोड़ा कम देखने को मिलता है मार्केट में। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स विद मी ज्योतिका, बने रहिए यहाँ पे, बहुत ही प्यारी प्लेलिस्ट है आज।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है।

0: साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तिरछी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

वेलकम बैक आफ्टर द स्मॉल ब्रेक। मैं हूं ज्योतिका और आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स। देखिए, अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसके बारे में आप ऑफ कोर्स सुनना चाहते हैं और बहुत टाइम से, बहुत महीनों से वेट कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म रामायणा की। डायरेक्टर नितेश तिवारी की ये फिल्म दो पार्ट्स में बन रही है। इसमें रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में नजर आएंगे, साई पल्लवी सीता का किरदार निभा रही हैं, सनी देओल हनुमान जी के रूप में आपको दिखेंगे और वहीं यश रावण का किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म का पहला हिस्सा दिवाली इसी साल 2026 के अराउंड, आप लगा लीजिए अराउंड 6 नवंबर के आसपास ये रिलीज होने की तैयारी में है। वैसे यश का नाम सुनते ही सबसे पहले आपको क्या याद आता है? आई एम श्योर KGF, कन्नड़ सिनेमा से

अपनी पहचान बनाने वाले यश ने KGF और KGF चैप्टर 2 के बाद पूरे देश में अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग बना ली थी। अब रामायणा के जरिए वो हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े माइथोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स में से एक का हिस्सा बन रहे हैं। इस फिल्म में वो सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि को प्रोड्यूसर भी हैं। और एक और खास बात बताऊं आपको, इस फिल्म का म्यूजिक AR रहमान तैयार कर रहे हैं, जबकि बैकग्राउंड स्कोर पर हॉलीवुड के ऑस्कर विनिंग कंपोजर हैंस ज़िमर का नाम भी जुड़ा हुआ है। सच कहूं, रामायणा सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सिनेमैटिक प्रोजेक्ट बन चुकी है। अब देखना ये होगा कि दिवाली के आसपास जब ये फिल्म बड़े पर्दे पर आएगी तब आप लोग, जी हाँ दर्शक, इसको कितना प्यार देंगे। फिलहाल इसी माहौल को आगे बढ़ाते हैं एक खूबसूरत गीत के साथ।

ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी लगान और लता मंगेशकर जी की आवाज में आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स। मैं हूं ज्योतिका। देखिए, वैसे तो हम बॉलीवुड की ढेर सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन अब बात करते हैं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की। पिछले कुछ सालों में पठान और जवान जैसी बड़ी एक्शन फिल्मों के बाद अब फैंस की नजरें उनकी अगली फिल्म किंग पर टिकी हुई है। इस फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने इससे पहले पठान और फाइटर जैसे बड़े स्केल की एक्शन फिल्म्स डायरेक्ट की हैं, और इसी वजह से किंग को लेकर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है ऑडियंस में। देखिए, फिल्म की एक और खास बात यह भी है कि इनकी जो बेटी है सुहाना खान पहली बार अपने पापा शाहरुख खान के साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगी। इसके अलावा अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी और रानी मुखर्जी भी फिल्म का हिस्सा हैं। इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ ये फिल्म काफी ग्रैंड नजर आ रही है। फिल्म की शूटिंग मुंबई के साथ साथ यूरोप और साउथ अफ्रीका में भी हुई है, और ये फिल्म इस साल क्रिसमस के आसपास रिलीज होने के लिए तैयार है। अब देखना ये होगा कि शाहरुख खान एक बार फिर ऑडियंस को किस नए अंदाज में सरप्राइज करते हैं। थोड़ी सी देर में आपसे पूछूंगी वो प्यारा सा इम्पोर्टेंट सवाल जो आपको बना सकता है आज का बॉलीवुड सरताज, सो डू नॉट मिस इट आउट। फिलहाल किंग का इंतजार के साथ सुनते हैं शाहरुख खान पर फिल्माया ये प्यारा सा गाना।

आई नो आई नो, इंतजार करना थोड़ा सा टफ हो रहा था आपके लिए कि क्या होगा आखिर वो सवाल जो बनाएगा आपको आज बॉलीवुड सरताज। तो प्लीज आप यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा आज का वो सवाल। मैं हूँ ज्योतिका और आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स, और आज के बॉलीवुड सरताज का सवाल ये है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बहुत बड़ी फिल्म रामायणा के बारे में बात करी थी, उसकी स्टार कास्ट के बारे में भी बात करी थी। तो मैं बस आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस स्टार कास्ट में जो यश हैं, जी हाँ, वो कौन सा किरदार निभा रहे हैं? क्या वो राम बने हैं? क्या वो लक्ष्मण बने हैं? क्या वो रावण बने हैं? आप मुझे बताइए। व्हाट्सएप पर 9868107070 इज द नंबर। जो सबसे पहले जवाब देगा और वो बन जाएगा आज का बॉलीवुड सरताज। क्वेश्चन मेरा ये है कि यश रामायणा में कौन सा किरदार निभा रहे हैं? मुझे रहेगा आपके आंसर्स का इंतजार। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9868107070 पर। वेट कर रही हूँ मैं आपके आंसर्स का यहाँ।

इतना मजा आ रहा है ना, इतना मजा, मतलब यू गाइज आर सेंडिंग सच ब्यूटिफुल मैसेजेस एक के बाद एक, क्योंकि आखिरकार बॉलीवुड सरताज का टैग तो सबको ही चाहिए. एंड लेट मी टेल यू, मुझे लगता है कि आप लोग सच्ची में बॉलीवुड के बहुत बहुत बहुत बड़े फैंस हैं. वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स. और आज ना मैं थोड़ी देर आपसे बात करना चाहूँगी बॉलीवुड की उस चीज़ के बारे में जिसके बिना हर फिल्म अधूरी लगती है. एनी गैसेस? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ म्यूज़िक की. कभी कभी हम फिल्म का नाम तो भूल जाते हैं लेकिन उसका गाना सालों तक याद रहता है. शायद इसीलिए बॉलीवुड और म्यूज़िक का जो ये रिश्ता है हमेशा से इतना खास रहा है. और एक अच्छी बात ये है कि आजकल फिर से ओरिजिनल म्यूज़िक पर जोर दिया जा रहा है. जैसे हाल ही में रिलीज हुई फिल्म अल्फा, इस फिल्म में रीमिक्स के बजाय नए ओरिजिनल ट्रैक्स और बैकग्राउंड स्कोर पर खासा ध्यान दिया गया है. ये देखकर अच्छा लगता है कि फिल्म मेकर्स एक बार फिर फ्रेश म्यूजिक को मौका दे रहे हैं. इसी तरह आने वाली फिल्म रामायणा भी सिर्फ अपनी कहानी या स्टार कास्ट की वजह से ही नहीं बल्कि अपने म्यूजिक को लेकर भी काफी चर्चा में है. इस फिल्म के सॉन्ग्स एआर रहमान कंपोज कर रहे हैं जबकि बैकग्राउंड स्कोर हंस जिमर दे रहे हैं. ये पहली बार होगा जब हंस जिमर किसी इंडियन फिल्म के ओरिजिनल स्कोर का हिस्सा होंगे. और अगर हम एआर रहमान की बात कर ही रहे हैं तो उनके म्यूजिक की एक खास बात हमेशा रही है, हर फिल्म के साथ एक नया साउंड क्रिएट करना. और इसी वजह से म्यूजिक लवर्स भी उनके नए प्रोजेक्ट्स के जो प्रोजेक्ट्स का म्यूजिक होता है उसका इंतजार करते हैं बेसब्री से. वैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपको ज्यादा क्या पसंद है, नए ओरिजिनल गाने या फिर पुराने एवरग्रीन क्लासिक्स? सोचिए जरा. मेरे लिए तो अच्छा गाना वही होता है जो पहली बार सुनते ही दिल को छू जाए और अगर उस गाने को आप 10 साल बाद भी सुने तो उतना ही खूबसूरत लगता है, है ना? जैसे कि ये

अब बात करते हैं एक ऐसी एक्ट्रेस की जिन्होंने सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड में भी अपनी एक अलग पहचान बना ली है। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा जोनस। काफी समय बाद प्रियंका एक बड़े हिंदी फिल्म प्रोजेक्ट के साथ वापस आ रही हैं। वो डायरेक्टर SS राजमौली की अगली फिल्म वाराणसी का हिस्सा है, जिसमें उनके साथ महेश बाबू लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और ये प्रोजेक्ट अपने बड़े स्केल की वजह से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। राजामौली का नाम आते ही बाहुबली और RRR जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की याद आ जाती है, इसीलिए नेचुरली उनकी हर नई फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट भी काफी ज्यादा होती है। और प्रियंका की बात करें तो बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का उनका सफर वाकई इंस्पायरिंग रहा है। अब उन्हें एक बार फिर हिंदी सिनेमा के बड़े पर्दे पर देखना उनके फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम थोड़ी होगा, है ना? वैसे मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, अगर आपको प्रियंका चोपड़ा की कोई एक फिल्म दोबारा देखनी हो आज, तो आप कौन सी देखना चाहेंगे? फैशन, बर्फी, डॉन, बाजीराव मस्तानी या फिर कोई और? देखो, वक्त बहुत है और दिन बड़ा ही अच्छा है, वेडनेसडे है, मौसम आपका साथ दे तो आप कुछ बिंज वॉच कर सकते हैं। फिलहाल इसी मूड के साथ सुनते हैं प्रियंका चोपड़ा पर फिल्माया गया ये खूबसूरत सा गाना।

और दोस्तों अब वक्त आ गया है आज के बॉलीवुड सरताज सवाल के विनर का नाम जानने का। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने सारे प्यारे रिस्पॉन्सेस भेजने के लिए दिल से आपका धन्यवाद। देखो मेरा आज का सवाल था कि जो फिल्म रामायण दिवाली के आसपास रिलीज होगी उसमें यश कौन सा किरदार निभा रहे हैं, राम का, लक्ष्मण का या रावण का। एंड लेट मी टेल यू, आज एक ने भी गलत जवाब नहीं दिया है, सब ने सही जवाब दिया है। द राइट आंसर इज यश, जो बने हैं रावण। और सबसे पहले जो करेक्ट आंसर मुझे मिला वो है रोहित श्रीवास्तव जी का दिल्ली से, उन्होंने रावण इसका आंसर दिया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई, आप बनते हैं आज के बॉलीवुड सरताज। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं आप सबका नाम यहां शामिल कर सकूं। सबसे पहले मैं रोहित श्रीवास्तव जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगी। साथ ही साथ तरुण कोहली जी सूरज कुंड रोड मेरठ से लिखते हैं, सलीम मलिक भी दोबारा हमें मेरठ से लिखते हैं, विनीत कुमार उत्तर प्रदेश से, प्रवीण चौहान हमें लिखते हैं मध्य प्रदेश से, ईशा लिखती हैं हमें धर्मशाला से, निकिता पारिकर पुणे से, पंकज अमरावती महाराष्ट्र से, और शुक्लाल बाला वेस्ट बंगाल से लिखते हैं, देशराज जी हमें भटिंडा पंजाब से लिखते हैं, एंड वी हैव योर मिसेस धर्म भाटिया जी रोहतक से लिखती हैं। एंड लेट मी टेल यू, इतने सारे सही जवाब, आई एम ओवरवेल्म्ड। अगर मैं आपका नाम यहाँ नहीं शामिल कर पाई हूँ किसी वजह से, आई एम स्टिल रिसीविंग ऑल द मैसेजेस साइड बाय साइड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड यस कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन रोहित श्रीवास्तव जी, आप बनते हैं आज के बॉलीवुड सरताज। बने रहिएगा सिर्फ यहाँ बॉलीवुड ट्रेल्स में।

सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना ये खूबसूरत वक्त मेरे साथ बिताया। उम्मीद है बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी आज की बातें और गीत आपको पसंद आए होंगे। मैं अब आपसे इजाजत देती हूँ, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि दोपहर 1 बजे मैं फिर हाजिर होंगी रेनबो हेल्पलाइन के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और FM रेनबो के साथ बने रहिए।

0: That was Drops of Jupiter by Train. This track won 2 Grammy Awards and even after all these years continues to find new listeners. That's the mark of a truly timeless song, isn't it? Now it's time for a short break, but we will be right back to give you this musical company on the Wednesday afternoon.
1: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
2: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
1: क्या ये जांच उपलब्ध है?
3: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
4: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
3: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
4: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
5: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: हिमालय की गोद से लेकर
7: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
6: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
7: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
6: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
7: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
6: तो सुनना ना भूलें
7: रेनबो डेस्टिनेशंस
6: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
8: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग टू प्ले इट कूल विद मी ओनली ऑन आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज. एंड व्हाइल वी वर ऑन दिस शॉर्ट ब्रेक, आई हैव बीन रिसीविंग ब्यूटीफुल मैसेजेस फ्रॉम आवर लिसनर्स. प्रवीण फ्रॉम मध्य प्रदेश टेल्स अस दैट ही हैज बीन स्पेंडिंग दिस ब्यूटीफुल वेंसडे आफ्टरनून वॉचिंग द रेन फ्रॉम द विंडोज एंड लिसनिंग टू प्ले इट कूल. दैट्स ब्यूटीफुल टू नो. एंड वी आर कंटिन्यूइंग दिस विद मोर म्यूजिक दैट फील्स राइट एट होम ऑन अ वेंसडे afternoon.

0: That was Fast Car by Tracy Chapman. You are listening to Play It Cool with me, Vidushi, on Akashwani FM Rainbow 102.6 MHz. It's time for a short break, but stay tuned because there's a beautiful playlist, set of beautiful songs that are waiting for you right after this break.
1: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त ये चाय बड़ी है मस्त
2: पता का चाय गजब का स्वाद
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

वेलकम बैक. दिस इज आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 MHz एंड यू आर लिसनिंग टू प्ले इट कूल. आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस म्यूजिकल ब्रेक इन द मिडल ऑफ योर वेंसडे. अप नेक्स्ट इज अनदर सॉन्ग दैट हैज वेरी रिसेंटली बिकम पार्ट ऑफ प्लेलिस्ट एंड चार्ट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय

0: से तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिका और आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन सिर्फ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। हर हफ्ते हम लेकर आते हैं एक ऐसा विषय जो सिर्फ जानकारी ही नहीं बल्कि जिंदगी में एक नई दिशा भी दे। और आज का हमारा टॉपिक है यूपीएससी की प्रिपरेशन, अ बिगिनर्स रोड मैप फॉर स्मार्ट स्ट्रेटजी एंड टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, यूपीएससी ये कुछ ही अक्षरों का ये जो खेल है, ये नाम लाखों युवाओं के सपनों से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस सफर की शुरुआत कैसे करें, कहाँ से पढ़ाई शुरू करें, कितनी बुक्स काफी हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और सबसे जरूरी, इतने लंबे सफर में मोटिवेशन कैसे बनाए रखें, इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दो ऐसे मेहमान जिन्होंने सिर्फ यूपीएससी का सपना देखा ही नहीं बल्कि उसे अपनी मेहनत और लगन से सच भी कर दिखाया। हमारे साथ हैं सुरभि यादव, जिन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 में ऑल इंडिया रैंक 14, जी हां 1414 हासिल की है, और उनके साथ हैं उत्कर्ष, जिन्होंने इसी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 32 प्राप्त की है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है शो में।
2: थैंक यू सो मच मैम।
3: थैंक यू मैम।
1: कैसा लग रहा है आपको शो में आके? हाउ एक्साइटेड आर यू?
3: वेरी एक्साइटेड टू बी हियर।
1: ग्रेट। और आप सबसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपके, जी हमें आप ही से बात करी हो, अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, आप पूछना चाहते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एस्पायरेंट हैं, और कहते हैं ना दिमाग में कुछ भी हो, मेरे साथ ये दो मेहमान आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे, तो आप हमें अपना सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं 9868107070 पर। आपके सवालों का हमें रहेगा इंतज़ार। शुरू करते हैं आज का सफ़र।

0: एक बार फिर से आप सबका स्वागत है रेनबो हेल्पलाइन में। मैं हूं ज्योतिका और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 के दो शानदार अचीवर्स, ऑल इंडिया रैंक 14 सुरभि यादव जी एंड ऑल इंडिया रैंक 32 उत्कर्ष जी। एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
0: सुरभि जी और उत्कर्ष जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, और आपकी सफलता न सिर्फ आपके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि उन लाखों युवाओं के लिए भी प्रेरणा है जो सिविल सर्विसेज का सपना देख रहे हैं। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही जरूरी सवाल से। सुरभि जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, यूपीएससी का सपना कब और कैसे शुरू हुआ? क्या कोई ऐसा पल था आपकी लाइफ में जिसने आपको मोटिवेट किया हो, या कोई ऐसा अनुभव जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, कि आप कुछ तो कहना चाहेंगे इस बारे में?
1: यूपीएससी का सपना मेरे लिए बहुत पहले से शुरू हुआ था। आई थिंक स्पेशली गर्ल्स के लिए उनकी माँ एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है, तो मेरे लिए ये मेरी मदर का एक्सपीरियंस एंड हर जर्नी एंड हर डेडिकेशन टूवर्ड्स लाइफ एंड टूवर्ड्स सर्विसेज हैज़ इंस्पायर्ड मी, और उसकी वजह से शायद मैं आज यहाँ पे पहुँच पाई हूँ।
0: कभी कोई आपके जहन में या लाइफ में कोई ऐसी रुकावट आई हो जिसको आपने सोचा हो कि नहीं, आई विल स्टिल कंटिन्यू डूइंग दिस?
1: बहुत बार आई है, मतलब मेरे लिए तो ये, क्योंकि मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था और बहुत साल हो गए थे लगातार पढ़ते पढ़ते, एक अटेम्प्ट के बाद दूसरा अटेम्प्ट, प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने से उम्मीद हार जाते हो, बट आप फिर बाउंस बैक करते हो कि नहीं, ये तो करना ही है।
0: बिल्कुल सही, हार कभी नहीं माननी चाहिए। वहीं उत्कर्ष जी, मैं भी आपसे एक सवाल पूछना ये चाहूंगी कि अगर कोई स्टूडेंट आज से यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहता है तो पहले 3 महीनों का क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या गाइडेंस देंगे आप हमारे यंगस्टर्स को?
2: मैम, सबसे पहले तो जब भी कोई इसकी तैयारी शुरू करना चाहता है तो सबसे पहले उसे पेपर को समझना चाहिए कि पेपर है किस बारे में, उसको थोड़ा सा सिलेबस देखना चाहिए, उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने चाहिए, फिर उसको गाइडेंस के लिए बहुत सारे काबिल टॉपर्स हैं जिन्होंने अपने अलग अलग माध्यम से अपनी स्ट्रैटेजीज बताई हैं, थोड़ा सा उनको देखना चाहिए और फिर ये समझना चाहिए कि इस वक्त वो कहाँ पर खड़ा है अपनी तैयारी की शुरुआत में, और उस हिसाब से फिर पहले 3 महीने में सबसे पहले जो बिल्कुल आधार बनाने वाली बात होती है कि सबसे पहले एनसीईआरटीज आप पढ़ सकते हैं एंड फिर आप बेसिक बुक से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आप फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के समझते हैं कि आप जिस लेवल पे पढ़ रहे हैं और कितना लेवल चाहिए, तो उसके बेसिस पे फिर आप डिसाइड करते हैं कि आप आगे अपनी जर्नी कैसे प्लान करते हैं। तो पहले 3 महीने में पेपर को समझना और बेसिक चीज़ें पढ़ना ही मुझे लगता है सही स्ट्रैटेजी है।
0: राइट, कहते हैं कि जितना स्लो आप इसमें रहेंगे, और कहते हैं ना कि अगर जल्दबाजी में कोई डिसीजंस ले लिए जाएं तो वो कई बार गलत हो जाते हैं, सो आपको 3 महीने में सिर्फ आप पेपर को समझिए, भागिए ना, और धीरे धीरे आई एम श्योर यू विल बी एट द राइट ट्रैक। लेकिन अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज से जुड़ना चाहते हैं तो आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप हमें ज़रूर भेजिए, 9868107070 इज द नंबर। हो सकता है आज आपका सवाल सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि हजारों और एस्पायरेंट्स की भी मदद कर दे।

0: आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन और मैं हूं ज्योतिका। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 की ऑल इंडिया रैंक 14 सुरभि यादव जी और ऑल इंडिया रैंक 32 उत्कर्ष जी। बहुत ही रोचक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत हमारी यहाँ चल रही है। और सुरभि जी, आपसे बात करके एक बात तो साफ समझ आ रही है कि यूपीएससी की तैयारी सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सही प्लानिंग भी मांगती है। हमें अगला सवाल यहाँ पर मिला है, इनका नाम है ललित राणा जी, ये पंजाब से लिखते हैं। नमस्कार, मैं अपनी बेटी को 12th में यूपीएससी की तैयारी करवाना चाह रहा हूँ, उसके लिए मेरे को क्या क्या गाइडेंस चाहिए, क्या प्रोवाइड आप करना चाहेंगे? जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पर दूर दूर तक यूपीएससी या एनडीए की कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं है, पर ये मेरा सपना है कि मेरी बेटी यूपीएससी या एनडीए क्लियर करे। तो आई विल लीव द क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू।
1: मैम, मुझे लगता है कि इस दौर में जब इंटरनेट का इतना संसाधन हमारे पास है, तो अगर किसी जगह पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं भी हैं तो एक फ़ोन, एक लैपटॉप और एक स्क्रीन के माध्यम से बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन माध्यम हैं, जैसे सरकारी बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे सनसेट टीवी जैसे चैनल्स हैं, जिन पे बहुत सारे अच्छे शोज़ और अच्छे रिसोर्सेज मिलते हैं। तो इनका प्रयोग करके और ऑनलाइन एजुकेशन का प्रयोग करके किसी भी कोने में देश के हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट ये है कि 12th के बाद क्योंकि एनडीए देना होता है तो आप एनडीए की कोचिंग ले सकते हैं। यूपीएससी के लिए पहले एक बार ग्रेजुएशन में आना और अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स को समझना, उस हिसाब से पढ़ना, वो पहले ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद फिर तैयारी के बारे में सोचना ठीक रहेगा।
0: जैसे उत्कर्ष जी ने कहा कि आप ऑफकोर्स ऑन योर टोज आप तैयारी कर सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपके टिप्स पर कुछ कुछ चीज़ें हमारे घर में भी होती हैं, आसपास होती हैं, जहां से हम अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच उत्कर्ष जी फॉर ब्रिंगिंग अप दिस। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, आज बहुत से स्टूडेंट्स ये सोच कर ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि शुरुआत कहाँ से करें। मार्केट में इतनी सारी बुक्स हैं, आपने जैसे अभी बताया ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, कोचिंग मटेरियल बहुत होता है, लेकिन अगर कोई बिगिनर आज से यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहा है तो आपके हिसाब से मिनिमम और सबसे ज़रूरी रिसोर्सेज कौन से होने चाहिए और शुरुआत कहाँ से कैसे करें, ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो कि देयर इज़ सो मच अवेलेबल इन द मार्केट।
1: मैम, मुझे लगता है कि जब हम शुरुआत करते हैं तो हमें सबसे पहले बेसिक्स का ध्यान रखना चाहिए। हमें सबसे पहले एक नींव बनानी चाहिए, जिसके लिए एनसीईआरटीज बहुत अच्छा सोर्स है एंड बहुत ऑथेंटिक सोर्स है। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटीज पढ़ना और उसके बाद फिर थोड़ा सा अखबार पढ़ना शुरू कर देना, थोड़ा सा समाचार देखना, इससे हमें थोड़ी सी समझ आता है कि हमारे देश में, दुनिया में चल क्या रहा है और हमें क्या करना है। तो बेस इससे बन जाता है। इसके बाद जैसी जैसी हमारी ज़रूरतें हैं उस हिसाब से हम सोर्सेज को लिमिट करते हुए, सिलेबस को समझते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं।
0: ओके, इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल मैं सुरभि जी से पूछना चाहूँगी। टाइम मैनेजमेंट को यूपीएससी प्रिपरेशन का बैकबोन कहा जाता है। आप अपना एक नॉर्मल स्टडी डे कैसे प्लान करती थी, अगर आप हमारे साथ यहाँ शेयर करना चाहें कि क्या आप फिक्स्ड टाइम टेबल फॉलो करती थी या फिर कोई डेली टारगेट्स सेट करा करती थी, या स्टूडेंट्स जब पढ़ाई करते हैं तो उसके साथ साथ कभी कोई जॉब कर रहा होता है, कोई अपनी पढ़ाई ख़त्म कर रहा होता है, तो कैसे मैनेज करा जाए? मतलब कैन यू राइड इन टू बोट्स, और आप मैनेज करना चाहें तो कर सकते हैं।
2: राइट मैम, आपने बिल्कुल सही कहा, टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। एंड टाइम मैनेजमेंट के लिए बेसिकली आपको एक तो दिमाग में क्लियर गोल सेट होना चाहिए कि आपको करना ही करना है, एंड देन नंबर ऑफ आवर्स आप डे में फिक्स कर सकते हैं या अपने टाइम अपने डेली रूटीन के हिसाब से भी आप फिक्स कर सकते हैं। हम कुछ लोग हैं जो खाली पढ़ाई कर रहे हैं, तो वी कैन हैव अ डे जिसमें आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ आप इंक्लूड कर सकते हैं कि आप दिन में 2 घंटे सुबह पढ़ेंगे, फिर यू विल टेक अ ब्रेक, फिर 3 घंटे पढ़ेंगे, फिर यू विल टेक अ ब्रेक, इस हिसाब से। एंड जो लोग जॉब कर रहे हैं वो जॉब के साथ उसको मैनेज कर सकते हैं कि आप मे बी वीक डेज पे उतना नहीं कर सकते, बट वीकेंड्स पे आप उसको स्ट्रेच करके अपना सिलेबस ख़त्म करेंगे। एंड टाइम मैनेजमेंट सिर्फ उस बारे में नहीं है, टाइम नंबर ऑफ आवर्स इतना मैटर नहीं करते जितना ये मैटर करता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं और कितना प्रोडक्टिवली पढ़ रहे हैं और कितने अच्छे से उसको पढ़ रहे हैं। तो आप गोल और टारगेट सेट करके फिर अपना टाइम मैनेजमेंट करें, तो आई थिंक वो बेटर स्ट्रैटेजी रहेगी।
0: बिल्कुल, आई कंप्लीटली अग्री विद यू। साथ ही साथ बीच में ब्रेक लेना भी कितना

इम्पॉर्टेंट होता है हमारे सेल्फ हैप्पीनेस के लिए, कि कई बार हम बस घुसे रह जाते हैं एक एक हमारी कोई रीडिंग में या किसी बुक में किसी टॉपिक पर, और जब हम घुसे रह जाते हैं तो ना हम कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, ना वो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ पाता है. सो टेकिंग अ ब्रेक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फ्रेंड्स, जैसे हमारी बातचीत अभी चली रही है, अगर आप भी UPSC का या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके मन में कोई सवाल है तो हमें ज़रूर भेजिए. 9868107070 इज़ द नंबर. हो सकता है आज के एक्सपर्ट्स का जवाब आपकी तैयारी को एक नई दिशा दे. बने रहिए हमारे साथ सिर्फ यहाँ.

0: आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन विद मी ज्योतिका, और आज हमारे साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट दो मेहमान हैं, उत्कर्ष जी एंड सुरभि जी, जिनसे हम अपनी बातचीत जारी रख रहे हैं। अभी हमारा अगला सवाल आया है पैंथर तोमर जी का। ये किशनगंज दिल्ली से लिखते हैं और ये जानना चाहते हैं कि प्रीलिम्स में सीएसईटी के लिए कहाँ से तैयारी करें और मेंस में टाइम मैनेजमेंट एक बड़ी प्रॉब्लम है, इससे कैसे मैनेज किया जाए। और तीसरा ये भी जानना चाहते हैं कि मेंस में आंसर लिखने का एग्जैक्टली क्या सही प्रोसेस होना चाहिए। सो पहला सवाल मैं उत्कर्ष जी आपसे जानना चाहूँगी।
1: मैम, प्रीलिम्स में सीसैट के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि सीसैट में तीन सेक्शंस आते हैं। एक मैथ्स का सेक्शन है, एक रीजनिंग है और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन।

0: है, तो इसमें हमें सबसे पहले ये भी एक चीज़ जाननी होगी कि सीसैट एक क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें हमें 66.66 मार्क्स लाने होते हैं। तो हमें इसमें सबसे ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जिनको हम जल्दी सॉल्व करके और श्योरिटी के साथ उनको आंसर कर सकते हैं। जितना ज़रूरी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है उससे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि कौन से क्वेश्चंस हमें छोड़ने होते हैं इसमें। एंड तैयारी के लिए इसमें मैथ्स के लिए जो टॉपिक लिस्ट होती है, जेनरिक टॉपिक लिस्ट, उससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट्स प्रिपेयर करने होंगे, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होगी, और उसके साथ में आपको पेपर के एनवायरनमेंट को घर में ही स्टिमुलेट करना होगा।
1: ओके वहीं वो ये भी जानना चाहेंगे कि मेंस में टाइम मैनेजमेंट एक बड़ी प्रॉब्लम है. अभी हमने थोड़ी देर पहले वैसे टाइम मैनेजमेंट की बात करी है, लेकिन अगर इस पे थोड़ी सी लाइट आप सुरभि जी और थोड़ी सी और डालना चाहें तो क्या बोलेंगी?
2: मेंस में टाइम मैनेजमेंट के लिए दो चीज़ें. एक तो आपको प्रिपरेशन में ही टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बहुत कम टाइम होता है. तो आप अपना रिवीजन उस हिसाब से सेट कीजिए कि आपके दो रिवीजन हो जाएं. फर्स्ट रिवीजन थोड़ा बड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट सेकेंड रिविजन शुड बी क्विक. उसके लिए आपके नोट्स और एफिशिएंसी थोड़ी ज़्यादा आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेगी. दूसरा टाइम मैनेजमेंट सेगमेंट मेंस में है, आंसर राइटिंग में, कि आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है. उसके लिए आई थिंक आपको क्लॉक के साथ बैठना पड़ेगा, एंड विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन की 10 मार्कर क्वेश्चन आपको 7 मिनट्स में कंप्लीट करने ही करने हैं विद अ डिजिटल क्लॉक, दैट यू टर्न द पेज व्हेन 7 मिनट्स आर ओवर, एंड जो 15 मार्कर्स हैं वो आप 10 और 11 मिनट्स में आप कंप्लीट करें. तो मेन आइडिया इज़ कि आप क्लॉक के साथ बैठिए एंड देन यू कंप्लीट योर पेपर एंड डू टाइम मैनेजमेंट.
1: बाय चांस कभी ऐसा होता है कि क्लॉक मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो टाइम एक्सीड कर रहा है, हाउ टू कोप अप विद दैट?
2: आई थिंक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. आपको लगातार प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना आप उसको एफिशिएंटली कर पाएंगे. इनिशियली नहीं होगा, इनिशियली जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आप टाइम एक्सीड करेंगे, बट विद टाइम आप वो हर क्वेश्चन पे क्लॉक रखिए कि हर क्वेश्चन हर पेज का थोड़ा मैनेजमेंट करेंगे तब आपका पेपर कंप्लीट हो पाएगा.
1: राइट उत्कर्ष जी, अगर आप इस सवाल का जवाब देना चाहें कि मेंस में आंसर लिखने का ढंग, द राइट प्रोसेस क्या होना चाहिए?
0: किसी भी मेंस आंसर के तीन मुख्य पहलू होते हैं। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद उसकी मेन बॉडी, और तीसरा उसका कंक्लूजन होता है। हमारा मेन काम जो है वो क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करना है कि जो क्वेश्चन हमसे पूछना चाहता है हम उसमें कितना सही और सटीक कंटेंट हम दे पाते हैं। तो हर क्वेश्चन को लिखने के लिए एक इंट्रोडक्शन आपके पास होना चाहिए जो आपका क्वेश्चन से उसको लिंक करे और कंसेप्ट को आगे बढ़ाए। उसके बाद आपको उसकी सब हेडिंग्स में ये बताना पड़ेगा कि क्वेश्चंस क्या मांगना चाहते हैं, व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद कंक्लूजन आपका ऐसा होना चाहिए कि वो पूरे आंसर को समराइज भी कर दे और एक वे फॉरवर्ड प्रोवाइड करे कि जो भी इशू के बारे में बात हो रही है, जो भी कंसेप्ट है, उसका ओवरऑल जिस्ट क्या है। तो अगर इन सब चीज़ मिला के एक मेंस का एक आंसर बनता है।
1: ऑल राइट एंड ये पैंथर तोमर जी साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, इनका छोटा सा एक और सवाल आया है कि यूपीएससी में हिंदी मीडियम के लाखों छात्र मेंस और इंटरव्यू देते हैं लेकिन कुछ ही सिलेक्ट हो पाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्या ये माना जाए कि इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दी जाती है? इस पर आप थोड़ी अगर लाइट डालना चाहें.
0: मुझे लगता है कि यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जो सबको मौका देती है हर मीडियम में, हर रीजनल लैंग्वेजेस में, ऑफिशियल लैंग्वेजेस में पेपर देने का, एंड हर स्टेज पे हर लैंग्वेज में आपके पास ये अलाउंस होती है कि आप पेपर लिख सकें। इवन ऑप्शनल में भी काफ़ी रीजनल लैंग्वेजेस में पेपर होते हैं। तो रही बात हिंदी और इंग्लिश की, तो ये इतना मायने नहीं रखता है। रिसोर्सेज अब हर चीज़ के अवेलेबल हैं, इंटरनेट के दौर में हर चीज़ अब काफ़ी आसानी से एक्सेसिबल है। तो आपका मीडियम कुछ भी हो, आप उसमें आप अच्छे से कर सकते हैं और फिर आप पेपर क्लियर भी कर सकते हैं।
1: राइट इससे पहले मैं एक छोटा सा एड ब्रेक लूँ, मैं आपसे जाते जाते ये छोटा सवाल पूछना चाहूँगी. आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, हम जब तैयारी करते हैं हमारा फ़ोन हमारी हेल्प भी कर सकता है लेकिन एक डिस्ट्रैक्शन भी बनता है कई बार, उस डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए? सुरभि जी आप बताएंगे.
2: यस मैम, तो सोशल मीडिया डेफिनेटली एक डिस्ट्रैक्शन भी है एंड एड भी है. तो ये आपको अपने लिए एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिनका जो पूरा दिन पढ़ाई किया और रात में एक माइंड फ्रेश करने के लिए या अपडेट लेने के लिए सिर्फ आधे घंटे सोशल मीडिया देख लिया एंड

0: उनका उस लेवल पे सेल्फ कंट्रोल है, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है. एंड सोशल मीडिया का ट्रेंड ही यही है, मतलब दैट इज़ हाउ इट इज़ मेड, कि आप बार बार सोशल मीडिया खोलेंगे, बार बार देखेंगे, मल्टीपल टाइम आप रील्स स्क्रॉल करेंगे. तो इसलिए हमें, अगर आपका वो ट्रेंड या वो पैटर्न बनता जा रहा है तो आपको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा. तो आप ऐप्स इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन से, आप फ़ोन दूसरे रूम में रख के फिर पढ़ सकते हैं, ताकि आपको बेसिकली अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा.
1: वेरी राइटली सैड. अगर आपके जहन में भी कोई सवाल हो, आप हमारे एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे कुछ पूछना चाहें, 9868107070 इज द नंबर. छोटा सा एड ब्रेक ले रहे हैं हम यहाँ पर.
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेनबो हेल्पलाइन में। जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, मैं आपको बता दूं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उत्कर्ष जी एंड सुरभि जी, एंड हम इनसे यूपीएससी की बातचीत कर रहे हैं। एंड दे आर द अचीवर्स ऑफ 2025 रैंक 14 एंड रैंक 32। आप दोनों से मैं ये जानना चाहूँगी, लैंग्वेज पेपर की जब तैयारी की बात आती है तो उसको कैसे किया जाए। कई बार उसको नज़रअंदाज किया जाता है कि ठीक है लैंग्वेज पेपर है, लेकिन उसके बाद ही द जीएस द जनरल स्टडीज़ की बारी आती है, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए।
1: हम लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग पेपर ही होते हैं, आपको उसमें मिनिमम मार्क्स लाने हैं। तो एक तो उसकी तैयारी के लिए हम प्रीवियस ईयर पेपर्स देख सकते हैं, पिछले 2-3 साल के पेपर हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबली उनको क्लियर कर पा रहे हैं तो फिर एज सच आपको तैयारी की उतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि उसमें फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाके एंड मेन ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन जो क्वेश्चंस के मार्किंग ज़्यादा है, जो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करके PYQ ही आई थिंक वो कंफर्टेबली हम क्लियर कर सकते हैं लैंग्वेज पेपर्स।
0: उत्कर्ष जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें?
2: मुझे लगता है जैसा सुरभि ने बताया कि लैंग्वेज पेपर्स क्वालिफाइंग पेपर है, तो उसके बारे में हमें सिर्फ उतना ही उस पर ध्यान देना चाहिए कि हम उसको अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। उसके लिए जो क्वेश्चंस जिनमें मार्क्स की वेटेज ज़्यादा है, जैसे अगर ट्रांसलेशन हो गया या ऐसे लिखने के लिए आता है, तो हम उस पर फोकस करें एंड हम कोशिश करें कि हम पूरा पेपर टाइम पे फिनिश करके आएँ, क्योंकि ऐसा कुछ बहुत क्लिष्ट नहीं पूछा जाता है। इट्स जस्ट जेनरिक इंग्लिश एंड जो भी आप लैंग्वेज चूज़ करते हैं, तो अगर उस पर हम स्टिक करते हैं तो

0: पेपर आसानी से किया जा सकता है।
1: ऑल राइट, मैं अगला सवाल लेना चाहूंगी। राजू कुमार बिहार से लिखते हैं कि रिवीजन कैसे करें, और अगर आप इस बारे में थोड़ा सा हमें गाइड कर सकें।
2: रिवीजन के लिए आई थिंक बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि आप एक टॉपिक जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए सोसाइटी का कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप पहले तो आपने बेसिक रीडिंग कर ली, उसको थोड़ा कॉन्शियसली याद कर करके रीडिंग की, उसके बाद आप उस टॉपिक को बंद कर दीजिए एंड रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि आपको उस टॉपिक में क्या क्या याद आता है। फिर मे बी उसको अगर वर्बली नहीं तो आप उसको लिख के छोटे छोटे पॉइंट्स में आप उसको रिवाइज कर सकते हैं कि मुझे ये टॉपिक्स याद आ रहे हैं। देन फिर आप अपने वापस नोट्स पर जाइए, फिर उसको टैली कीजिए कि आपको कितनी चीज़ याद है और कितनी चीज़ आपको अभी भी मिसिंग है। तो जो चीज़ मिसिंग है उसको फिर से कॉन्शियसली याद कीजिए एंड देन अगेन रिवाइज दैट। आई थिंक दैट वुड बी अ स्ट्रैटेजी दैट आई यूज्ड मोस्टली।
1: थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच अ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन विद अस। अगला सवाल मैं लेना चाहूंगी रोहित यादव जी का, ये कोल्हापुर महाराष्ट्र से लिखते हैं, हाउ टू मैनेज पर्सनल लाइफ पढ़ाई के बीच में, क्योंकि वो शायद अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं एंड उनको लगता है वो स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, और सिंस वो मराठी बैकग्राउंड से आते हैं तो क्या उन्हें इंग्लिश अपनी लैंग्वेज चॉइस ऑफ लैंग्वेज पिक करनी चाहिए जो उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग अभी नहीं है। इफ़ यू कुड गाइड हिम अ लिटिल बिट।
0: मैम पहले सवाल का अगर जवाब दूं कि लाइफ आपकी हमेशा प्रिपरेशन के साथ ही चलेगी, इट डज़ नॉट वर्क इन साइलोज कि आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं कि पर्सनल लाइफ अलग हो और आप पढ़ाई अलग से करें। आपको दोनों के लिए ही एक दूसरी जगह से समय निकालना पड़ेगा। जब आप पढ़ते हैं आपको अपने दोस्तों को अपनी फैमिली को भी टाइम देना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स भी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, तो जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आप उसको डील करते हैं। आप प्रायोरिटाइज करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, उन पर ध्यान दें। और रही बात पर्सनल लाइफ में अगर बाहर जाने की या दोस्तों से मिलने की, तो उसका भी एक राइट बैलेंस स्ट्राइक किया जा सकता है कि अगर आप 5 दिन पढ़ते हैं तो आप 1 दिन बाहर भी जा सकते हैं। ये 24 घंटे पढ़ने वाली पढ़ाई नहीं है, इट्स अ मैराथन। एंड दूसरा प्रश्न है मराठी मीडियम का, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम में स्विच ही करें। जिस भी मीडियम में आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आपको लगता है कि आप आराम से पढ़ सकते हैं, वो मीडियम इस परीक्षा के लिए बेस्ट रहेगा।
1: थैंक यू सो मच फॉर पॉइंटिंग आउट कि 24 घंटे ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें। सुरभि जी, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि UPSC का एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त हर साल कई स्टूडेंट्स छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं जिसका बाद में नुकसान उनको उठाना पड़ता है। आपके हिसाब से फॉर्म भरते वक्त किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? क्या कोई ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनको एकदम अवॉइड करना चाहिए बच्चों को?
2: यस मैम, तो जब UPSC का नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले, एंड वो नोटिफिकेशन बहुत ही डिटेल्ड होता है, उस नोटिफिकेशन में छोटी छोटी सब डिटेल्स लिखी होती हैं, तो सभी परीक्षार्थी जो भी फॉर्म भर रहे हैं सबसे पहले उस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें। फिर उसके बाद जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो हर एक चीज़, अगर आप उस पर श्योर हैं तब आप वो डिटेल्स भरें, लेकिन आपको कहीं पर भी डाउट लगता है कि इसमें प्रायोरिटी देनी है या क्या भरना है या क्या नहीं भरना है, मेनली अब तो क्योंकि बहुत डिटेल पूछने लगे हैं, पेरेंट्स की डिटेल भी है, सब चीज़ है, तो आप अगर पेरेंट्स की डिटेल है तो आप पेरेंट्स से पूछ के उस सबको ठीक से भरें। बहुत बार सर्टिफिकेट्स में इशू आते हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट्स है, तो ये सब चीज़ का लेटर स्टेजेस में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप वो सर्टिफिकेट्स का पहले कंफर्मेशन कर लें। फिर UPSC के हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं जहाँ पे वो रिस्पॉन्ड करते हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपकी क्वेरी नहीं सॉल्व हो रही है तो आप हेल्पलाइन नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, देन फिर आप उस एप्लीकेशन को फॉर्म को भरिए।
1: राइट उत्कर्ष जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी मेंस एग्जामिनेशन के बारे में। बहुत से कैंडिडेट्स प्रीलिम्स पर तो फोकस करते ही करते हैं, लेकिन जो बाकी हमारी राउंड्स होते हैं उन पर इतना फोकस नहीं कर पाते हैं, तो व्हाट शुड बी द राइट डायरेक्शन प्रोसेस और कैसे एक एस्पायरेंट को आगे बढ़ना चाहिए?
0: मैम क्योंकि इस परीक्षा में 3 स्टेजेस हैं, तो हमारा किसी भी स्टूडेंट का मेन गोल होता है परीक्षा क्लियर करना, ना कि एक एक स्टेज पे ध्यान देना। तो हमारी पूरी प्रिपरेशन है वो इट शुड बी इंटीग्रेटेड, कि हमें तीनों स्टेजेस को साथ में लेके चलना चाहिए। अगर हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो वही सेम टॉपिक्स, वही सेम सब्जेक्ट्स तीनों स्टेजेस में अलग अलग रूप में पूछे जाते हैं।

0: तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास एक बहुत ही कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो। हम जो भी टॉपिक पढ़ें उसको डिटेल में पढ़ें, हम अच्छे से समझ के पढ़ें कि अगर उससे रिलेटेड हमें चाहे MCQ आंसर करना पड़े या 2 पेज का आंसर लिखना पड़े या फिर अगर इंटरव्यू बोर्ड के सामने बताना पड़े तो हम क्लियर हों। एंड इसके अलावा सिर्फ प्री क्लियर करने से या सिर्फ मेंस क्लियर करने से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, तो हमें हर स्टेज के बाद वी शुड ट्राई टू लेवल अप एंड वी शुड डू द थिंग्स दैट वे।
1: थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आज हमें जो जो सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन रहेगी। दोस्तों, अगर आप भी UPSC की तैयारी कर रहे हैं और आपके मन में कोई सवाल है तो हमें ज़रूर भेजिए। 9868107070 इज द नंबर। हो सकता है आज का एक जवाब आपकी पूरी स्ट्रैटेजी बदल दे। बने रहिए हमारे साथ रेनबो हेल्पलाइन में।

0: आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन और आज हमारी बातचीत हो रही है सुरभि जी और उत्कर्ष जी के साथ। टॉपिक हमारा है यूपीएससी प्रिपरेशन एंड अगला सवाल हमें पैंथर जी ने एक बार फिर से भेजा है। पूछना चाहते हैं कि यूपीएससी इंटरव्यू में सेल्फ इंट्रोडक्शन का सही तरीका क्या है। सुरभि जी, आप इसको आंसर करना चाहेंगे?
1: यस मैम, यूपीएससी में इंटरव्यू में सेल्फ इंट्रोडक्शन थोड़ा ब्रीफ होना चाहिए। उसमें मेन आप अपना नाम बता सकते हैं, उसके बाद आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बता दीजिए, आपने कहाँ से स्कूलिंग कहाँ से की है और कॉलेज में आपका क्या ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, मे बी आप वो बता सकते हैं। उसके बाद आप कहाँ से आते हैं, वो स्टेट सिटी, एंड आई थिंक दैट शुड बी इट। और अगर आप चाहें तो आप अपनी हॉबी भी ब्रीफली मेंशन कर सकते हैं, बट आपका इंट्रोडक्शन इतना ही लिमिटेड होना चाहिए।
0: राइट, और यूपीएससी के जब इंटरव्यू में हम जाते हैं, जो बोर्ड हमारे सामने होता है, जब घबराहट होती है, नर्वसनेस होती है, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं?
1: बोर्ड के सामने जाने से पहले घबराहट होना, नर्वसनेस होना बहुत ही नेचुरल और आम बात है, क्योंकि ये हमारा लाइफ का बहुत ही टर्निंग मोमेंट होता है। तो उसके लिए आप एक तो डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं जाने से पहले, इफ यू टेक 3 डीप ब्रेथ्स, वो ऐसे टेक्निक सिखाई जाती है, तो इट हेल्प्स यू काम डाउन। दूसरा, आप मॉक्स दे सकते हैं ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे बोर्ड होगा, कैसे पैनल होंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको एक वो तरीका पता चल जाता है, तो आपको अनसर्टेनिटी नहीं रहती है। तो आई थिंक ये दो चीज़ें आप कर सकते हैं घबराहट कम करने के लिए।
0: थैंक यू सुरभि जी। उत्कर्ष जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि स्पेशली अबाउट द GS पेपर 4, यानी एथिक्स के बारे में, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड को तो बहुत इम्पोर्टेंस दी ही जाती है, लेकिन इसकी प्रिपरेशन दूसरे पेपर से काफ़ी अलग होती है। आपने एथिक्स की जब तैयारी करी तो कैसे करी, और आप जो आपके फेलो लिसनर्स आपको अभी सुन रहे हैं, यंगस्टर्स, उनको कुछ आप क्या गाइड करना चाहेंगे?
2: मैम, एथिक्स पेपर हमें ये समझना होगा कि वो सिर्फ एक ऐसा पेपर नहीं जिसमें आपको बस पेजेस भरने होते हैं, आपको उसमें बाकी सारे सब्जेक्ट से भी एग्जांपल्स डालने होते हैं। आपको सबसे पहले उसके हर हेडिंग को, उसकी हर सब हेडिंग को समझना होगा, जैसे एथिक्स एंड इंटेग्रिटी हो गया, या फिर सिविल सर्विसेज हो गया, या फिर प्रोबिटी एक एग्जाम्पल हो गया। उसको आपको सबसे पहले समझना होगा कि उसका आपके सर्विस में क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एथिक्स का सीधा लिंकेज होता है कि हम जिस भी सर्विस में जा रहे हैं या फिर एक डेली लाइफ में हम खुद को कैसे कंडक्ट करते हैं। एक बार जब हम उन शब्दों का मतलब समझ जाते हैं, हम ये समझ जाते हैं कि उनसे रिलेटेड क्या क्या समस्याएँ हैं या क्या क्या इशूज़ हैं, फिर हम उनसे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले एक टॉपिक को आप उठाएं और उसके बाद उसको आप बेसिक लेवल पे पढ़ें, जो भी सोर्सेज हैं, उसके बाद उसको एग्जाम्पल्स के साथ एनरिच करें और फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें।
0: ऑल राइट सुरभि जी, यूपीएससी मेंस का जो ऐसे पेपर होता है काफ़ी स्कोरिंग माना जाता है, लेकिन कई स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि उसकी तैयारी कैसे शुरू करें। आपने ऐसे के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी, एक तो आप हमें प्लीज़ ये बताइएगा, और एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए?
1: राइट मैम, ऐसे पेपर एक बहुत ही स्कोरिंग पेपर है, एंड आई थिंक थोड़े से एफर्ट से आप उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन ला सकते हैं अपने मार्क्स में। एसए की प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है कि आप कोई भी प्रीवियस ईयर का एक एसए का टॉपिक उठाइए और उसको लिखिए, बिना किसी प्री कंसीव्ड नोशन के, बिना किसी स्ट्रैटेजी के, आप जैसे उसको नेचुरली लिख सकते हैं आप उसको लिखिए, 8-9 पेज जो भी है, फिर आप उसको रिव्यू कराइए किसी से, आप अपने 2-4 दोस्तों को दीजिए उसको, एंड वो जिस हिसाब से आपको रिव्यू देते हैं, आप खुद अपने एसे को कई बार पढ़िए एंड देन उसको नरिश कीजिए। फिर ऐसे फिर नेक्स्ट स्टेज पे हम जाते हैं, तो मल्टीपल चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है ऐसे लिखने में। पहला है कि एक एनेक्डोट अच्छा सा आप लिख दें ऐसे जो स्टार्ट करें, ताकि वो कैची रहे एग्जामिनर के लिए। देन आप उसमें करंट अफेयर्स ऐड कर सकते हैं, जो आप हम बोलते हैं कि एग्जाम्पल लिखने, तो आप करंट अफेयर्स से आप उसको पिकअप कर सकते हैं। देन एक अप्रोच होता है ऐसे लिखने के लिए कि आप वो आर्ग्यूमेंट बेस्ड ऐसे लिख सकते हैं कि जो आपका टॉपिक है आप उसके सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, देन आप उसके एग्जाम्पल से उसको सब्सटैंशिएट करें। फिर आप उसकी एंटीथीसिस भी लिखिए कि शायद जो ये स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, उसके विरोध में भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको मेंशन करनी चाहिए, तो आप वो लिखिए। एंड उसके बाद एक अच्छा सा डिटेल थोड़ा कंक्लूजन करिए, लास्ट में उसको रश मत कीजिए अपने एसे को, थोड़ा डिटेल अच्छे से बिल्ड अप करके उसको कंक्लूड कीजिए। कंक्लूजन भी आप अपने एनेक्डोट से भी लिंक कर सकते हैं, ताकि आपका एसे थोड़ा होलिस्टिक और कवर्ड लगे।
0: थैंक यू सो मच, दिस इज़ रियली अ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ अस. उत्कर्ष जी, टाइम बहुत कम बचा है लेकिन मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं. मैं आपसे फटाफट जानना चाहूँगी कि अब AI का ज़माना है और हर जगह AI, लेकिन आज जो UPSC या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसको क्या AI हेल्प कर सकती है और कैसे कर सकती है? आपके हिसाब से कैसे प्रिपेयर करना चाहिए स्टूडेंट्स को, मतलब इसके इस्तेमाल किस तरह से करें और ओरिजिनल थिंकिंग और आंसर राइटिंग स्किल्स आपकी कितनी मजबूत हो सकती हैं, या आप मतलब मैं सीधी भाषा में जाना चाहूँ तो हाउ कैन AI बी हेल्पफुल?
2: मैम, AI जैसे नई तकनीक है, अब AI का दौर आ गया है, तो डेफिनेटली इट हेल्प्स अ लॉट. किसी भी प्रिपरेशन में सबसे पहले जो एक बेसिक फंडामेंटल होता है कि आप अपना एक कंटेंट तैयार करते हैं, तो उस कंटेंट को तैयार करने में जो आपका बल्कि काम होता है, जैसे बहुत सारी PDFs होती हैं आपके पास, बहुत सारी कंपाइलेशंस होती हैं, आप AI का यूज़ करके उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. आप AI को यूज़ करके उस बड़ी PDF को ऐसे अरेंज कर सकते हैं कि आपके सिलेबस की हेडिंग्स के हिसाब से हो जाए. इसके बाद आप AI से इवन आंसर राइटिंग इवेल्युएट करवा सकते हैं. आप ये चेक कर सकते हैं कि AI आपका जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करें कि उसमें आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, उसके बाद आप उसको रिवाइज करने में हेल्प कर सकते हैं. आप अपने लिए क्विज बनवा सकते हैं उससे. एंड लास्ट में जैसे इंटरव्यू एक स्टेज है, तो उसके लिए आप अपने खुद की डैफ से भी क्वेश्चनेयर बनवा सकते हैं. तो AI कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, बट हैविंग सेड दैट एक बैलेंस हमें ये हमेशा रखना पड़ेगा कि हम AI पे ओवर रिलायंस ना करें. हम पहले अपनी खुद की क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करें और फिर जहाँ हमें ज़रूरत पड़े हम सिर्फ वहीं पर AI यूज़ करें.
0: थैंक यू सो मच. और आप ही से मैं एक और सवाल जानना चाहूँगी कि सिलेबस ऑफ कोर्स बहुत वास्ट होता है, कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, कभी कभार समझ नहीं आता. बट इफ़ यू कुड गिव अ लिटिल लाइट ऑन द टॉपिक, जहाँ GS 1, 2, 3 और 4 पेपर्स में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले 2 करें, पहले 4 करें, इफ़ यू कुड गाइड व्हाट इज़ द राइट प्रोसेस एंड हाउ टू गो अबाउट इट. आप दोनों में से जो इसका आंसर देना चाहें.
2: मैम, अंत में जाके हमें पेपर तो चारों ही लिखने हैं, तो देर इज़ नो राइट पाथ. इट जस्ट डिपेंड्स कि अब आप तैयारी शुरू करते हैं तो आप किसी ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्ट करें जो आप कंफर्टेबल हों. तो अगर आप जिस भी सब्जेक्ट में, सपोज आप पॉलिटी में कंफर्टेबल हैं, तो आप GS 2 से शुरू करें. उससे आप इस प्रिपरेशन में ईज इन टू हो जाएंगे एंड आपको थोड़ी आदत लग जाएगी. उसके बाद आप फिर टफ टॉपिक्स में भी जा सकते हैं.
0: राइट. और जाते जाते मैं आप दोनों से ये सवाल पूछना चाहूँगी, जब मेंस हो जाते हैं, प्रीलिम्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, तो इन सब राउंड्स की कैसे तैयारी करी जाए?
1: अलग अलग स्टेज पे आपका अलग अलग टाइप का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है. प्रीलिम्स के टाइम पे मेनली MCQ आता है, क्योंकि वो आप टेस्ट कर रहे हैं. उस टाइम पे आपकी सोल फोकस होना चाहिए कि आप कैसे मैक्सिमम MCQ सॉल्व कर सकते हैं, एंड वही जो बेसिक रिसोर्सेज हैं वो पढ़ के आप क्वेश्चन सॉल्व करना और प्रैक्टिस करना, वो आपकी स्ट्रैटेजी है. उसके बाद जैसे ही प्रीलिम्स होता है और मेंस है, उसके बीच में आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है. आप एक एक पेपर उठाइए, सिलेबस और सब कुछ मोस्टली हमने पहले ही किया होता है. इस टाइम पे मेन फोकस हमारा वो रिविजन याद करना एंड टेस्ट लिखना, वो आपको इस फेज में रिग्रेसली करना होता है. मेंस के बाद आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, बिकॉज फिर उसके बाद उसका रिजल्ट आता है, फिर इंटरव्यू का शेड्यूल आएगा, तो यू टेक अ लिटिल बिट ऑफ अ ब्रेक फ्रॉम योर स्टडीज में भी, एंड उसके बाद वापस इंटरव्यू स्टेज में फुल मोड से. तो आप, क्योंकि आप अनसर्टेन होते हैं, आपको नहीं पता होता रिजल्ट किस तरफ जाएगा, तो लेकिन आप कुछ कुछ बुक पढ़ने लगिए, कुछ अपना आप, क्योंकि डैफ आप पहले से फिल कर सकते हैं, तो आप अपनी डैफ की कुछ डिटेल्स हैं, जो हॉबीज हैं, उन पर थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए. थोड़ा उनमें डीपली जाके रीड करना या फिर उनको प्रैक्टिस करना, ये सब चीज़ पे आप ध्यान दे सकते हैं. एंड वंस आपका रिजल्ट आ जाता है, आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है, तो फुल मोड आप उसमें इंटरव्यू प्रैक्टिस में जाइए विद गिविंग मॉक्स एंड ऑल.
0: थैंक यू सो मच उत्कर्ष जी. क्विकली इफ यू वुड

0: लिसनर्स को आप क्या जाते जाते क्विक टिप देना चाहेंगे? दोनों से पूछना चाहूंगी मैं ये
1: मैम. ये मैंने जैसे कहा, ये एग्ज़ाम एक मैराथन है. आप बस हर दिन मेहनत करते रहिए. ट्राई टू बी बेटर देन यस्टरडे एंड डोंट कंपेयर विद एनीबडी. जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ एंड जस्ट गिव योर 100% एंड बिलीव ऑन योरसेल्फ.
2: राइट. एडिंग टू दिस, फोकस ऑन योरसेल्फ और अपनी जो मिस्टेक्स हैं पिछले वाले अटेम्प्ट में उसको एनालाइज ज़रूर कीजिए कि क्या गलतियाँ हुई मुझ पर, और उस पर काम कीजिए. हर बार आपको उस चीज़ पर काम करना होगा एंड थोड़ा कंसिस्टेंट रह के प्लस अपने क्लोज्ड वंस को अपने पास रखिए.
0: थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस उत्कर्ष जी एंड सुरभि जी. बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बातें करके एंड आई एम श्योर हमारे लिसनर्स जो आज हमें सुन रहे थे उनके लिए भी ये कॉन्वर्सेशन बहुत ही वैल्यूएबल रही होगी. थैंक यू सो मच. मैं ज्योतिका लेती हूँ अब आपसे इजाजत. आप सुन रहे थे रेनबो हेल्पलाइन. स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए FM रेनबो.

आप सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो। प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में दो दिवसीय ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक शुरू हुई। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर छापेमारी। सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारत की मानवीय सहायता को स्वीकार करने के लिए वेनेजुएला का धन्यवाद किया है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए हैं। ईरान ने हॉर्मुजगान प्रांत और महाशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। इसके चलते वैश्विक तेल की कीमतों में 3% से अधिक की उछाल आई है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राज्य में छह जिलों में वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के लिए तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। और स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराकर फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अगला मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। ये थे अब तक के इस घंटे के मुख्य समाचार।

आप सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो। मेरा नाम है स्वाति, लेकर आई हूं आप सभी के लिए बुधवार की दोपहर का वो खास प्रोग्राम जो जुड़ा है आपकी जिंदगी के सबसे गहन, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सबसे सबसे ज्यादा प्यारे रिश्ते से। एंड ऑब्वियसली इसका नाम है हम कदम। जी, आप ही के हम सफर के बारे में होती है बात और आपके इस खूबसूरत सफर के हम सफर हम भी बनते हैं थोड़ी सी देर के लिए। सुन रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। कार्यक्रम की शुरुआत दो बहुत ही खूबसूरत आवाजों के साथ।

कितने खूबसूरत बातें कर रहे थे ना। अभी आपने सुनी कविता कृष्ण मूर्ति और अभिजीत की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से ग्रहण मूवी से प्ले किया मैंने ये गाना आप सभी के लिए। आज के प्रोग्राम की शुरुआत, आज के इस हम कदम की शुरुआत की मैंने इससे, पता है क्यों? क्योंकि ये गाने के जो वर्ड्स हैं ना बहुत ही खूबसूरत हैं और हर कोई चाहता है कि आपका हम सफ़र जो है ना आपके लिए कुछ इसी तरह की बातें कहें। एंड ऑब्वियसली वाई नॉट भैया, हम पूरी तरह डिज़र्व जो करते हैं। लेकिन मज़े की बात है कि जितनी तरह की बातें, ये जो होता है एक पोएटिक लैंग्वेज जो होती है, ये पोएटिक लैंग्वेज है ना समय के साथ बदलती चली जाती है। हालांकि शुरुआत में सब यही कहते हैं, चांद सितारे तोड़ लाना, पाँव में कांटा तक ना चुभने देना वगैरह वगैरह जैसी बहुत सी बातें जो अभी आपने इस गाने में भी सुनी। मजे की बात कि ये प्रॉमिसेस बहुत सारे किए जाते हैं शुरुआत में, किसी भी रिश्ते की शुरुआत में ऑब्वियसली ऐसा होता ही है, लेकिन क्या ये प्रॉमिसेस पूरे होते हैं भाई? इससे पहले कि आप में से ज़्यादातर लोग ये कह देना कि नहीं जी बिल्कुल नहीं होता है, रियलिटी तो बहुत फ़र्क होती है, मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि एक्चुअली में रियलिटी जो होती है ना, माना कि फ़र्क होती है मगर इतनी फ़र्क नहीं होती है कि आप उसे बिल्कुल 180 डिग्री घुमा दें, क्योंकि चीज़ों की ना परिभाषा लगातार बदलती चली जाती है। पाँव में कांटा चुभने ना देना वाली बात को हम इस चीज़ से शामिल कर सकते हैं कि जब भी आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो ऐसे में आपका साथ निभाना और कोशिश ये करना कि आपकी परेशानी जितनी हो सके उतनी दूर हो जाए। देखा जाए तो कुल मिला के ना बात वही आती है, परिभाषाएं बदलती चली जाती हैं, ना केवल रिश्ते की, ना केवल इन सारे वादों की, बल्कि आप दोनों की भी एक दूसरे के साथ जो परिभाषा होती है वो चेंज हो जाती है। आफ्टरऑल ये रिश्ता ही ऐसा है, क्योंकि इश्क से शुरुआत होकर मोहब्बत तक बात पहुँचती है और अंत में ख़त्म जो होती है ना वो दोस्ती पर होती है। इसी रिश्ते के बारे में बात करते हैं हम, और इसीलिए किया हमने अपना पूरा एक ये प्रोग्राम जिसे आप सुनते हैं हर बुधवार 2 से 3 बजे के बीच सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। ये प्रोग्राम है हम कदम, मैं प्ले कर रही हूँ आपके लिए बहुत ही अमेजिंग से गाने और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये जरूर पसंद आ रहे हैं। अब कविता कृष्णमूर्ति और अभिजीत की आवाज़ के बाद मैं लेकर आई हूँ आपके लिए श्रेया घोषाल की बहुत ही अमेजिंग सी आवाज़। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की बहुत ही अमेजिंग आवाजों में मेरा वन ऑफ द फेवरेट गाना अभी आपने सुना. कितनी खूबसूरत बातें कर रहे हैं ना, लेकिन पॉइंट पे आ जाते हैं ना बाद में हम लोग. बिल्कुल ही बिल्कुल, हर तरह से, मतलब सारी बातें एक तरफ और उसके बाद में सीधी बात ही होती है. पॉइंट क्या है, कहना क्या चाहते हो? जी हाँ, रिश्ते की खूबसूरती यही है कि वो लगातार बदलता है. और मैं आपको एक बार याद दिला दूँ, हम कदम सुन रहे हैं आप मेरे यानी स्वाति के साथ ओनली ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो. आपके हम सफर के बारे में बात कर रही हूँ, आपकी जिंदगी का

सबसे गहरा, सबसे खूबसूरत रिश्ता जो होता है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। एंड ऑब्वियसली हर रोज़ जब हम खुद बदलते हैं तो ये रिश्ता भी हर रोज़ बदलता ही रहता है। लेकिन यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे बातें भी जो है ना लगातार बदल जाती हैं। जहाँ शुरुआत मैंने आपको सुनाया था कि किस तरह से होती है ना, खूबसूरत पोइट्री से, शेर व शायरी से, और बड़ी अमेजिंग वाली उपमाएँ जो हम दे देते हैं, उन सब चीज़ों से शुरुआत होती है, उसके बाद हम पॉइंट पर आ जाते हैं। लेकिन मज़े की बात है कि ये बातचीत जो है ना, उसके बाद धीरे धीरे इसमें जो एक जिसको हम कहते हैं ना अनकही बातें भी जो होती हैं, वो भी हम समझना शुरू हो आते हैं, साइलेंस तक पहुंचते हैं। और वो साइलेंस, मैं यहाँ पे कंफर्टेबल साइलेंस की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं उस अनकंफर्टेबल साइलेंस की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ जो इसलिए होता है कि हमें बात नहीं करनी है एक दूसरे से। ये उस साइलेंस की बात हो रही है जहाँ पर आप बिना कहे भी बहुत सी बातें जो है ना समझ जाते हैं। जी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी अक्सर मैं इसे कहती हूँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक्सप्रेशन की भी अपनी एक खूबसूरती होती है, और हर एक्सप्रेशन की जो अपनी एक इंपॉर्टेंस है ना, वो भी लगातार बनी रहती है। और अपने साइलेंस को समझते तो रहें, लेकिन उसके साथ साथ अपनी बातों को, अपने दिल की बातों को और एक दूसरे के लिए अच्छी बातों को ना लगातार कहते भी रहें, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, और ख़ास तौर पे आपके शादीशुदा रिश्ते में। 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। पावर ऑफ एक्सप्रेशन एंड नॉट एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स, ये एक तरह से देखा जाए ना तो कुछ इसी बारे में हमने बात की। हमारे गाने भी आज इसी से जुड़े रहे, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। मैंने आखिरी गाना जो चुना है ना आज के प्रोग्राम का, वो भी बड़े खूबसूरत है, तुलसी कुमार और केके की आवाज़ में मैं प्ले करने जा रही हूँ आप सभी के लिए। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो, प्रोग्राम आशियाना यानी कि हम कदम का समय था आज बस यहीं तक। स्वाति को दीजिए इजाज़त, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमदत्ता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
3: वाह क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
2: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
3: वाह ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई, योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
2: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
3: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
2: जी।
3: अगला संदेश हमें मिला है राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
2: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
3: श्रोताओं इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की
2: जी।
3: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं। आज हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात
2: जी।
3: तो विमलेश जी आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था
2: जी। अजीत जी मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे, गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
3: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने
2: जी।
3: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही
2: जी।
3: शाम ढलने लगी थी तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
2: श्रोताओ यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ आज हम चर्चा करेंगे कि क्या आप

0: पेड़ पौधे भी सोते हैं?
1: श्रोताओ, इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
0: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है, रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
1: अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी, आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
0: अजीत जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
1: क्यों?
0: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता।
1: जी विमलेश जी, श्रोताओं, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
0: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
1: जी।
0: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए।
1: जी, तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
1: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्यपुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।

0: कहते हैं अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर जमीन का एक विशाल टुकड़ा था। किसी कारणवश बड़ा भयंकर धमाका हुआ। और जमीन के टुकड़े अलग अलग छिटक गए। उसी से बने द्वीप और महाद्वीप।
1: ऐसा ही एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहां लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।
1: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशुपालन। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं, जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
0: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वो मेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
1: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता ये है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वह निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एम्यू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
1: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो? अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो देखने में कैसे लगते हैं?
1: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले।
0: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
1: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है। बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
0: हाँ, ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
1: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
0: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
1: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोंस लेते हैं, और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
1: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
0: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली, और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
1: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां

0: 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
1: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई, और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
0: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
1: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
0: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
1: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटू नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
2: हम लोग आपके इस ककाटू पार्क की फिल्म बनाने आए हैं, और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
3: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
4: लेकिन मिस्टर नीजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया, और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
2: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
3: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
4: कैसे चित्र?
3: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
2: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
3: क्यों नहीं, अभी चलिए।
2: चलिए।
3: आई
2: देखो वेलिंडा, ये अजगर का चित्र।
4: अरे, इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्सरे फोटो हो।
2: और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
4: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो, आदिवासी का ये चित्र।
2: मिस्टर नीट जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
3: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
2: ठीक है, कल सुबह हम वहां आएंगे, अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें।
3: हाँ।
2: गुड मॉर्निंग मिस्टर नीट जी।
3: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए।
2: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
3: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है, इल्किर।
2: अच्छा अच्छा।
3: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए, आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
4: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
3: जी।
2: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलिंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई, और देखो ना, कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
4: वाकई कमाल है।
3: अभ्यास से गलतियां नहीं होती, हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
2: सचमुच?
4: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद लें?
2: हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।

0: लीजिए, ये आपका हुआ।
1: इसकी कीमत?
0: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
2: सच?
1: धन्यवाद।
3: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान

0: वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं। एक तरह से अच्छा भी है। आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं।
1: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: मजबूत हड्डियां, सुरक्षित कदम और स्वस्थ जीवन, इसी विश्वास के साथ करते हैं आज के रेडियो डॉक्टर की शुरुआत। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त शिल्पा गुप्ता, आपके अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। कहते हैं स्वस्थ शरीर ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी चूक, सड़क दुर्घटना, खेल के दौरान लगी चोट या फिसलन जैसी घटनाएं हमारी हड्डियों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं। हड्डी का टूटना यानी फ्रैक्चर केवल दर्द ही नहीं देता, बल्कि समय पर सही उपचार ना मिले तो लंबे समय तक परेशानी का कारण भी बन सकता है। हमारे आज के रेडियो डॉक्टर का विषय है फ्रैक्चर्स, कॉजेज एंड ट्रीटमेंट, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर अजय शर्मा, ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद जी।
1: और साथ हैं डॉक्टर विनय सिंगला, ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
1: दोस्तों, हमारा एक कार्यक्रम फोन इन प्रोग्राम है, जहां आप सीधा जुड़ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारा फोन नंबर है 2342-1080, 2342-1082। अगर आप दिल्ली से बाहर से फोन कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, जुड़े रहिए हमारे साथ, आज हम बात करेंगे फ्रैक्चर्स, कॉजेज एंड ट्रीटमेंट पर। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि किस दर्द या चोट को हम समझें कि फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर क्या होता है और इसका मुख्य कारण क्या है?
2: देखो, फ्रैक्चर के मेन कारण तो हैं कि चोट लगना, भले वो एक्सीडेंट हो, कहीं फिसल के गिरे, या खेल कूद में भी स्ट्रीनस एक्टिविटीज़ के कारण भी कभी भी फ्रैक्चर हो सकता है। कोई भी दर्द जो ज़रूर से ज़्यादा हो रही है, उसमें सूजन आ रही है, तो उसमें फ्रैक्चर सस्पिशन हमेशा रखना चाहिए, जो कि एक डॉक्टर को दिखा के, भले वो एक्सरे करे, उससे निकाल लगाया जाए कि फ्रैक्चर है या नहीं।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे अगर कोई गिर गया, दर्द हो रहा है, तो क्या यही फ्रैक्चर का इंडिकेटर है या कुछ और भी हो सकता है? डॉक्टर विनय,
3: गिरने के बाद तो हमेशा हमें फ्रैक्चर का सस्पिशन करना ही चाहिए, लेकिन गिरने के बाद अगर पर्सन अपना अपर लिम या लोअर लिम यूज़ ना कर पाए, वज़न ना दे पाए, ज़रूरत से ज़्यादा दर्द हो, सूजन आ जाए, या कहीं ओल्ड एज पेशेंट जो ब्लड थिनर्स वगैरह खा रहे होते हैं, तो उसमें गिरने के बाद अंदर खून इकट्ठा हो जाता है, नीला रंग पड़ जाता है, ये सब कंडीशंस के अंदर हमें फ्रैक्चर सस्पेक्ट करना चाहिए।
1: तो क्या इसके भी कुछ अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स होते हैं कि हाँ, हमें डिफ्रेंशिएट कर सकें हम?
2: हाँ, फ्रैक्चर्स के कई टाइप्स हैं मैडम। जैसे कि अगर फ्रैक्चर हुआ और कहीं उसमें ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो उसे हम क्लोज फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, क्लोज फ्रैक्चर्स में बाहर से कोई जख्म नहीं होता, लेकिन जो ओपन फ्रैक्चर्स होते हैं, जिनमें उसका फ्रैक्चर का कंटैक्ट एक्सटीरियर से हो जाता है, बाहर से हो जाता है, तो कीटाणु वहाँ जल्दी पहुँचते हैं और इन्फेक्शन होने का डर काफ़ी हो जाता है।

0: जिसमें हमें अर्जेंसी में उस इलाज करना चाहिए, एंटीबायोटिक्स वगैरह भी देने चाहिए, ये सब है उसमें।
1: बातें हम इस पर और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं फ्रैक्चर्स कॉजेज एंड ट्रीटमेंट पे। तो डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि फ्रैक्चर के लक्षण क्या हैं, सामान्य लक्षण क्या हैं, जिनकी अनदेखी हमें नहीं करनी चाहिए।
1: जब भी किसी को फ्रैक्चर होगा तो वहाँ पे सूजन होगी, ठीक है, और मूवमेंट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, हमारे हाथ की या पैर की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो इसमें हमें खड़ा नहीं हुआ जाएगा या मूवमेंट नहीं करी जाएगी, तो ये मान लेना चाहिए कि फ्रैक्चर की काफ़ी संभावना है और डॉक्टर को दिखा के इसका इलाज कराया जाए, भले वो प्लास्टर करें, ऑपरेशन करें, किसी भी ढंग से करें, तो वो करना चाहिए।
0: यदि किसी व्यक्ति को अगर फ्रैक्चर हो जाए, वो गिर जाए या चोट लग जाए, तो वो क्या करे और क्या ना करे इमीडिएटली?
1: सबसे पहले कोई चोट लग जाए, कहीं जख्म नहीं है, सिर्फ क्लोज इंजरी है, तो बर्फ़ का सेक करें, कोल्ड फर्मेंटेशन इज़ बेटर, कोई गर्म पट्टी बांध दें। कोई स्प्लिंट होता है, गले में डालने का स्लिंग हो गया, या कोई स्प्लिंट गले का पट्टा, पैर का पट्टा।

0: दुपट्टा, नी इमोबिलाइज़र या कोई भी तरह का जो ब्रेस हो, बाइंडर हो, वो पहना जाए और वेट ना करे, उसके ऊपर वजन ना दे, ठीक है। कई कई चोटें ऐसी हैं वहाँ पे मालिश करने से ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, जैसे कोहनी का फ्रैक्चर हो गया, वहाँ मालिश करने से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखे जाते हैं, कोहनी के मूवमेंट में आगे चल के बहुत रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, मूवमेंट काफ़ी कम हो जाती है। तो जैसे कोहनी की कभी मालिश नहीं करनी चाहिए चोट पे भी। तो बाकी तो फिर जब एक्सरे होगा उसका इलाज अलग अलग है, किसी में प्लास्टर होगा, किसी में ऑपरेशन होगा, वो डॉक्टर ही बताएगा एक अच्छे से।
1: एक मैसेज है हमारे पास, ये है, लिखते हैं, आई एम सागर मखीजा फ्रॉम विजयपुरा कर्नाटका। आई हैव टू क्वेश्चंस। इफ अ पर्सन फेल्स फ्रॉम अ बाइक ऑन रोड एंड इफ ही गेट्स फ्रैक्चर इन लेग, हाउ कैन वी टेक हिम टू हॉस्पिटल सो दैट इट डजंट गेट वर्स? व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर इट एंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू क्योर द फ्रैक्चर? डॉक्टर विनय,
2: इफ द पेशेंट फॉल्स फ्रॉम द बाइक एंड द सस्पिशन ऑफ फ्रैक्चर इज देयर, इट मींस व्हेन suspicion fracture is there when there is a gross swelling and out of proportion pain is there, and there is the mobility at the bone site, means the bone fragments gets the improper mobility is there at the fracture site, and the patient is having a severe pain. In that case, patient has to be mobilized to the hospital. In that case, if we have some wooden splint, we can tie it with a cloth and we can transport the patient to the hospital. Or if we don't have anything, we can tie both the legs along with that. Or sometimes we have some cast in the ambulance. In that case, we can put a cast and transport the patient to the hospital.
1: एक और मैसेज है हमारे पास, लिखते हैं, आरजे मैम और डॉक्टर साहब को नमस्कार, मैं जानना चाहता हूँ कि कॉलर बोन का फ्रैक्चर कैसे पता चलता है, इसका क्या इलाज है और इसमें इतनी तकलीफ होती है, इसके लिए हम क्या करें, तो कृपया बताने का कष्ट करें। शिव मेरठ से। डॉक्टर जी,
0: हाँ नमस्कार जी। कॉलर बोन, जैसे कि नाम ही है, हमारी जो कॉलर है उसके नीचे की जो बोन है इसे कॉलर बोन कहते हैं। तो इसमें ये सबक्यूटेनियस बोन, मतलब स्किन के नीचे की बोन है, इसमें जब भी फ्रैक्चर होगा, सूजन आएगी, तो एकदम से मालूम पड़ ही जाता है कि यहाँ इस हड्डी का टूटा है या कुछ गड़बड़ हुई है। तो इसमें सबसे पहले तो स्लिंग बांधा जाए, जब भी चोट लगे स्लिंग बांध के रखें, कफ एंड कॉलर स्लिंग बोलते हैं, गले से लेकर आपकी कलाई तक वो बांध के रखें, और फिर उसके बाद में डॉक्टर से मिलें। अब इसके जो इलाज है, 90% केसेस तो बिना ऑपरेशन के ही ये ठीक हो जाता है। उसमें हम फिगर ऑफ एट बैंडेज, क्लेविकल ब्रेस बांधी जाती है, जो 1.5 से 2 महीने तक समय लगता है इस हड्डी को जोड़ने में। कई कई केसेस में जहां वो फ्रैक्चर जो है स्किन को पियर्स कर रहा हो या काफ़ी दूर फ्रैगमेंट्स पड़े हैं, तो उनमें हम प्लेट्स लगाना और रॉड डालना, इस करके भी हम इस अस्थि को अच्छे से जोड़ सकते हैं।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो। नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: हाँ, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
3: हाँ, पहले तो एंकर मैम और दोनों डॉक्टर साहिबान को नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
3: जी, मेरे दो बड़े अहम सवाल है। पहला सवाल मेरा ये है कि किसी शख्स को, चाहे वो पेशेंट है या फिर बिल्कुल फिट एंड फिट गुड़म गुड़ है, कैसे उसे पता चले कि मेरी हड्डियों में कमजोरी है और या फिर मेरी हड्डियां मजबूत हैं? दूसरा सवाल कि बढ़ती उम्र में होता है कि हड्डियां ही बढ़ती हैं, नसें भी बढ़ती हैं, पर अब आवश्यकता से ज्यादा नसें हड्डियां बढ़ जाए या धनुषनुमा हो जाए, आगे और झुक जाते हैं। लोग देखो, बुढ़ापे में, अधेड़ अवस्था में जो होता है, ओल्ड एज में, लोग ही हड्डियां झुक जाते हैं, लोग झुक के चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई शख्स क्या करे, इसका ट्रीटमेंट क्या है, जरा बताए, बड़ी मेहरबानी होगी, प्लीज गाइड करें।
0: नमस्कार जी, राजेंद्र जी। तो सबसे पहले तो आपने ये पूछा कि कैसे पता लगाएं कि हड्डियां कमजोर हो रही हैं। हम एक्सरे से, डेक्सा भी एक स्कैन होता है बोन मिनरलाइजेशन का, विटामिन डी के चेकअप होते हैं, कैल्शियम के चेकअप होते हैं, इनसे हमें आइडिया लग जाता है कि हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं, ठीक है। और जैसे आपने बताया कि रीढ़ की हड्डी जो झुक जाती है उम्र में, जिसे हम अपनी मेडिकल भाषा में काइफो

0: ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, ये भी ऑस्टियोपोरोसिस का खास लक्षण है, ठीक है ना। जैसे हमारी जो वर्टिबल बॉडीज़ हैं उनकी हाइट एंटी आगे की तरफ से कम होती जाएंगी तो पीछे झुकाव आता जाएगा, कुब निकलती जाएगी, ये कमज़ोर हड्डियों की निशानी है। इसको करेक्ट करने के लिए अच्छा खान पान, कैल्शियम, वाइटामिन डी, एक्सरसाइजेज, आपका बैठने का पोस्चर है, जैसे हम सोफे पे बड़ी देर तक लीन करके बैठ जाते हैं, वो सब गलत चीज़ें हैं। और करेक्ट करने के लिए ब्रेसेस भी आती हैं, करेक्टिव ब्रेसेस भी आती हैं जो पीछे आपका पोस्चर करेक्ट करे, बैठने का सही ढंग। तो ये कैल्शियम, वाइटामिन डी, एक्सरसाइज और इन चीज़ों से सही हो सकता है।
1: और डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने टेस्ट की बात करी, तो फ्रैक्चर की पुष्टि के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं?
0: फ्रैक्चर्स की पुष्टि के लिए सबसे जो कॉमन टेस्ट है वो एक्सरे है मैडम। एक्सरे से हमें मालूम पड़ जाता है कि इफ़ देर इज़ अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन देन इट मीन्स ए फ्रैक्चर। अगर हड्डी की अगर कंटिन्यूशन में कहीं ब्रेक है तो वो फ्रैक्चर ही होता है। और दूसरी जांचें जिनमें मालूम पड़ जाता है, सीटी स्कैन, एमआरआई, इन चीज़ों से भी मालूम पड़ जाता है हमें फ्रैक्चर है या नहीं।
1: डॉक्टर विनय आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी के फ्रैक्चर है तो किन कंडीशंस में या सिचुएशंस में प्लास्टर लगाया जाता है या किन मामलों में ऑपरेशन करना पड़ता है?
2: आमतौर पे बच्चों में ज़्यादातर फ्रैक्चर्स जो होते हैं प्लास्टर से ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों में अगर प्लास्टर लगने के बाद भी थोड़ा बहुत टेढ़ापन रहता है, वो उम्र के हिसाब से जैसे जैसे हड्डी ग्रो करती है वो टेढ़ापन ठीक हो जाता है। और लेकिन कुछ एक फ्रैक्चर्स होते हैं बच्चों के अंदर भी जिसके अंदर ऑपरेशन करना ज़रूरी हो जाता है। जैसे मान लो एल्बो के अंदर फ्रैक्चर होता है, अगर फ्रैक्चर ज़्यादा डिस्प्लेस होता है या एल्बो के अंदर बाहर की तरफ जिसको हम लेटरल कोंडाइल कहते हैं उसके अंदर फ्रैक्चर्स होता है, इन कंडीशंस के अंदर हमें ऑपरेशन करके उसके अंदर बिना खोले हुए, बिना चीरा दिए हुए दूरबीन के नीचे हड्डी को बिठाकर तारें डालनी पड़ती हैं। एडल्ट पेशेंट के अंदर हम आज की डेट में जैसे हम डिक्टम कहा जाता है, लाइफ इज़ द मोबिलिटी एंड मोबिलिटी इज़ द लाइफ, इट मींस कि वी हैव टू मेक द पेशेंट मोबिलाइज एज अर्ली एज पॉसिबल। इसमें पेशेंट्स को आज की डेट के अंदर बहुत डिफरेंट मॉडलिटीज़ आ गई हैं जिसके अंदर हम पेशेंट फ्रैक्चर्स को बिना चीरा दिए हुए लेज़र के द्वारा अंदर रॉड डाल देते हैं और पेशेंट की मोबिलिटी जल्दी हो जाती है और हड्डी भी जल्दी जुड़ जाती है, देर इज़ नो स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट्स। बट समटाइम पेशेंट जब फ्रैक्चर्स अनडिस्प्लेस्ड है और इन एक्सेप्टेबल कंडीशन हैं एंड पेशेंट इज़ नॉट विलिंग और द पेशेंट इज़ नॉट मेडिकली फिट फॉर द सर्जरी, इन दोज केसेज वी कैन अप्लाई द प्लास्टर आल्सो।
1: जैसे बच्चों की अगर बात करी, बच्चे हैं, ग्रोइंग एज है, उनके फ्रैक्चर हो जाता है तो क्या कुछ ध्यान रखना पड़ता है कि जिससे उनकी बोन्स पे इफेक्ट ना आए, ग्रोइंग एज पर, ग्रोइंग हेल्थ पे इफेक्ट ना पड़े?
0: जो कई के फ्रैक्चर्स ना बच्चों में खास ध्यान देने वाली बात है, जिसमें बच्चों के बोन एंड्स पे ग्रोथ प्लेट्स होती हैं, ठीक है, वो ग्रोथ प्लेट्स बच्चे की बोन को लंबा कर रही हैं और वो जब बच्चा मैच्योरिटी अटेन करेगा 15-20 साल की एज में तब जाके वो ग्रोथ प्लेट फ्यूज्ड होंगी, अगर उस तरफ फ्रैक्चर हो जाए तो वो जुड़ने के बाद भी बोन ग्रो होगी वो टेढ़ी ही होती जाएगी, डेट विल क्रिएट डिफॉर्मिटी। तो ऐसे केसेस में हम ऐसा नहीं सोच सकते कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जुड़ जाए तो चल जाएगा, ऐसे केसेस में हमें परफेक्ट अलाइनमेंट चाहिए होती है, ठीक है ना। इसे एपिफिजियल फ्रैक्चर्स बोलते हैं या ग्रोथ प्लेट के अराउंड फ्रैक्चर्स बोलते हैं। इसमें अच्छा 100% अलाइनमेंट ऑफ द फ्रैक्चर इज मस्ट, ठीक है। बाकी जो बीच की हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है जिसे हम डायफाइसिस कहते हैं, जो एंड्स ऑफ द बोन्स नहीं हुए, बीच में हुआ, उसमें थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ापन रहेगा तो बच्चा रिमॉडल कर जाता है। जब बच्चा ग्रो होता है द बोन रिमॉडल्स एंड डिफॉर्मिटी गेट्स करेक्टेड, बट नॉट एट द बोन एंड्स, जहाँ किनारे हैं यानी कि कोहनी के पास वाले, घुटनों के पास वाले हड्डियाँ जो फ्रैक्चर होती हैं बच्चों में, उनमें ऑपरेशन की काफ़ी संभावना रहती है क्योंकि 100% अलाइनमेंट लाना पड़ता है।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
3: हेलो, नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रही
3: हैं? मैं मिस्टर बेदी बोल रही हूँ, पंचकुला हरियाणा से।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
3: हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा है, November 30th, 2024 को मेरी सर्जरी हुई थी, मैं गिर गई थी तो मेरा फ्रंट का फेमर वॉल टूट गया था। हेलो।
0: हाँ जी, जी सुन रहे हैं, हम आप बोलते जाइए।
3: अच्छा ठीक है, तो मेरी सर्जरी हुई तो हो भी गई जल्दी और मैं रिकवर भी बहुत जल्दी कर गई।
0: आपका आपकी एज

0: क्या है?
1: मैं 75+ हूँ।
0: ठीक है मैडम।
1: नवंबर 24 में मेरा
0: हाँ
1: ऑपरेशन
0: मैडम,
1: था
0: ठीक है।
1: और मैं 27वां साल है मैं योगा में हूँ। तो उससे वो मेरे डॉक्टर कहते शायद आपकी मेंटल हेल्थ भी उसी से ज्यादा ठीक है, तो आप जल्दी रिकवर कर गए। अब डॉक्टर साहब ऐसा है कि एक तो मैं यहाँ हेड हूँ अपनी क्लास की, तो मैं नीचे बैठना बिल्कुल मना होता है।
0: मैडम, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि यह इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर था, जो
1: हाँ जी हाँ
0: जो
1: जी
0: हिप के एकदम साथ में। तो
1: हाँ जी
0: इसमें हम बॉल को रिप्लेस कर देते हैं,
1: हाँ जी
0: ठीक है ना?
1: रिप्लेस किया है।
0: जिस शेप की वो आपका जो हेड था, वो उसमें ब्लड प्रवाह खत्म हो जाता है, वो डेड हो जाता है। इसलिए 75 की एज में उसे जोड़ के हम स्क्रू एंड प्लेट्स वगैरह किसी चीज़ से जोड़ते नहीं, उसको निकाल के उसी शेप का दूसरा रिप्लेस कर दिया जाता है हेड,
1: हाँ
0: ठीक है
1: जी
0: ना? जिसे लेमैन लैंग्वेज में चूल्हा बदलना बोलते हैं, ठीक है
1: हाँ जी
0: ना?
1: हाँ जी
0: तो इसका सबसे बड़ा जो कॉम्प्लिकेशन है वो है डिसलोकेशन।
1: ठीक है
0: तो डिसलोकेशन ना हो, इसलिए कहते हैं कि नीचे ना बैठें,
1: ठीक है
0: आलती
1: ठीक
0: पालती ना मारें। स्क्वेटिंग एंड सिटिंग क्रॉस लेगिंग हैज़ टू बी अवॉइडेड थ्रू आउट योर
1: है।
0: लाइफ।
1: पर डॉक्टर साहब जैसे मैं क्लास करती हूँ, मैं बेड पर लेट के कर सकती हूँ?
0: अब बेड पे लेट के कर सकती हैं, बैठ के कर सकती हैं, कुर्सी
1: बैठ
0: पे,
1: के
0: सोफे
1: करती
0: पे,
1: हूँ, खड़ी भी
0: बिल्कुल।
1: करती हूँ, पर
0: हाँ, खड़े
1: बेड
0: होके
1: पर
0: भी कर
1: उल्टा भी
0: सकती
1: लेट के
0: हैं,
1: कर सकती हूँ।
0: बस आलती पालती नहीं मारनी है और
1: ठीक है
0: नीचे नहीं बैठना है,
1: नहीं, वो
0: बस।
1: नहीं बेड पर उल्टा भी लेट के कर सकते हैं हम लोग।
0: बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है
1: नहीं नहीं
0: मैडम।
1: मेरे को ये था कि मैं कहा जब तक कोई
0: चलो,
1: कंफर्मेशन आपके थ्रू ना हो तो मैं
0: नहीं
1: कुछ
0: है,
1: ऐसा नहीं।
0: ऐसी
1: तो
0: कोई
1: चलिए
0: बात नहीं
1: मिसिज
0: है।
1: बेदी, आपको आपकी जानकारी मिल गई है। डॉक्टर साहब जैसे कि इन्होंने मिसेज बेदी ने बात करी, ओल्ड एज पीपल हैं, अगर ओल्ड एज में अगर हिप फ्रैक्चर हो जाए तो जनरली और क्या किया जाता है?
0: ओल्ड एज में हिप फ्रैक्चर हो जाए मैडम, तो मैं कहूँगा 100% पेशेंट्स में एक ही अप्रोच होनी चाहिए सब डॉक्टरों की, कि उस फ्रैक्चर्स को ऑपरेट करके पेशेंट को खड़ा किया जाए, ठीक है ना? क्योंकि ये जो फ्रैक्चर होता है, ये चोट के कारण ही नहीं टूटा है, ये कमज़ोर हड्डियाँ जो हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, इस कारण भी फ्रैक्चर हो जाता है। अगर इसमें हम प्लास्टर करें या ट्रैक्शन लगाएं, तो लेटे रहने के कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है? तो जैसे बेड सोर हो जाएगा लेटे रहने से, पैर में पिंडलियों में खून जमा हुआ है, जमा खून ब्रेन में जाके ब्रेन क्लॉट करेगा, कहीं गड़बड़ करेगा, लेटे लेटे यूरिन इन्फेक्शन बढ़ेगा। तो कॉम्प्लिकेशन इज मच हायर इन दोज पेशेंट्स विच वर नॉट ऑपरेटेड। तो अच्छे रिजल्ट उन्हीं पेशेंट्स में है जिसमें रिस्क उठा के जल्दी से ऑपरेशन किया जाए, ताकि पेशेंट की एक्सरसाइज और चलना जल्दी से जल्दी किया जा सके, क्योंकि बेड रिडन कॉम्प्लिकेशन बहुत जल्दी इन इस एज में पकड़ लेती हैं।
1: और अगर जैसे कमर की हड्डी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अगर फ्रैक्चर हो जाए तो उसे कैसे ट्रीटमेंट करी जाती है?
2: कमर की हड्डी के जब फ्रैक्चर्स होते हैं, पहली बात तो ये या तो किसी हाई एनर्जी ट्रॉमा से, जैसे फॉल फ्रॉम हाइट है, उससे हो जाते हैं। जैसे ओल्ड एज पेशेंट के अंदर जो फर्श गीला हो वहाँ स्लिप करके गिर के, जैसे ओल्ड एज पेशेंट मंदिर जाते हैं, फर्श गीला हो वहाँ गिर जाते हैं, वहाँ फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। इन कंडीशंस के अंदर आमतौर तो वैसे जहाँ पेशेंट दर्द बताता है, उस जगह के पार्ट का एक्सरे लेकर पता चल जाता है कि मरीज को फ्रैक्चर है कि नहीं। पर जब कई बार हड्डी बहुत कम पचकी होती है, जहाँ पे अभी हमें पता नहीं चलता, तो उस कंडीशन के अंदर हमें MRI करवा लेते हैं, जिससे कंफर्म हो जाता है। ये तो बात होगी कि कंफर्मेशन कैसे करना है, नंबर 1। नंबर 2, जब कमर की हड्डी का फ्रैक्चर होता है, इस कंडीशन को कमर की हड्डी के पीछे ही जो स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम है, पीछे स्पाइनल कॉर्ड आती है, इट इज़ जस्ट लाइक केबल विच कैरीज अ करंट टू होल ऑफ द बॉडी। अगर हमें इसके अंदर उस केबल के ऊपर, उस स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंप्रेशन पड़ता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग हमें न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आ जाता है, जैसे पैरालिसिस हो जाता है, वैसी कंडीशन हो जाती है। उस चीज़ को बचने के लिए जब भी कमर का फ्रैक्चर होता है, पेशेंट को एब्सोल्यूट बेड रेस्ट कहा जाता है। एब्सोल्यूट बेड रेस्ट मीन्स टॉयलेट भी आपको बेड पे ही करना है। अब रहेगी उसकी बात मैनेजमेंट की। अगर तो ऐसे पेशेंट हैं जिसको हमें कंजर्वेटिव मीन्स, हमें कुछ भी नहीं करना है, उस कंडीशन के अंदर कुछ ब्रेस

0: 6 से 8 हफ्ते आपको बिस्तर के अंदर ही रहना है, लैट्रिन पेशाब भी आपको बिस्तर पे ही करना है, तब की हड्डी थोड़ी स्ट्रांग नहीं हो जाती। नहीं तो बिना स्ट्रांग किए अगर हड्डी नहीं जुड़ती, पेशेंट खड़ा होता है, नसों पे दबाव पड़ेगा, तो जैसे पैरालिसिस कंडीशन जैसी हो जाती है वैसी कंडीशन हो सकती है। अगर जिस कुछ कंडीशंस के अंदर हम इसके अंदर जहाँ जब वहाँ पे फ्रैक्चर होने के कारण जो फ्रैक्चर के फ्रैगमेंट्स हैं, वर्ट स्पाइन के फ्रैगमेंट्स हैं, वो पीछे डिस्प्लेस होकर पीछे नसों को चुभोते हैं, उस पर प्रेशर डालते हैं, उस कंडीशंस के अंदर हमें इसको ऑपरेशन करने के उस प्रेशर को ख़त्म करना पड़ता है और उसके अंदर हमें प्लेट पेच भी लगाने पड़ते हैं। पर कई बार आज की डेट में अब लेटेस्ट जो मॉडलिटी आई है जिसके अंदर इतना कंप्रेशन नहीं है और पेशेंट को पेन काफ़ी ज़्यादा है, इस कंडीशन के अंदर हम लेज़र वाला ऑपरेशन भी कहते हैं, जिसको हम वर्टिप्लास्टी कहते हैं, काइफोप्लास्टी कहते हैं, वेसल प्लास्टी कहते हैं। उस कंडीशन के अंदर हम लेज़र दूरबीन के नीचे देखते हुए एक इंजेक्शन लगा देते हैं, सीमेंट का इंजेक्शन लगा देते हैं, वो वर्टी बॉडी यहाँ फ्रैक्चर होता है उसके अंदर जाता है, फ्रेगमेंट्स फिलने बंद हो जाते हैं, पेशेंट को हम जल्दी चला सकते हैं, उसको बेड रिडन नहीं होना पड़ता।
1: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, मैम नमस्ते, डॉक्टर विनय जी को भी नमस्ते,
0: नमस्ते मैम।
1: डॉक्टर अजय जी को भी नमस्ते, आप सभी टीम को धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए। मैं 52 वर्षीय हूँ और कुछ वज़न उठाने के कार्य को करने की मजबूरी है। दोनों कंधों में दर्द रहता है, पेन बाम से आराम मिलता है, तो सलाह दीजिए जिससे मेरी हड्डियाँ मजबूत रहें। ये है कृष्णा रायपुर सी जी।
2: हाँ जी कृष्णा जी, देखो वज़न उठाना आपकी मजबूरी है जैसा बता रहे हैं, तो उसमें तो हमें कमर दर्द की और घुटनों की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आपको कंधों की ज़रा दिक्कत है, तो क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे?
1: हाँ जी, वो मैसेज है तो वो सुन रहे हैं।
2: चलिए, तो फिर अगर शुगर वगैरह नहीं है आपको, कोई फ्रोज़न शोल्डर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको व्यायाम वर्जिश ही करनी है कंधों की, जो फिजियोथेरेपी वाले आपको सर्वाइकल शोल्डर एंड स्कैपुलर एक्सरसाइजेज अच्छे से सिखा देंगे, ठीक है? और बाकी अपना खान पान में दूध, दही, पनीर, फल, सलाद का ध्यान रखेंगे। विटामिन डी की जो नेचुरल डाइट है वो है बॉइल्ड एग्स, फिश एंड सनलाइट। अगर आप ये सब का सेवन नहीं हो पाता है तो विटामिन डी, कैल्शियम डॉक्टर से मिलके भी वो भी लें, एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी से आप ये सब चीज़ें कर पाएंगे।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं फ्रैक्चर्स कॉजेज एंड ट्रीटमेंट पर। अभी हम जानेंगे कि किस तरीके से अपनी हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं, कैसा खान पान रखें और कैसे सुरक्षित लग रहे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं फ्रैक्चर्स कॉजेज एंड ट्रीटमेंट पे। तो डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे, अगर कोई ऐसा बॉडी पार्ट अगर फ्रैक्चर हो जाता है जहाँ पर और प्लास्टर नहीं लग सकता, तो उसकी कैसे ट्रीटमेंट की जाती है?
2: हाँ, कई कई जगह ऐसी हैं, जैसे कि रिब्स हो गई, रिब्स में पसलियों का जो फ्रैक्चर होता है, कॉलर बोन का भी फ्रैक्चर होता है, तो इसमें भी प्लास्टर नहीं करते हम। रीढ़ की हड्डी में भी बहुत सारों में फ्रैक्चर्स में प्लास्टर नहीं किया जाता। टेल बोन जो है, रीढ़ की हड्डी का आखिरी हिस्सा, कॉक्सिक्स, वहाँ भी प्लास्टर की ज़रूरत नहीं होती है, ना कर सकते हैं। कूल्हे की हड्डियाँ भी टूट जाएँ, उसमें अगर प्लास्टर कर दें तो पेशेंट की डेली एक्टिविटीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो उसमें भी प्लास्टर इलाज नहीं है इसका। बच्चों में तो फिर भी ठीक है, कूल्हे की हड्डियों के फ्रैक्चर्स में हम प्लास्टर कर देते हैं, स्पाइका कर देते हैं, पर बड़ों में ये संभव नहीं हो पाता। तो इनके जो इलाज हैं वो शुरुआत से शुरू करता हूँ मैं, जैसे गर्म पट्टी बांधी, रेस्ट किया, थोड़ा समय दिया, अच्छा खान पान किया, तो उन चीज़ों से हड्डियाँ जुड़ जाती हैं समय के साथ। ये ध्यान रहे, फ्रैक्चर जो है हम डॉक्टर्स लोग इतने नहीं जोड़ते जितने पेशेंट खुद जोड़ता है। पेशेंट का अच्छा खान पान, अच्छी हीलिंग, जो उसको एंसेस्ट्रल एसेट मिला है, उसको पुश्तैनी जो हड्डियाँ जोड़ने की हीलिंग की पावर मिली है, उससे हड्डियाँ जुड़ती हैं। हमारा तो काम उसे सही राह दिखाना है जब तक वो जुड़े ना, ठीक है ना। वी ओनली असिस्ट द नेचुरल हीलिंग, वी कांट फाइट विद द नेचुरल हीलिंग। तो गर्म पट्टी बांधना, सिकाई करना, रेस्ट देना, इन चीज़ों से जुड़ जाती हैं। कॉक्सिक्स, रिब्स का फ्रैक्चर हो जाए तो ज़्यादातर में तो रिब बेल्ट पहनने से काम चल जाता है, बड़े रेयर केसेस में ऑपरेशंस वगैरह करने की नौबत आती है। कॉक्सिक्स का जहाँ तक बात है तो खड़े होने और चलने में भी प्रॉब्लम है, तो इनके लिए बैठने के लिए सीट आती है, कॉक्सीडाइनिया सीट, ठीक है ना। ऐसी ऐसी सीट पहने तो दो महीने में लगभग ये हड्डी जुड़ जाती हैं, ठीक है। कूल्हे की जो हड्डियाँ टूट जाएं, इसमें ट्रैक्शन लगा सकते हैं। छोटा मोटा फ्रैक्चर है रेमाए वगैरह का पेल्विस में, तो स्किन ट्रैक्शन विल बी सफिशियंट। उस पैर में खिंचाव लगा दिया, 2 किलो का 3 किलो का, तो 3-4 हफ्ते में वो काफ़ी हील हो जाता है। लेकिन कूल्हे की हड्डी जो टूटी हैं तो उसमें ऑपरेशन की ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ऑपरेशन करके प्लेट लगाई जाए, स्क्रूज डाले जाएं, या जैसे अभी बेदी जी का फ़ोन आया था, उनका इंटरकैप्सुलर नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर था, जो जिसमें जुड़ने की संभावना नहीं होती है, तो उसमें ऑपरेशन करना पड़ता है। ये सब चीज़ें हैं।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो
3: हेलो, नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: मैं रघुवीर सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ, उत्तराखंड से।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
3: मेरा प्रश्न ये था कि डॉक्टर साहब से कि जैसे हड्डी को मजबूत बनाने के लिए, या जैसे लेंथ होती है हड्डियों की, जैसे पेरेंट्स होते हैं उनके अनुसार ही उनके बच्चों के कद्स होते हैं, या उसको बढ़ाने के लिए या कुछ मजबूत बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम हड्डियों को?
2: हाँ देखिए, इसमें आपके क्वेश्चन में दो पार्ट हैं आपने, एक तो हड्डियों की मजबूती के लिए क्या किया जाए, दूसरा आप हाइट के बारे में पूछ रहे थे, हाइट कैसे इंक्रीज की जाए।
3: हाँ,
2: ठीक है। तो आप उत्तराखंड से हैं?
3: हाँ,
2: तो पहाड़ी लोगों की हाइट वैसी कम होती है।
3: हाँ, जैसे पेरेंट्स होते तो उन्हीं के अनुसार ही बच्चे होते हैं, लेकिन
2: तो नेचर ने ऐसा बनाया है,

0: क्योंकि उन्हें पहाड़ों पर रहना है।
1: हाँ।
0: पहाड़ों पर रहने वाले जो बाकी भी जानवर भी हैं, पालतू जानवर भी हैं, वो भी ज्यादा हाइट वाले नहीं होते। ठीक
1: हाँ।
0: है ना, वहां आपको जिराफ नहीं मिलेंगे, कैमल नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, कम हाइट वाले मिलेंगे। नेचर ने ऐसा इसलिए किया है ताकि गिरें कभी तो कभी इन्हें चोट ना आए ज्यादा, ठीक है ना।
1: अच्छा,
0: तो हड्डियों की मजबूती के लिए तो सबसे बढ़िया कैल्शियम है, जिसके सोर्सेज हैं ही हमारे पास, दूध दही पनीर, विटामिन डी है ही, विटामिन डी के सोर्सेज हैं सूर्य की रोशनी, एग और फिश, ठीक है।
1: ठीक है ठीक है।
0: और ये सब चीज़ें आप ये ना सोचें कि ये सब खाना पीना मुंह में डाल लिया हमने, पच गया तो हमारी हड्डियां मजबूत हो गई। मजबूती के लिए एक्सरसाइज व्यायाम बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो कैल्शियम हड्डियों में जाके जमा होता है और हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अब रही बात आपने जो कहा था जो हाइट बढ़ाने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए एक नॉर्मल चीज़ इतना ध्यान रखें कि विटामिन डी कैल्शियम अच्छा रहे। जब बच्चा लंबा हो रहा है, जब उसकी हाइट गेन हो रही है, वो गेम्स खेले, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ऐसी चीज़ें खेलने से थोड़ी हाइट विटामिन डी लेते हैं तो अच्छी निकल आती है। लेकिन जो हेरिडिटरी है किसी का, जो हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, कोई ऑपरेशन की संभावना है, तो ऐसा नहीं कहूँगा नहीं है, तो कई ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एलिजा राव होता है, एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा के हम हाइट धीरे धीरे बढ़ाते हैं, वो एक लंबा प्रोसेस है, साल तक चलने वाला प्रोसेस है। कभी टांग की हाइट लंबी करेंगे, एक फिर उसके बाद थाई की हाइट लंबी करेंगे, तो उसमें भी एक लिमिट है, एक लिमिट तक कर सकते हैं। अगर हम पैरों की हाइट ज़्यादा लंबी कर दें और स्पाइन की हाइट कम है तो मिसमैच भी हो जाता है, देखने में भी सही नहीं लगता है, ठीक है। फिर हार्मोन थेरेपीज भी बच्चों में दे देते हैं, ग्रोथ हार्मोन दे दिया ताकि उसकी हाइट बढ़े, उसमें भी थोड़ा सा खतरा रहता है। ग्रोथ हार्मोन जब देते हैं तो सेक्स हार्मोन जो है वो उसमें गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। फिर भी एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बच्चे में, जो बच्चे अभी मैच्योरिटी अटेन नहीं करे हैं, जिनकी उम्र 13-15 साल से कम है, उसमें ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह के भी बच्चों का डॉक्टर देख के या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट देख के इस बारे में सोच सकता है।
2: एक मैसेज हमारे पास, ये है जोया, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया। डॉक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय गुड फूड टू मेक ब्रोकन बोन टू क्योर इटसेल्फ?
3: सी, द बोन्स आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन एज वेल एज द कैल्शियम। सो द हाई प्रोटीन इनटेक मींस इफ द यू आर द वेजिटेरियन, टेक लॉट ऑफ पल्सेस, सीरियल्स, स्प्राउट्स, चीज, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एंड इन द नॉन वेजिटेरियन यू कैन टेक द एग अलॉन्ग विद द नॉन वेज ऑल्सो, along with the green leafy vegetables and exercises and all these things will help in to strengthen the bone.
2: एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं शिल्पा मैम, दोनों डॉक्टरों को गुड आफ्टरनून। महिलाओं में कमर का दर्द एक आम बीमारी है, वो अपने शरीर पर ध्यान नहीं देती हैं अक्सर महिलाएं, तो दोनों डॉक्टर इस पर क्या कहेंगे? नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड।
0: ये सही कहा आपने, महिलाओं में कमर दर्द की जो प्रॉब्लम है थोड़ी मर्दों की अपेक्षा में थोड़ी अधिक ही होती है, ठीक है। कमर दर्द के कई कारण हैं, हमारे पेशाब की जगह का इन्फेक्शन, या फिर गर्भाशय की कोई भी दिक्कत हो, इवन किडनी का भी जो पथरी है या इन्फेक्शन है वो भी सब कमर दर्द करती है, ठीक है ना। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो लेडीज़ में है काफ़ी, इसके बारे में एक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा के ये रूल आउट कर लें, ये नहीं है तो फिर आता है कि हमारी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ जिससे कमर दर्द होती है, तो उसके लिए कमर के व्यायाम करना, सही पोस्चर बैठने का होना, ये सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं जिनसे ठीक रहेगा।
2: डॉक्टर साहब, जैसे कई बार है बच्चे हैं या बड़े हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, ठीक है, वो गिर गए, उनकी फिंगर्स पे लग गए या शोल्डर्स में लग गई, समझ में नहीं आता फ्रैक्चर है या दर्द है, तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें और इमीडिएटली क्या करें?
3: बच्चों में खेलते वक्त चोट लग जाना और फ्रैक्चर्स हो जाना एक आम सी बात है। इस कंडीशंस के अंदर अगर पेन बहुत ज़्यादा सीवियर है, जैसे मैंने पहले बताया, जैसे हम चमड़ी कटती है, चोट लगती है, खून बहता है, इस कंडीशन के अंदर खून नहीं बहा पर अंदर तो खून बहा ही, जिसकी वजह से वहाँ पे नीलापन आ जाना, या लॉन्ग बोन फ्रैक्चर हो वहाँ पे टेढ़ापन आ जाना, ये सब चीज़ें हैं जो सस्पेक्ट करती हैं फ्रैक्चर है। इस कंडीशंस के अंदर सबसे पहले हमें कोल्ड

0: वाटर फॉर्मेंटेशन करना चाहिए, आइस पैक लगानी चाहिए, ना कि हॉट वाटर फॉर्मेंटेशन करना चाहिए। उस कोल्ड वाटर फॉर्मेंटेशन से, आइस पैक से सूजन कम रहेगी, नंबर वन। नंबर टू, जहाँ पे हम उस चीज़ को हम इमोबिलाइज करें, बाय किस लकड़ी के डंडे से, इन चीज़ से, और इन कंडीशन जैसे लोअर लिम्ब में फ्रैक्चर्स है, आपके डंडे से बांध दें, अगर नहीं है तो दूसरे लिम्ब के साथ ही किसी कपड़े से बांध दें, और उसके बाद हॉस्पिटल में ले जाकर वहाँ पर एक्सरे करके डॉक्टर की आगे सलाह लें। और अगर फ्रैक्चर है तो आमतौर पर, जैसे पहले बताया था कि बच्चों के अंदर फ्रैक्चर्स के कंडीशन में प्लास्टर से ठीक हो जाते हैं, पर कुछ एक कंडीशन जैसे एल्बो फ्रैक्चर्स, जो फ्रैक्चर नोटोरियस फ्रैक्चर्स हैं, जो कई बार प्लास्टर लगे लगे भी बाद में अंदर ही अंदर टेढ़ापन वापस आ जाता है। इन कंडीशंस के अंदर भी हम कई बार चांस लेते हैं, प्लास्टर करने के बाद हम सीरियल एक्सरेज लेते हैं, मीन्स एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद एक्सरेज लेते हैं, ताकि ये देखने के लिए कि प्लास्टर लगा तो दिया, पर प्लास्टर लगे लगे भी हड्डी अंदर गलत ढंग से तो नहीं जुड़ रही। तो अगर फ्रैक्चर्स, अगर एक्सरे करने के बाद फ्रैक्चर्स नहीं हमें नज़र आता, इट मीन्स पेशेंट को सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है या लिगामेंटस इंजरी है, उस कंडीशंस के अंदर हम कोई गर्म पट्टी या स्प्रिंट बांध देते हैं।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: नमस्ते मैम। नमस्कार, नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं
0: नमस्कार जी।
2: संजीव कुमार चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ सर।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
2: मेरा प्रश्न मैम ये है कि 1-2 दिन से ना मेरे जो जॉ की हड्डी है, जबड़े की हड्डी में बहुत दर्द हो रहा है राइट साइड पे।
3: ठीक है जी, कोई चोट
2: और
3: वगैरह
2: खाना
3: तो नहीं
2: भी
3: लगी
2: नहीं
3: ना?
2: खाया जा रहा मेरे से।
3: कोई चोट नहीं लगी?
2: नहीं सर, कोई चोट नहीं लगी।
3: आपके अंदर के दांतों में तो नहीं कोई सड़न या कीड़ा टाइप इस तरह से?
2: नहीं नहीं सर।
3: कई बार मोलर टीथ के कारण भी यहाँ पे दर्द होती है, बाकी
2: ओके।
3: हाथों पैरों के जोड़ों में कोई सूजन दर्द ऐसा नहीं?
2: नहीं सर।
3: और क्योंकि आपको बड़े थोड़े टाइम से ही है, 2 दिन से ही है ये अभी।
2: हाँ, पर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है सर।
3: हाँ
2: आज तो मेरे से खाना भी नहीं खाया गया आज।
3: हाँ तो अब इसमें कई चीज़ें हो सकती हैं, जैसे एक वायरस इन्फेक्शन हो जाता है हमारे हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में, पैरोटिड में, कई बार मम्प्स भी हो जाते हैं, इस कारण भी जो है ये दर्द हम जॉ की तरफ समझते हैं। तो इस बारे में भी किसी डॉक्टर को दिखा लें आप, MBBS डॉक्टर हो या MD मेडिसिन डॉक्टर हो, वो देख लेगा। रही बात आपके जो जोड़ होता है, जबड़े का जोड़ होता है, जो
2: हाँ वही वही दर्द हो रहा है सर।
3: अगर वहाँ दर्द है तो कई बार गठिया रोग का भी लक्षण होता है ये। इसमें हम यूरिक एसिड, RA फैक्टर, ये
2: हाँ,
3: सब
2: मुझे
3: चीज़ें,
2: यूरिक एसिड की मेडिसिन लेता हूँ सर मैं।
3: हाँ तो एक गठिया रोग है आपको। खैर चलो, यूरिक एसिड की वैसे ही कोई कोई ज़्यादा पसंदीदा जगह नहीं है, पैरों की तरफ ज़्यादा दर्द करता है यूरिक एसिड, लेकिन आपको जबड़े में हो रहा है तो फिर भी एक बारी एक्सरे करके देख लेंगे, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिल लें।
2: ओके
3: बहुत सारे लोगों को गलत ढंग से TV देखना, मोबाइल देखना, किताबें पढ़ना, हाथ अपनी हथेली का ऐसा जोर पड़ जाता है जबड़े पे पढ़ते लिखते वक्त, तो उससे भी होता है। ठीक है,
0: ओके
3: हाँ
1: जी डॉक्टर साहब, अगर किसी को रिब बोन में अगर फ्रैक्चर हो जाए
3: हाँ
1: तो फिर उसकी कैसे ट्रीटमेंट की जाती है?
3: रिब्स बोन मैडम, ये मूवमेंट वाली बोन है। इंसान जब सांस लेगा तो 1 मिनट में लगभग 18 बार वो बोन हिलती ही रहेगी, वो कभी उसकी मूवमेंट आप रोक नहीं सकते, ठीक है ना? तो मगर एक अच्छी बात है कि इसमें अच्छी हीलिंग हो जाती है। तो 90% से भी ज़्यादा केसेस में रिब बेल्ट दे देते हैं हम लोग, जैसे कमर की बेल्ट आती है, ऐसे पसली की भी बेल्ट आती है, उससे इमोबिलाइज हो जाता है और वो हील हो जाता है, और अच्छा खान पान, ये हीलिंग, इन चीज़ सब चीज़ों से ठीक हो जाता है। बड़े रेयर केसेस में रिब का कोई शार्प फ्रैगमेंट टूट के अंदर फेफड़े के इस पे चुभ जाता है, तो उसमें सांस में दिक्कत आ जाती है, तो इमरजेंसी वाली बात भी बन जाती है, उन केसेस में ऑपरेशन भी करना पड़ जाता है। कई की केसेस में रिब में जोड़ने के लिए छोटी छोटी प्लेट्स एंड वायर्स भी आती हैं, उनसे भी जोड़ी जाती हैं, पर 90% केसेस में ज़रूरत नहीं पड़ती है।
1: जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं फ्रैक्चर्स की ट्रीटमेंट्स पर, तो क्या कुछ ऐसी आधुनिक तकनीकें उपलब्ध हैं कि जिसे जल्दी क्योर हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए?
0: मैम, सर्जरी जो होती है वो फ्रैक्चर हीलिंग को डिले करती है। हमारा पर्पस है हड्डी को जोड़ना, हड्डी को जोड़ना फ्रैक्चर सर्जरी तब करी जाती है जो फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स को हम नॉर्मल पोजीशन में अलाइनमेंट में नहीं ला पाते प्लास्टर की वजह से। अदरवाइज सर्जरी हमेशा फ्रैक्चर हीलिंग को डिले करती है, क्योंकि सर्जरी के अंदर जब स्पेशली हम सर्जरी में जब फ्रैक्चर को खोलते हैं प्लेट वगैरह लगाने के लिए, जब हड्डी टूटने के बाद

0: अंदर जो खून इकट्ठा होता है, जिसको हम हेमेटोमा कहते हैं, वो हड्डी जोड़ने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। लेकिन जब हम सर्जरी करते हैं, प्लेट वगैरह लगाते हैं, तो हेमेटोमा ड्रेन आउट हो जाता है, तो उसको डेट डिलेज द हीलिंग। बट इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आजकल हम नेलिंग करते हैं, जिसको हम दूरबीन वाला ऑपरेशन भी कह लीजिए। उसमें हम दूरबीन के द्वारा हड्डी को बिठा के खोखली हड्डी के अंदर अंदर रॉड डाल देते हैं, और जिस जगह पे फ्रैक्चर होता है उस जगह पे इंसीजन नहीं दिया जाता, और जो अंदर हिमेटोमा कलेक्ट होता है वो ड्रेन आउट नहीं होता, तो इससे हीलिंग डिले नहीं होती। सो दीज आर द लेटेस्ट ट्रेंड्स। यहाँ पर हम फ्रैक्चर्स को ट्रीट करते हैं बाय द इसको कहते हैं इंट्रामेडुलर नेलिंग या इंटरलॉकिंग नेलिंग कहते हैं। बट इन केस ऑफ द हिप फ्रैक्चर्स, जिसके अंदर यहाँ पे 60 साल से उम्र ज़्यादा होती है, फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर होता है, इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर होता है, यहाँ पे हड्डी को जुड़ने की संभावना बहुत कम होती है। अगर जुड़ भी जाए तो हड्डी में चूल्हे का खून का दौरा ख़त्म होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उस कंडीशंस के अंदर हम 60 साल की उम्र के बाद और जोड़ के अंदर का फ्रैक्चर, जिसको इंट्रा कैप्सुल कहते हैं, उसमें जोड़ को बदल कर नया जोड़ डाल दिया जाता है। अगर 60 साल से उम्र से कम हो तो उसको हम जोड़ने की कोशिश करते हैं।
1: तो फ्रैक्चर या के बाद जो जैसे प्लास्टर है वो खुल जाता है, या फिर ऑपरेशन के बाद का, उसके बाद का प्रोसीजर क्या रहता है?
2: ये सारी चीज़ें डॉक्टर के एडवाइस से ही फॉलो होनी होती हैं। ज़्यादातर केसेस में तो हम प्लास्टर निकलने के बाद जो लिम्ब है, हाथ या पैर, वो स्टिफ मिलेगा हमें, उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगी, तो उसके लिए फिजियोथेरेपी का एक कोर्स जरूर करना पड़ता है। वो डॉक्टर गाइड करता है, ऑर्थोपेडिक सर्जन आपका, कि फिजियोथेरेपिस्ट इसको की कौन कौन सी देनी है, कैसी सिकाइयाँ करनी है, कितनी मूवमेंट किस किस रेंज में लानी है। ज़्यादातर केसेस में 3-4 हफ्ते में फुल मूवमेंट आ जाती है और ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। तो जैसे फिजियोथेरेपी की आपने बात करी, तो फिजियोथेरेपी या व्यायाम कितना ज़रूरी है और ये रिहैबिलिटेशन में कितना समय लगता है?
2: देखिए, हमारे इसमें कहावत है कि सक्सेस ऑफ ए गुड ऑर्थोपेडिक सर्जरी लाइज इन द हैंड्स ऑफ ए फिजियोथेरेपिस्ट। हम कितने भी अच्छे से हमें जोड़ दें हड्डियाँ, जोड़ उसकी अच्छी मूवमेंट के लिए, अच्छी वर्किंग में आने के लिए अच्छा व्यायाम बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है।
1: एक मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, नमस्ते मैडम, ऐसा कहते हैं कि बुढ़ापा पैरों से आता है, क्या सही है? क्या करें जिसे एजिंग लेट आए बोन्स को फिट रखने में? राखी फ्रॉम किशनगढ़ डिस्ट्रिक्ट अजमेर।
0: राखी जी, देर इज़ नो मेडिकेशन इन द वर्ल्ड एज सच जो एजिंग प्रोसेस को रोक सके। एजिंग हैज़ टू अकर विद टाइम इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। हाँ, टू स्ट्रेंथन द बोन, यस, वी कैन टेक अ गुड अमाउंट ऑफ द कैल्शियम एंड प्रोटीन्स एंड गुड अमाउंट ऑफ एक्सरसाइजेज अलॉन्ग विद द सन एक्सपोजर एंड द वाइटामिन डी।
1: एक और मैसेज है, ये लिखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर सच एन एजुकेशनल प्रोग्राम, डॉक्टर अनिल कालरा गुरुग्राम से। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे फिजियोथेरेपी की, तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैल्शियम और विटामिन डी के जब बारे में जैसे कि आपने बताया था, तो ये हमें कितना लेना चाहिए, कैसे कैसे लेना चाहिए जिससे हम अपनी बोन्स मजबूत रख सकें? कई बार होता है कि कहते हैं कि बोन्स वीक हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, कमज़ोर बोन्स हैं, इसलिए चटक चटक कई बार आवाज़ भी आती है।
2: नहीं, ये जो आवाज़ आती है ये अपने जो कहते हैं वो ऐसा नहीं, कई बार बहुत सारी तो जो जोड़ों में कड़ाके निकालते हैं, जॉइंट की मूवमेंट्स आती है, वो तो साइनुअल फ्लूड में एयर बबल्स बनते हैं उसके कारण होती है। लेकिन जो दूसरी आवाज़ें आती हैं, जो एब्नॉर्मल साउंड्स हैं, वो ऑस्टियोफाइट बोलते हैं, जोड़ घिस के हड्डी बढ़ जाए, सब इन कारणों से आती हैं, तो उसके इलाज हैं, जैसे कि ब्रेसिस पहन लो, सिकाई करें। कई की केसेस में जहाँ जोड़ों में ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, पेन है, इमोबिलिटी, ज़्यादा चला नहीं जा रहा, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, एक्सरे में डॉक्टर देख रहे हैं जॉइंट स्पेस ख़त्म हो गई है, तो ऐसे केसेस में जॉइंट रिप्लेसमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, जहाँ नहीं कर पा रहे हैं उनमें ब्रेसिस पहना के एक्सरसाइज करा के काम चलता है।
1: अच्छा, कई बार होता है कि जैसे कोई बच्चा है, कहते हैं कि इसकी बोन्स कमज़ोर हैं, किसी की कहते हैं बोन्स हैवी है, तो क्या डिफ्रेंशिएट है ये?
2: नहीं, बोन कमज़ोर और हैवी का ऐसा नहीं है। ज़्यादातर तो कॉर्टिकोमेडुलरी रेशियो एक्सरे में देख के डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है भाई, इसमें बोन जो है थोड़ी स्ट्रॉन्गर है, जिसमें कॉर्टेक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, जिसमें मेडुला ज़्यादा वाइड है, उसमें बोल देते हैं। डॉक्टर विनय, आप कुछ बताना चाहिए बारे में?
0: ये देखो, जो बोन्स वीक हैं या स्ट्रॉन्ग हैं, बल्कि मुझे बड़ा पैराडॉक्सिकल है कि अमीर

0: बच्चों के, अमीर माँ बाप के बच्चे घरों में रहते हैं, सन एक्सपोजर नहीं होता, तो उनमें वाइटामिन डी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, रिकेट्स ज़्यादा होता है। गरीब बच्चों के, माँ बाप के बच्चे, झोंपड़े के बच्चे बाहर खेलते हैं, धूप में रहते हैं, विटामिन डी एक्सपोजर ज़्यादा होता है, चाहे वो दूध कम पीते हैं लेकिन वो उनकी एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, वाइटामिन डी एक्सपोजर ज़्यादा होता है तो उसमें रिकेट्स के चांसेस कम रहते हैं।
1: कम रहते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि फ्रैक्चर होने से ठीक होने तक की जर्नी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: फ्रैक्चर हो गया तो सबसे पहले तो उसे इमोबिलाइज किया जाए, उसे मूवमेंट कम करी जाए ताकि फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स इधर उधर इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को ना डैमेज करें, नर्व्स मसल एंड बोन्स को डैमेज ना करें। फिर उसके बाद जैसे डॉक्टर ने इलाज बताया, भले प्लास्टर बताया है तो प्लास्टर की पूरी केयर रखें, प्लास्टर के अंदर गीला ना करें, पानी ना जाए, एक्सरसाइज जो बताई है वो बराबर करें, डॉक्टर की बताई हुई दवाइयाँ, कैल्शियम विटामिन डी बराबर लीजिए। अगर डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन बताया आपके तो ऑपरेशन के एडवाइसेज अलग हैं, इस किस फ्रैक्चर में वेट देना नहीं है, किसी में एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, तो हीलिंग अच्छी आनी आनी है।
1: एक मैसेज है हमारे पास, एक कॉल है हमारे पास। हेलो हेलो हेलो, शायद कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा, इतने हम मैसेज ले लेते हैं। ये पूछते हैं कि फ्रैक्चर हीलिंग में मेडिकली हमें कितना समय लगता है?
2: फ्रैक्चर हीलिंग मेडिकली तो फ्रैक्चर हीलिंग टेक्स 1 ईयर टू हील, ठीक है ना। एक कोई भी हड्डी टूट जाए 1 साल उसे जोड़ने में, माइक्रोस्कोपिकली उसे 1 साल लगता है जोड़ने में। वो अलग बात है कि हीलिंग के हमें जो साइंस हैं वो एक्सरेज में 1-2 महीने में, 3 महीने में अच्छे दिख जाते हैं, वो तब हम पेशेंट को बोल देते हैं कि नाउ यू कैन स्टार्ट बियरिंग वेट या मूवमेंट अपनी अच्छी करना शुरू कर सकते हैं वो। पर किसी में अगर ऑपरेशन किया है, प्लेट रॉड स्क्रू डालना पड़ी है डॉक्टर्स को ऑपरेशन करके, तो वो निकाली तभी जाएं जब वो फ्रैक्चर हील हो जाए अच्छा, जो कि 1 साल के बाद होता है।
1: एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
3: जी ओम शांति।
1: ओम शांति जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे
3: गौतम
1: हैं?
3: मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
3: हाँ, मेरा कहना कि ऐसा माना गया है कि घुटने में कोई चोट लग जाए, कोई ऑपरेशन करना पड़े, तो वो 100% ठीक नहीं होता। अगर वो डॉक्टर को भी चोट लग जाए तो पूरी तरह ठीक नहीं होता, तो इस बारे में आपसे कहना चाहते हैं, कृपया विस्तार से बताएं।
2: हाँ देखिए, ऐसा है कि घुटने की चोटें, मैं वैसे तो बहुत प्रकार के हैं, मैं 2 प्रकार आप मान के चलिए। एक तो जिसमें फ्रैक्चर नहीं हुआ है, सिर्फ मेनिस्कस सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है या मेनिस्कस गए हैं जो रस्सी बोलते हैं, ठीक है ना, ACL PCL मेनिस्कस जो खेल कूद में ज़्यादा टूटते हैं, ठीक है ना, फुटबॉल या कोई भी गेम्स खेलें तो मेनिस्कल इंजरी हो गई, क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी हो गई, तो ये ज़्यादातर आपस अपने आप जुड़ते नहीं क्योंकि इनमें खून का प्रवाह नहीं होता, जिसमें खून का प्रवाह नहीं वो चीज़ नेचुरली हील होगी नहीं। ऑपरेशन करके हम भी वो उसे जोड़ेंगे नहीं, हम उसे रिप्लेस करेंगे, कोई मेनिस्कस है या क्रूशिएट टूटा है तो वो टेंडन से लिगामेंट से रिप्लेस किया जाएगा, तो और रिप्लेस करने के बाद फिजियोथेरेपी करके पूरा आप नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल अपनी एफिशिएंसी पे, वर्क पे आ सकते हैं कुछ महीनों में, ऐसा नहीं कहेंगे कि पूरी आती नहीं। अब दूसरी इंजुरी हुई फ्रैक्चर्स, फ्रैक्चर्स में भी ऑपरेशन करके आप अच्छी हीलिंग 1-2 महीने में अच्छी आप कर सकते हैं, ये कहना गलत है कि पूरी ठीक नहीं होता है।
1: तो डॉक्टर साहब, अलग अलग फ्रैक्चर्स को कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है कि अगर कोई घर में है, काम कर रहा है, फिसल गया, कोई रास्ते में जा रहा है, उसके एक्सीडेंट हो गया, तो कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है?
0: डिफरेंशिएट का मतलब, जैसे इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि लो एनर्जी ट्रॉमा एंड द हाई एनर्जी ट्रॉमा। लो एनर्जी ट्रॉमा बेसिकली वहाँ होता है जब हमारी बोन्स वीक होती हैं, और आमतौर पे जैसे इस आम जब बोन्स वीक होती हैं, कलाई का फ्रैक्चर, स्पाइन का फ्रैक्चर और हिप का फ्रैक्चर, दीज आर कॉमन फ्रैक्चर्स विच अकर स्पेशली इन द फीमेल्स, बिकॉज ऑफ द इन द मीनोपॉज, बिकॉज द हार्मोन डेफिशिएंसी, फीमेल्स आर मोर प्रोन टू डेवलप ऑस्टियोपोरोसिस, उसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जब रोड पे जाते हैं तो जैसे हाई एनर्जी ट्रॉमा, वह फ्रैक्चर कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है।
1: तो हड्डियों को

0: मजबूत रखने के लिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए?
1: हड्डियों को मजबूत रखने के लिए जैसे पहले बताया, हड्डियां जो हैं हमारी कैल्शियम से बनी हैं और प्रोटीन से बनी हैं। तो कैल्शियम के लिए हमें दूध और दूध की बनी चीज़ें विदाउट फैट के, अगर हमें पनीर दाल से नॉट सो गुड, डबल टोन दूध पीना चाहिए, उसी के बना पनीर लेना चाहिए, उसी के बने दूध और छाछ, पनीर दही और छाछ लेनी चाहिए। बाकी रही बात प्रोटीन की, वेज लोगों के लिए जैसे है सोयाबीन है, प्रोटीन दालें हैं, स्प्राउट्स हैं, ये सब लेने चाहिए। और नॉन वेज लोगों के लिए एग है, मीट लेनी चाहिए। और रेगुलर एक्सरसाइजेज, सन एक्सपोजर ये जरूर कर लेना चाहिए। और हमें बाकी जो को मॉर्बिड कंडीशन लाइक द डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हाइपोथायरायडिज्म है, हाइपरथायरायडिज्म है, और अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ये सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर एड ऑन करते हैं। इन चीज़ों से हमारी हड्डियाँ और कमज़ोर हो जाती हैं और आगे हमारी टेंडेंसी रहती है लो एनर्जी ट्रॉमा के साथ भी फ्रैक्चर्स होने की। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, ओल्ड एज, वहाँ फिसल गए, घर के अंदर पोचा लगाया वहाँ फिसल गए, जब वेरी मोड कॉमन मोड ऑफ इंजरीज हैं। ओल्ड एज पीपल सुबह उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम के अंदर गिर जाते हैं, दे डेवलप फ्रैक्चर्स।
0: तो आप बच्चों को और बुजुर्गों के लिए क्या मैसेज देंगे कि जिससे वो अपनी हड्डियों को की सुरक्षा कर सके, और बच्चे जिनसे उनकी ग्रोथ अच्छी हो, और बुजुर्ग जो फिट रहें?
2: देखो, बोन हेल्थ के लिए तो सबसे खान पान का ही खास ध्यान रखें, एक्सरसाइजेस करें, सनलाइट एक्सपोजर रहें, तो इससे बोन्स आपकी अच्छी रहेंगी। जो बोन्स के लिए ठीक नहीं है, फ्रैक्चर हीलिंग के लिए भी जो ठीक नहीं है मैं बताना चाहूँगा। एक तो हो गया पेन किलर्स, दर्द की दवाइयाँ जो हैं दे डिले दी बोन हीलिंग। तो दर्द की दवाइयाँ जितनी कम हो सकें लेना ना लें, जहाँ लेना ही पड़े वहाँ अल्ट्रासाउंड जैसी दवाइयाँ लें। और इन चीज़ों का खास ध्यान रखें तो बोन हेल्थ आपकी सही रहेगी। और टोबैको का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, टोबैको ऑल्सो डिलेज द हीलिंग।
0: तो डॉक्टर विनय, जैसे कि हमारा जाने का समय हो गया है, तो जाते जाते आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या मैसेज देंगे?
1: श्रोताओं के लिए मैं मैसेज यही है कि जैसे पहले ऑलरेडी बता दिया गया है हाउ टू मेंटेन ए गुड हेल्थ ऑफ द बोन्स, वो तो आपको बता ही दिया है। मेडिकली एडवाइस आपको ये देना चाहूँगा, जब भी कोई भी डॉक्टर आपको एडवाइस करता है फ्रैक्चर्स के अंदर ऑपरेशन करवाने की, उसको फॉलो करें। ये अब हम ना मान के चलें कि एवरी फ्रैक्चर रिक्वायर्स प्लास्टर ओनली, कि उसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। कई सारे फ्रैक्चर्स में जैसे पहले बता दिया गया है, फ्रैक्चर्स ऑपरेशन किए बिना ठीक नहीं होते। या दूसरी बात ये है कि जब कुछ लोग सलाह ना मानते हुए किसी पहलवान के पास या मसाज क्वैक के पास चले जाते हैं, वहाँ मसाज करवाते हैं, स्पेशली एट द एल्बो जो कि मायोसाइट ऑसिफिकेंस कर देते हैं और नुकसान कर देते हैं। जहाँ प्लास्टर करने के बाद कुछ देर बाद आते हैं, 6 महीने बाद, साल बाद आए तो हड्डी टेढ़ी जुड़ चुकी होती है, तो जो कि आगे चल के टेढ़ी हड्डी जुड़ने के कारण बॉडी की सारी बायो मैकेनिक्स को ख़राब करती है। वहाँ पे फिर हड्डी को काट कर सीधा करना, प्लेट लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
0: और डॉक्टर अजय, आप क्या मैसेज देंगे हमारे श्रोताओं को?
2: मेरा यही कहना है, अच्छे से अपना एक्सरसाइजेज और खान पान का ध्यान रखें, डॉक्टर्स की एडवाइस पूरी फॉलो करें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं।
0: तो श्रोताओं, उम्मीद है कि आज की चर्चा से फ्रैक्चर से जुड़े आपके कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ध्यान रखिए, हड्डियां हमारे शरीर का आधार हैं, सावधानी दुर्घटना से बचाती है, और समय पर उपचार जल्द स्वस्थ होने का रास्ता दिखाता है। किसी भी चोट को हल्के में ना लें, और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत विशेषज्ञ चिकित्सक से सलाह लें। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे डॉक्टर अजय शर्मा ऑर्थोपेडिक सर्जन, और डॉक्टर विनय सिंगला ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर साहब, आप दोनों का कार्यक्रम में आए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthair@gmail.com। इसी के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ अनुमति। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ आपके अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में दो दिवसीय ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक शुरू हुई। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर छापेमारी। सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारत की मानवीय सहायता को स्वीकार करने के लिए वेनेजुएला का धन्यवाद किया है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए हैं। ईरान ने हॉर्मुजगान प्रांत और महाशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। इसके चलते वैश्विक तेल की कीमतों में 3% से अधिक की उछाल आई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। और केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राज्य में 6 जिलों में वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के लिए तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। और स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराकर फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अगला मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।
2: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।
3: जी हाँ, हम फिर हाजिर हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम दिशा। मैं हूँ एसआर यानी संतोष राव।
4: क्या बात है, क्या चीज है, पैसा क्या बात है, क्या

दोस्तों, इस गीत में गीतकार ने फिल्म की सिचुएशन के अनुसार इस तरह के बोल लिखे हैं कि लड़कियां या महिलाएं पैसों के पीछे ही भागती हैं। दोस्तों, अगर आप इतिहास को देखें तो कई घरों में पीढ़ियों से यही चलता रहा है कि पैसों का हिसाब पुरुष रखा करेंगे, मतलब पुरुष की जिम्मेदारी है पैसों का हिसाब किताब रखना। दोस्तों, कुछ पुरुषों को लगता है कि अगर पैसा हाथ से चला गया तो उनका कंट्रोल भी चला जाएगा और इसी डर की वजह से वो फीमेल पार्टनर पर भरोसा नहीं कर पाते।

करते हैं। जबकि सच्चाई यही है कि भारत में करोड़ों महिलाएं बड़ी बड़ी जगहों पर काम कर रही हैं, अपना खुद का बिजनेस भी संभाल रही हैं। फिर भी पुरुष इस बात को भूल जाते हैं कि पुरुषों की अपेक्षाएं महिलाएं सेविंग्स और लंबी योजनाओं में अक्सर कटिबद्ध रहती हैं। दोस्तों, आज के दिशा प्रोग्राम में हम बात करेंगे लेखिका और काउंसलर विनीता शॉ से कि क्यों आज भी पुरुष पैसे के मामले में महिलाओं पर ज्यादा यकीन नहीं कर पाता है और पुरुष को ऐसा क्यों लगता है कि पुरुष महिलाओं के मुकाबले ज्यादा अच्छे से पैसों का लेन देन कर सकते हैं। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ इस प्रायोजित कार्यक्रम दिशा में।

0: जी हाँ, पैसा पैसा पैसा। और ये पैसा न सिर्फ रिश्तों में कड़वाहट घोल देता है, बल्कि खून के रिश्ते भी इसके आगे पड़ जाते हैं कमजोर। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं लेखिका और काउंसलर विनीता शॉ से कि क्यों आज भी पुरुष पैसों के मामले में महिलाओं से ज्यादा अपने आप को सुपीरियर समझता है। विनीता जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू संतोष।
0: विनीता जी, पैसा पैसा पैसा क्या कहेंगे?
1: संतोष, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने, क्योंकि अभी कुछ समय पहले हमारे एक स्टाफ ने, जो कि काफी समय से हमारे साथ काम कर रही है, उसने हमको ये रिक्वेस्ट करी कि जो उसकी तनख्वाह उसके पति के अकाउंट में आती थी, वो आप पति के अकाउंट में ना भेजें, क्योंकि उसने अपना अलग अकाउंट खोला है, अलग बैंक में खाता खोला है, और वो चाहती है कि उसके पति के अकाउंट में ना जाते हुए उसके अकाउंट में पैसा भेजा जाए, क्योंकि उसके पति उसको उसकी तनख्वाह नहीं निकाल के दे रहे हैं। तो ये सुनकर मुझे कुछ कुछ यादें ताज़ा हो गईं, और मैं सोच में पड़ गई कि ये कोई नई बात नहीं है। हमारे समाज में, हमारे देश में महिलाएं काम तो करने लग गई हैं, वो घर से बाहर तो निकलने लग गई हैं, सब कुछ सीखती हैं, ट्रेनिंग भी करती हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि उनके पति उनका पैसा, उनकी सैलरी अपने पास रखते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस मैं जानती हूँ, और पत्नियां जो हैं काफ़ी परेशान रहती हैं इस बात से लेकर, उनको लगता है कि हमारे पति हमारे पैसे को कंट्रोल कर रहे हैं, और उसमें उनकी कोई इच्छा नहीं है, कोई उनकी राय नहीं ली जाती है, जो भी करते हैं पति करते हैं।
0: विनीता जी, इस तरह की पुरुषों की सोच क्या सिर्फ हमारे यहाँ देखने को मिलती है, या पूरे विश्व के पुरुषों की इसी तरह की सोच होती है?
1: नहीं, ये मैंने यहाँ देखा है। एक मेरी सहकर्मी थी, जहाँ पर उसके पति उसको बस के आने जाने के पैसे देते थे, और अगर कभी जरूरत पड़े तो पानी पी लेने के लिए, उसके अलावा नहीं देते थे। बाकी सारा घर का खर्चा वो चलाते थे, यहाँ तक कि वो क्या कपड़ा लत्ता पहनती थी, जो भी था, सारी चीज़ें तो उसको मुहैया होती थी, लेकिन वो करते थे। मतलब जो हमारी सहकर्मी थी, वो खुद अपनी चॉइस नहीं, चुनाव नहीं था उसका, सारा पैसा वो कंट्रोल करते थे, और अच्छे से करते भी थे, लेकिन यही था कि पत्नी की इसमें कोई राय नहीं थी। और संतोष, जैसे आपने कहा ये केवल यहाँ होता है, नहीं, ये और जगहों पर भी होता है। एक बार मैं विदेश में थी, और वहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ थी, तो वो हस्बैंड अपनी वाइफ को एक कुछ खरीदना मांग रही थी, तो उसके हस्बैंड ने उसको मना कर दिया
0: जी।
1: तो वो थोड़ी उदास हो गई, तो मैं उससे ऐसे

0: बात कर रही थी, मैंने कहा तुम कुछ खरीद लो, तो कह रही नहीं सारा पैसा उनके हाथ में रहता है। तो वो हाउसवाइफ थी, घरेलू महिला थी। तो मैंने उसको बोला आप तो, तुम्हारे बच्चे स्कूल भी जाने लग गए हैं, तुम्हारे पास इतना टाइम खाली होता है, तुम अपना कुछ छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर लो।
1: जी
0: और वो खाना बहुत अच्छा बनाती थी, तो मैंने उसको ये राय दी। तो कहने लगी हाँ, मैं एक दो बार बच्चों की स्कूल मीटिंग के लिए गई थी, तो वहाँ पर ये लेके गई थी जो वो स्पेशल कुछ बनाती थी, तो वहाँ बहुत लोगों को पसंद आया और दो बार टीचर ने ऑर्डर भी दिया उसको।
1: ओके
0: तो वो मेरी बात से उसको पसंद आ गई, तो उसने वो अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया। तो जब मैं कुछ समय बाद उसको मिली, तो उसने कहा कि उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल गया है, लेकिन जितना भी पैसा आता है उसके पति अपने पास रखते हैं, ये बोल के कि ये हमारे भविष्य के लिए है। तो अभी भी उस महिला के हाथ में कुछ पैसा नहीं है।
1: अच्छा, इस तरह के निर्णय लेने के पीछे कुछ कारण भी तो हो सकते हैं।
0: ये भी हो सकता है कि उनके ऊपर कर्जा हो, तो उनको लगता है कि पत्नी शायद फिजूल खर्ची ना कर दे तो ठीक से संभालते हैं। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है कि लालच हो सकता है कि इतना कमा रही है तो मैं अगर नियंत्रण करूँगा तो मैं सारे डिसीशंस लूँगा। कई बार ये भी हो सकता है कि पत्नी को छोड़ने का कुछ इंतज़ाम हो रहा हो, तो सारा पैसा वो अपने पास ही रखना चाहते हैं और उसको बंधे रहने के लिए उसके हाथ में कुछ ना देना। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि तरह तरह के परिवार हैं, तरह तरह के कपल्स हैं, दंपत्ति हैं। तो अधिकतर जो होता है वो यही होता है कि जो कंट्रोल है वो पति अपने हाथ में रखना चाहता है।
1: ओके, तो विनीता जी, इस तरह की सोच आपको क्या सही लगती है?
0: देखिए संतोष, ऐसा है कि पति पत्नी का जो रिश्ता है ना, वो जीवन भर का है, विश्वास का है, प्रेम का है ना। और एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंट होना, मतलब कोई छुपाना नहीं बात। पैसा है, दोनों कमा रहे हैं, दोनों बैठ के प्लान करें, दोनों बैठ के डिसाइड करें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये नहीं कि आप महिला को काम पे तो जाने दे रहे हैं, महिला काम भी कर रही है, जा भी रही है, आ भी रही है, अपने दफ्तर में वो निर्णय भी ले रही है, वो सारे काम संभाल रही है, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो आपको लगता है कि वो इस काबिल नहीं है। तो ऐसा तो नहीं होता ना।
1: बिल्कुल
0: अगर वो महिला काम काजी है, अगर वो एक काम ले सकती है, अगर वो कमाने की लियाकत रखती है, तो फिर वो अपने पैसे को अच्छे से बचाने की, बजट करने की और संभालने की, इन्वेस्ट करने की ये भी क्षमता रखती है। वो ये भी सीख सकती है, जैसे बाकी चीज़ें उसने सीखी हैं, घर से बाहर निकलना, अपनी सिक्योरिटी, अपनी हिफाजत करना और काम काज पे जाना, ऑफिस के लोगों से मिलना, है ना, काम पर अपना काम पूरा करना। जब वो ये सब सीख सकती है, तो वो पैसे को भी ध्यान से रखना सीख सकती है।
1: जी
0: और मुझे तो ये लगता है कि अधिकतर जो मैं देखती हूँ, जो पति लोग होते हैं, वो पैसा अपने पास रखते तो हैं, लेकिन आप देखिए ये दुनिया में जो सर्वेस किए जाते हैं, उसका ये रिसर्च से पता लगता है कि महिला जब कमाती है तो वो सारा पैसा, अधिकांश पैसा अपने घर में, अपने बच्चों के लालन पालन में लगा देती है। और पतियों को अक्सर देखा जाता है कि या तो वो गलत चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, या वो जुए में चले गए हैं, या उन्होंने कुछ ऐसे निर्णय ले लिए हैं जिसमें उनका पैसा बिजनेस में डूब गया है।
1: लेकिन फिजूल खर्ची पर भी तो रोक लगनी जरूरी है।
0: देखिए, अगर फिजूल खर्ची करते हैं तो फिर दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही अगर जिम्मेवारी से अपने पैसे को इन्वेस्ट करें तो उनके परिवार के लिए ही अच्छा है। और एक दूसरे की गलतियों को भी आप पकड़ सकते हैं, संभाल सकते हैं कि नहीं ये नहीं करना, यू नो, कि अपने पैसे की, अपनी पूंजी की, अपने धन की रक्षा दोनों मिलके कर सकते हैं।
1: अच्छा विनीता जी, चलते चलते और कुछ कहना चाहेंगी आप?
0: जब अचानक से नौकरी चली जाती है लोगों की, अचानक से कोई दुख मुसीबत आती है, तो देखा जाता है कि घर की माँ ही होती है जो अपने चीनी के डब्बे में से पैसे निकाल के लेके आती है।
1: बिल्कुल
0: जब कोविड हुआ, लोगों की नौकरियां चली गईं, तब घर में जो पैसा बचाती है जोड़ जोड़ के, वो महिला ही होती है।
1: जी
0: तो उसको ये समझना कि उसको अकल नहीं है, या वो पैसे को ठीक से संभाल नहीं पाएगी, या वो जिम्मेवार नहीं है, ये सोच गलत है।
1: जी
0: क्योंकि अगर एक महिला नौकरी

लियाकत रखती है कि उसको नौकरी दी गई है और उसको तनख्वाह मिल रही है, तो वो ये सब इसलिए तो मिल रही है क्योंकि वो सीखी है, वो ट्रेन करी है, उसने कुछ पढ़ाई लिखाई करी है, तो फिर वो जरूर पैसे के बारे में भी सीख सकती है, समझ

0: पूछ सकती है, ना उनसे कुछ मांग सकती है, ऐसा नहीं है। जब पति पत्नी दोनों नौकरी कर रहे हैं तो दोनों को मिल के एक साथ जुट कर अपने परिवार के लिए धन, पूंजी, बजट, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सब दोनों को मिलकर ही निर्णय लेने चाहिए। ये नहीं कि एक पूरी तरीके से नियंत्रण कर रहा है और जो मन में आए कर रहा है, और गलत डिसीशंस भी हो रहे हैं और नुकसान तो फिर पूरे परिवार का होगा। तो एक से भले दो, दो जनों का दिमाग चलता है तो उसमें ज़्यादा टीम एफर्ट भी रहता है और आपके फैमिली का फ्यूचर, आपके फैमिली का भविष्य, आपका धन सुरक्षित भी रहता है।
1: जी हाँ, मिलकर और सूझबूझ के साथ लिए गए निर्णय हमेशा कामयाब होते हैं। इसीलिए महिलाओं की भी भागीदारी को प्रोत्साहित कीजिए, उनके निर्णय पर विचार कीजिए, क्योंकि महिला ही घर को बनाती है मजबूत और घर में लाती है खुशहाली। दोस्तों, अगर आप भी समझते हैं कि क्यों महिलाओं की भागीदारी घर के हर निर्णय में महत्वपूर्ण है तो आप हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे काउंसलर से आज के विषय पर बात करना चाहते हैं तो आप हमारे काउंसलर को फोन या मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 7678438471। जी हाँ, 7678438471। और हाँ, अगर आप हमारे साथ यानी दिशा फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं और जिंदगियों को सही दिशा दिखाकर उनको संवारने में हमारा साथ देना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं इसी नंबर पर, यानी 7678438471 पर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।
2: दिस प्रोग्राम वॉज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप जी। मैं हूं आपके साथ स्वाति, लेकर आई हूं आप सभी के लिए बुधवार की शाम का वो खास प्रोग्राम जो जुड़ा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जुड़ा है कैंपस से जी। नाम है इसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का, ये स्पेशल एडिशन जो हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए। ये तो रोज़ ही आप अल्फाजन सुनते हैं 4 से 5 बजे के बीच सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर, लेकिन बुधवार की शाम होती है खास, और स्पेशली जब एडमिशन्स का सीज़न चल रहा हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो ऐसे में बहुत से सवाल होते हैं, बहुत से जवाबों की खोज जो है ना वो जारी रहती है, और उसके साथ साथ बहुत सी जानकारी है जो काम की रहती है। तो ये सब कुछ पहुँचाने का काम भी हम कर रहे हैं, हर बार आपके लिए नया कॉलेज भी लेकर आते हैं, हर बार नई जानकारी भी लेकर आते हैं। और फिलहाल एडमिशन्स के सीजन में हम आपके लिए एडमिशन रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, पिछले हफ्ते भी लाए थे और आज एक बार फिर से हम आपके लिए एडमिशन CUET और ये सारी चीज़ें जो है ना ये सब कुछ एक बार फिर से समेट कर लाए हैं हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और ये काम किया है हमारी सहयोगी माला नेगी ने, जो वहाँ पहुँची और उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे जानकार लोगों से की बातचीत, किस किस से क्या क्या बात हुई, आइए आपको सुनवाते हैं।
2: नमस्कार, तो अभी मैं हूँ रामजस कॉलेज में, और कॉलेज में जब एडमिशन्स की बात होती है तो बहुत सारे सवाल उठते हैं, पेरेंट्स के मन में भी बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनके उन्हें सही जवाब सही इंसान से चाहिए होते हैं, और ऐसे कई सारे सवालों के जवाब हम अभी तक दे चुके हैं और कई और सवालों के जवाब देने बाकी हैं। कॉलेज एडमिशन की जब बात होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो स्टूडेंट्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हर तरीके से वो अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर करके सबमिट करें, ताकि किसी

0: केस में रिजेक्शन का चांस ना आए। लेकिन फिर भी अगर कहीं रिजेक्शन हो गया तो क्या किया जाए? दिल्ली यूनिवर्सिटी में CUET का रिजल्ट आ गया है। स्टेप टू अब जो है वो प्रेफरेंस लिस्ट बना के कॉलेज सिलेक्शन का है। एंड स्टेप थ्री में जब आपकी लिस्ट पहुंचेगी कॉलेज के पास तो कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। लेकिन वेरीफाई करते हुए अगर कॉलेज आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को लेकर श्योर नहीं है और इस वजह से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की बात करता है तो आपको क्या करना है? इस सवाल का जवाब लेंगे हम रामजस कॉलेज के एडमिशन सेल के कन्वीनर डॉक्टर अनुज कुशवाहा सर से। सर बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
0: जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बच्चों के करियर का सवाल है, तो अगर रिजेक्शन लग गई तब कहाँ जाएं, क्या करें?
1: जी आपने सही बोला है। एक्चुअली बच्चे पहली बार ही आते हैं इस प्रोसेस में और उनसे इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं, पर यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं करती है कि इमीडिएटली उनके केसेस को रिजेक्ट कर देती है, उनको कुछ केसेस में मौका भी देती है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे उन्हें मौके नहीं मिल पाते हैं, तो जहां पे मौका दे देती है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि कैटेगरी में जो रिजर्व कैटेगरी में जो एडमिशन्स होते हैं उस रिगार्डिंग ऑलमोस्ट हर बार जब से एडमिशन्स हो रहे हैं मैं देख रहा हूँ कि बच्चे करते ये हैं कि OBC के जो सर्टिफिकेट्स हैं या जो EWS के सर्टिफिकेट्स हैं वो अपने पुराने सर्टिफिकेट्स लगा देते हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशंस उनके पास होते ही नहीं हैं वो लेटेस्ट एप्लीकेशंस, या उन्होंने BOI जो होता है बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो उन्होंने पढ़ा नहीं होता है इन एडवांस। तो जब वो अप्लाई करते हैं एंड देन वो रियलाइज करते हैं कि हमें तो लेटेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए, दैट इज टू से वो बेसिकली OBC एंड EWS दोनों के लिए ही 31 मार्च 2026 के बाद का इशू आपका जो है वो दोनों ये कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होने चाहिए
0: जी।
1: तो अब पहले क्या होता था, यूनिवर्सिटी अंडरटेकिंग अलाउ करती थी, अभी कुछ सालों से यूनिवर्सिटी ने अंडरटेकिंग अलाउ नहीं कर रहा है, मतलब बंद कर दिया उन्होंने, वो बिल्कुल परमिशन नहीं देते हैं, कहते हैं आउटराइटली आप रिजेक्ट कर दीजिए। उस पर्टिकुलर एडमिशन साइकिल में पर्टिकुलरली उस जो राउंड है उस राउंड के एंड तक अगर वो बच्चा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा देगा तो हम उसे एडमिशन दे देते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है OBC का और उसके पास ये है कि जो उसने पुराना अपना सर्टिफिकेट लगा रखा है अपडेटेड उसके पास है लेकिन वहाँ जो उसका पोर्टल में है वो पुराना अपलोडेड है, तो कॉलेज क्या करता है एक क्वेरी रेज कर देता है कि प्लीज प्रोवाइड योर लेटेस्ट सर्टिफिकेट, और वो लेटेस्ट सर्टिफिकेट अगर वो प्रोवाइड करा देता है तो हम उसका उसके बेसिस पे एडमिशन हम दे देते हैं
0: जी।
1: गिवन कि उसके जो बाकी के रिक्वायरमेंट है उस एप्लीकेंट के वो फुलफिल्ड वो कर रहा है, बट अगर ये नहीं वो प्रोवाइड कर पा रहा है तो फिर उसका हम केस रिजेक्ट कर देते हैं। हम उसे कोई एक्सटेंशन नहीं देते हैं एप्लीकेंट को कि ठीक है कोई बात नहीं आप अभी एडमिशन ले लो अंडरटेकिंग दे दो बाद में दे देना, ऐसा हम नहीं करते हैं। ऐसा करने के लिए हम अलाउड नहीं। ठीक है, ये EWS में भी, तो EWS में क्या होता है कि वही सेम कंडीशन रहेगी वहाँ पे, आपके पास 31 मार्च 2026 के बाद का वो इशूइंग डेट होना चाहिए। जो इशूइंग अथॉरिटीज हैं वो हमारी जो कॉमन सीट अलॉटमेंट एलोकेशन सिस्टम का जो PDF है बुकलेट है उसमें वो अवेलेबल है। जो इशूइंग अथॉरिटीज हैं वहां से आप उनको प्लीज चेक कर लीजिए। उसके बाहर का कोई भी इशूइंग अथॉरिटी अलाउड नहीं होगा, उसके बाहर का अगर कोई होगा तो योर एप्लीकेशन इज लाइबल टू बी रिजेक्टेड इन दैट केस। सो जो EWS है, EWS के कैंडिडेट्स को एक चीज ध्यान रखना होगा कि उनका जो फाइनेंशियल ईयर है उनके सर्टिफिकेट में वो 2025-26 का होना जरूरी है। ये परफॉर्मा भी CSS के डॉक PDF में अवेलेबल है, वहां से बच्चे उसको देख सकते हैं। CSS दैट इज टू से CSAS एंड बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन ये दोनों डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट्स को एप्लीकेंट्स को पढ़ने ही चाहिए। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्पेशली एडमिशन ब्रांच ने इस पर बहुत काम करा है ओवर द ईयर, ये इवॉल्व हुआ है और हर एक चीज पे रिजेक्शन केसेस को लेके हर एक चीज पे वो बहुत ज्यादा मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो अगर बच्चे उसी को ढंग से पढ़ लेते हैं तो उन्हें कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: अब जैसे आपने कहा कि किन चीजों पर ऑब्जेक्शंस लग सकते हैं कॉलेज में, ऑब्जेक्शन लग गया, रिजेक्शन हो गई, अब स्टूडेंट्स कहाँ जाएं?
1: इससे पहले एक और केस है, जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारे पास दो केसेस हैं, एक तो जो कि जहाँ पे हम उन्हें मौका दे रहे हैं, दूसरा है जहाँ पे शायद उन्हें मौका नहीं मिलेगा। तो वो है इनका सब्जेक्ट मैपिंग का। और ये क्योंकि अब अभी तक तो फेज 1 चल रहा है।

0: सीसेस में जहाँ पे उन्हें रजिस्ट्रेशन करना है। फेज़ टू में वो लोग अपना फॉर्म जो प्रेफरेंसेस हैं वो फिल करेंगे। तो जो अगर आप बोर्ड के जो पेपर्स हैं आपके सब्जेक्ट्स उन्हीं में ही आपने सीयूटी का एग्जाम भी देना होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने कोई ऐसा पेपर दे दिया है जो आपने ट्वेल्थ में नहीं पढ़ा था, ठीक है, तो और आप उसी के बेसिस पे चाह रहे हैं कि आपका एडमिशन हो, ठीक है, कि जो आपकी प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है उसमें आप वो चाह रहे हैं कि वो पेपर आप काउंट करें, तो वो आप काउंट नहीं कर सकते। अगर आपने वो पेपर काउंट कर लिया उसमें, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो सब्जेक्ट मिसमैच के उसमें आ जाएगा, वो वहाँ पे डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी सब्जेक्ट मैपिंग में, एंड देयरफॉर आपका जो केस है वो इमिडिएटली रिजेक्ट हो जाएगा।
1: ओके,
0: ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि आप इस केस में जो यूनिवर्सिटी है या जो कॉलेज है वो दोबारा से मौका नहीं देता है कि आप अपना डॉक्यूमेंट सही कर लीजिए या ठीक है। लेकिन इसमें एक राइडर है, राइडर ये है कि अगर आपने कोई सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट है जो आपने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा है और वो आपको लिस्ट बी में नहीं मिल रहा है, तो अलाइड सब्जेक्ट्स में अगर वो है तो भी जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है, वो उसको एक्सेप्ट कर सकती है। इस रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी एक लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंस भी जनरेट करती है हर साल, आई एम श्योर वो इस साल भी करेगी। वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है और उसमें वो दोनों तरफ दिखाती है कि कौन से कोर्सेज हैं और वो किस सब्जेक्ट के अलाइड सब्जेक्ट कहलाए जा सकते हैं।
1: okay.
0: तो वो रहता है, वहां से भी आप अपना मैच कर सकते हैं, इंक्लूडिंग तो उस डॉक्यूमेंट में सब्जेक्ट, उसका करस्पॉन्डिंग अलाइड सब्जेक्ट और वो किस बोर्ड का है, एजुकेशनल बोर्ड का है, सीबीएसई का है, आईसीएसई का है, वो सारे बोर्ड्स भी वहाँ पे वो मेंशनड होते हैं, तो कैंडिडेट वहाँ से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा केस आता है जहाँ पे कॉलेज रिजेक्ट कर देता है, तो और बच्चा ग्रीवेंस रेज करना चाह रहा है कि नहीं मेरा उस लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंस में वो सब्जेक्ट फॉल कर रहा है जहाँ पे उसे अलाइड सब्जेक्ट माना जा सकता है, तो वहाँ से वो बच्चा लाके वो कोर्ट कर सकता है, उसके बेसिस पे उसका एडमिशन रिस्टोर कर देंगे।
1: ओके, थैंक यू सो मच सर इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए और स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करने के लिए। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू।
2: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जेन और अल्फा जेन का ये वेंसडे स्पेशल होता है बहुत ही खास क्योंकि इसका नाम है कैंपस कॉलिंग। जी, अल्फा जेन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का ये स्पेशल एडिशन हम आपके लिए लेकर आते हैं हर बुधवार शाम को 4-5 बजे के बीच। और जहां भी कन्फ्यूजन है वहां गाइडेंस है और जहां भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वहां पर सपोर्ट है, यही है दिल्ली यूनिवर्सिटी। सही इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए और सही सोर्स से मिलनी चाहिए। ये सभी चीज़ें एक साथ आती हैं जब, तो बड़ी से बड़ी पेचीदगी जो है ना वो भी सुलझ जाती है, सिंपल हो जाती है। और जहां भी आप पेचीदगी से दो चार होते हैं यानी कि इन कम्प्लेक्सिटीज से जो है ना जहां आपका सामना होता है, वहां पे हमारे प्रोग्राम्स है ना आपकी मदद करने के लिए। और हमारा ये प्रोग्राम अल्फा जेन कर रहा है यही काम आप सभी के लिए। सीयूईटी और एडमिशन्स के इस दौर में अगर कोई भी जानकारी है जो सही है और आप तक पहुंचनी चाहिए, तो वो हम आपको पहुंचा रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। और इसे आप सुन रहे हैं ओनली ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक
1: आकाशवाणी रेनबो।
2: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
3: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
2: क्या ये जांच उपलब्ध है?
4: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
5: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
4: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
5: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
6: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
7: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
8: देश

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
3: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, एंड ऑब्वियसली हम म्यूजिकली योर्स तो हैं ही, इन्फॉर्मेटिवली योर्स भी हैं। और ये हमारा खास प्रोग्राम जो कि हमारे यंगस्टर्स पर बेस्ड है, इसका नाम है अल्फा जेन। 4 से 5 बजे आप सुनते हैं, हर रोज़ हम आपके लिए कुछ नया लेकर आते हैं, लेकिन बुधवार के दिन खास तौर पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कैंपस कॉलिंग, अल्फा जेन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन। और इसमें हम बात करते हैं कैंपस की, कॉलेजेस की, और उन सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जहाँ के हमारे स्टूडेंट्स सपने देखते हैं और वहाँ पर आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वहां अकेडमिक्स के साथ साथ सोसाइटीज को भी बिलोंग करना चाहते हैं, अपना होलसम डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं ना, उन सभी के लिए उन्हें जो कुछ भी चाहिए वो उन्हें नजर आता है तो हमारे इस कैंपस में नजर आता है। और एक खास जगह ऐसी है जो एक बार आपको मिल जाती है ना, जिंदगी भर आपके साथ रहती है, क्योंकि ये कभी भी छूटता नहीं है। कॉलेज के वो दिन होते हैं वही सुनहरे चमकीले दिन जो हम हमेशा याद रखते हैं, और इन दिनों को पाने के लिए यहाँ पे एडमिशन लेना पड़ता है। और एडमिशन का ये जो दौर चल रहा है ना, ये ना केवल यूनिवर्सिटी में चल रहा है बल्कि हमारे इस खास प्रोग्राम में भी चल रहा है। अल्फा जेन कैंपस कॉलिंग वेंसडे के स्पेशल एडिशन में पिछले हफ्ते भी हमने आपको, यानी कि पिछले बुधवार भी हमने आप तक पहुँचाई एडमिशन से जुड़ी बहुत सी जानकारी, और आज भी हमारी सहयोगी माला नेगी पहुँची हमारे यूनिवर्सिटी के कैंपस में और वहाँ से उन्होंने और बहुत सारी जानकारी आप सभी के लिए इकट्ठा की है। आइए जानते हैं अगली बातचीत उन्होंने किससे की।
4: जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि स्टूडेंट्स का क्रेज जब से CUET आया है, पूरे भारत से स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उनको पहले से जानकारी काफ़ी सारी चीज़ों की नहीं है तो कई बार जानकारियों के अभाव में वो कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनका सपना कई बार चकनाचूर भी हो जाता है। और आज हमारे साथ हैं किरोड़ीमल कॉलेज से डॉक्टर श्याम। डॉक्टर श्याम किरोड़ीमल कॉलेज की एडमिशन कमेटी के मेंबर हैं और आज कुछ ऐसे स्पेसिफिक सवालों के जवाब देने वाले हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम।
5: नमस्कार, थैंक यू।
4: नमस्कार सर। सर जानना चाहेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम रिजर्व्ड कैटेगरी के एडमिशंस की बात करते हैं। जानना चाहेंगे आपसे कि वो कौन सी गलतियां हैं जो कई बार स्टूडेंट्स कर बैठते हैं क्योंकि उन्होंने सर्टिफिकेट्स प्रॉपर नहीं लगाए हैं, या जो सर्टिफिकेट्स लगाए हैं वो सर्टिफिकेट्स की वैलिडिटी वो नहीं है जो चाहिए, जो रिक्वायर्ड है। तो कुछ एग्जांपल्स से अगर आप इस तरफ थोड़ा रोशनी डालेंगे तो स्टूडेंट्स को काफ़ी फायदा होगा।
5: जी मैम, तो सबसे पहले तो ये है कि आप वैलिडिटी देखिए कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट का इशू होने की डेट कब की है। तो जनरली जो OBC सर्टिफिकेट है उसका जो इशू होने की डेट होती है वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से है। तो फॉर अगर हमें इस साल के एडमिशन्स की बात करनी है तो उसमें हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, इंक्लूडिंग 1 अप्रैल 2026। अब इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न ये होता है कि कुछ जो कास्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में है, कुछ कास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में है। तो बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है या ये रहता है कि हम अपने पर्टिकुलर स्टेट में OBC में है तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में भी OBC में होंगे। लेटेस्ट से फॉर OBC की अगर हम बात करें तो एक दो एग्जाम्पल हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल ये है कि राजस्थान में धौलपुर और भरतपुर जो जगह हैं वहाँ पे के जो जाट्स लोग हैं वो सेंट्रल के लिस्ट में अनरिजर्व कैटेगरी में है और रेस्ट ऑफ द राजस्थान के जो जाट हैं वो OBC में है। तो होता क्या है कि इस कन्फ्यूज़न में कि सारे जाट OBC में हैं तो वो बच्चे अप्लाई कर देते हैं, बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन या वेरिफिकेशन के टाइम पे ये प्रॉब्लम आती है तो हम लोग उसको देखते हैं। तो उससे उनका क्या होता है कि वो लोग क्या होते हैं कि वो अनअवेयर होते हैं चीज़ों से, तो उसकी वजह से वो गलतियाँ होती हैं। और दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जैसे दिल्ली है तो दिल्ली और UP में जो जाट की कास्ट है वो OBC में है, वो स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में OBC में है बट सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में नहीं है। बट बच्चे अनभिज्ञ रहते हैं, उनको नहीं पता रहता है तो वो एज्यूम करते हैं कि हम उसी में हैं। तो फॉर्म भरने के प्रोसेस में भी या बाद के एडमिशन के लेवल पे भी वो वहाँ तक उनकी गलतियाँ आगे तक प्रोपगेट हो जाती हैं। तो उस चीज़ का बहुत ध्यान

0: रखें और जब आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, तो पहले से ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के बना के रखें कि हमें जो है इन चीज़ों का बहुत ध्यान देना है कि इस चीज़ के लिए कि लास्ट में एडमिशन के टाइम पे 11th आवर में हमारे पास कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए जिसकी वजह से हमारा एडमिशन रह जाए और हम अपना सब कुछ होने के बावजूद भी हम DU में एडमिशन लेने से या पर्टिकुलर कैटेगरी का बेनिफिट लेने से रह जाए।
1: जी, अब गलती अगर हो गई तो हो गई, अब उस गलती का सुधार कैसे होगा और उस गलती के सुधार के लिए समय कितना मिलेगा? अगर बाय चांस गलत हो गया है, सर्टिफिकेट जो चाहिए था वो नहीं आपने लगाया है, और अब सर्टिफिकेट अगर नहीं है आपके पास तो आपको बनाने के लिए भी समय चाहिए, तो ऐसे में कितना समय बच्चों को मिलता है?
0: बेसिकली हम लोगों का जो एडमिशन प्रोसेस है, जैसे हमारे यहाँ कॉलेज में पहले हम डिपार्टमेंट लेवल पे वेरिफिकेशन करते हैं, पूरा एडमिशन कमेटी जो है वो पूरे स्टैंडिंग कमेटी में, तो डिपार्टमेंट लेवल पे वेरिफिकेशन होता है, फिर स्टैंडिंग कमेटी के कन्वेनर के लेवल पे वेरिफिकेशन होता है, तो 3-4 दिन का टाइम रहता है, तो उसी में हम पहले कोशिश करते हैं कि बच्चे को क्वेरी रेज करके बता दें कि आप अगर कर सकते हो तो इतने टाइम में कर दो, और इनकेस नहीं होता है, लेट अस से कि किसी ने स्टेट OBC का सर्टिफिकेट लगा दिया जो स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किया है, बट उसका फॉर्मेट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वैलिड नहीं है, तो उसको करने के लिए कम टाइम की ज़रूरत होती है, तो अगर वो कर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम प्रोविजनली एडमिशन दे देते हैं और उनको जो फिजिकल वेरिफिकेशन का टाइमिंग होता है कि जैसे मान लीजिए फिजिकल वेरिफिकेशन 31 अक्टूबर तक पर्टिकुलर सेशन का, जैसे 2026 में है तो 31 अक्टूबर तक का एक टाइम दे देते हैं, तो एम्पल टाइम होता है कि उस टाइम में वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट इशू करा सकते हैं, तो पर्पस ये होता है कि मतलब किसी का कोई लॉस ना हो, एक उनको एक एम्पल टाइम मिले सो दैट कि वो करा लें, तो प्रोविजनली एडमिशन दे देते हैं टिल फिजिकल वेरिफिकेशन।
1: और अगर प्रोविजनल एडमिशन के बाद जितना हमें टाइम मिला है उतने समय में अगर स्टूडेंट ने नहीं किया तो प्रोविजनल एडमिशन कैंसिल?
0: हाँ,
1: कैंसिल। और उसके बाद कोई उसका कोई उपचार नहीं है, उसके लिए कोई रेजोल्यूशन नहीं?
0: नहीं, नहीं, कोई।
1: तो जैसा कि आपने जाना, आपको प्रॉपर समय दिया गया है अपने डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने का, लेकिन अगर आप सीरियस नहीं है या आपको किसी वजह से लगता है कि हो जाएगा, कर लेंगे, समय और बढ़ जाएगा, एक्सटेंशन मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रॉपर एक टाइम सीमा के तहत बंधे हुए हैं और उसी के अंदर काम होता है, तो इसलिए आप अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट्स में आप कहीं कुछ कमी कर रहे हैं तो जब तक आपके पास समय है उस कमी को पूरा कर लीजिए और अपने इस एडमिशन के रजिस्ट्रेशन को सुनिश्चित कीजिए। थैंक यू सो मच सर।
0: थैंक यू। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे अभी टाइम है तो आप पहले से ही इंफॉर्मेशन ब्रोशर पढ़िए, उसको देखिए और पहले से ही अपनी चीज़ें करके रखिए, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे वो सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, चाहे ऑर्फनेज ऑर्फन कैटेगरी का हो, कुछ भी हो, उसको आप प्रॉपरली पढ़िए, क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसको डिटेल में पढ़ के जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करिए, अपना सर्टिफिकेट बनवाइए, सो दैट कि आपको एडमिशन के टाइम पे कोई परेशानी जो है फेस ना करनी पड़े।
1: जी, तो परेशानियों से बचिए, एडमिशन सुनिश्चित कीजिए, डॉक्यूमेंट्स पूरे कीजिए और देरी होने से बचिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच।
2: जानकारी ना केवल सबसे धारदार हथियार है, बल्कि जानकारी जो है ना वो सबसे बड़ा बचाव भी है, और जानकारी के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और पढ़ने ही तो जा रहे हैं ना हम, यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, कैंपस को बिलोंग करना चाहते हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, लेकिन अगर उसकी शुरुआत आप पहले से ही इन्फॉर्मेशन को सही तरह से पढ़ने से और उसको सही तरह से अप्लाई करने से करते हैं तो आपका ये सफ़र है ना काफ़ी जो है ना सुखद हो जाता है, काफ़ी सुकून भरा हो जाता है। और ऑब्वियसली वो कहते हैं ना, वेल बिगन इज़ हाफ डन, तो फिर अगर आपको अपनी बिगनिंग अच्छी चाहिए तो ये सारी बातें आपके बहुत ही काम की है जो हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जन कैंपस कॉलिंग। मैं हूं स्वाति आप सभी के साथ, और हमारे साथ हमारी सहयोगी माला नेगी और उनके साथ बहुत सारी काम की जानकारी, वो सब कुछ आप तक पहुंच रहा है हमारे इस कार्यक्रम के जरिए। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक आकाशवाणी रेनबो।
1: वन जीरो टू पॉइंट सिक्स आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। अल्फाजन का ये कैंपस कॉलिंग एडिशन जो हर बुधवार आता है शाम को 4 से 5 बजे के बीच सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर, ये आपके लिए हर बार समेट कर लाता है एक नया कॉलेज, हर बार लेकर आता है आपके लिए एक नया पर्सपेक्टिव और उसके साथ साथ हर बार लेकर आता है आपके लिए एक नई जानकारी। और जानकारी से भरपूर है हमारा आज का ये प्रोग्राम। और हम सभी जानते हैं कि जब स्कूल की दहलीज को पार करके आप कॉलेज में जो है कदम रखना चाहते हैं तो उसके बीच का ये जो फासला है ना, ये तो काटे ही नहीं कटता है, ये इंतजार तो खत्म ही नहीं होता है ना। कॉलेज के पहले दिन का कितना इंतजार रहता है, लेकिन उस कॉलेज के पहले दिन को सुकून भरा बनाने के लिए, उसको पॉसिबल करने के लिए आपको जिस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है उसे कहते हैं एडमिशंस। एंड ऑब्वियसली एडमिशंस को अगर आप जो है सही तरीके से लेना चाहते हैं तो उसके लिए जानकारी ही आपके लिए सबसे जरूरी चीज है। वही हम आप तक पहुंचाते हैं अपने अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए और उन्हीं में से है हमारा आज का ये प्रोग्राम भी। नाम है इसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का स्पेशल एडिशन। हमारी सहयोगी माला नेगी बहुत ही काम की बातें लेकर आई हैं आपके लिए इस बार भी पिछली बार की तरह ही। आइए जानते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए।
2: जब बात होती है यूजुअल कोर्सेज से डिफरेंट और इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोर्सेज के बारे में, जब बात होती है जमाने के साथ कंधे से कंधा मिलाने की, जब बात होती है कुछ ऐसा करने की जो बाकियों से अलग है और उसको एजुकेशन के साथ कनेक्ट किया जाता है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जिस कॉलेज का नाम सबसे ऊपर आता है वो है कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़। और कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को नहीं पता है। इसलिए अभी इस समय मैं हूँ कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में और हमारे साथ हैं कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर शिव कुमार सहदेव सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्कार। नमस्कार।
2: हमेशा सर हमें लगता है कि हम जिस पोजिशन पर होते हैं हमें लगता है कि हम उससे और बेहतर हो सकते हैं, बहुत गुंजाइश है और आगे बढ़ने की। तो जानना चाहेंगे इस साल CUET के बाद जब नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनके लिए आपके पास क्या बेटर ऑफरिंग्स हैं?
3: इस साल हमने JCVS जो है हमेशा एक पहल करता है, आज से 50-52 साल पहले जब ये कॉलेज चालू हुआ था उस समय हमारे यहाँ बिल्कुल यूनिक कोर्सेज शुरू हुए थे जो कहीं और नहीं थे
2: जी।
3: लेकिन समय के साथ वो थोड़ा आउटडेटेड हो गए, तो हमें ऐसी ज़रूरत महसूस हुई, बच्चों से बात की इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है उस सबको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ ऐसे कोर्सेज को इंट्रोड्यूस कराया पुराने कोर्सेज को हटा के। इसे एक ज़माने में वो चीज़ वोकेशनल थी, अब वो वोकेशनल नहीं रही
2: जी।
3: अब AI का ज़माना है
2: जी।
3: आजकल जो है वो जो आयाम है जो जॉब दिलवाने की वो सब बदल चुके हैं, तो बच्चों में क्या पॉपुलर है, बच्चा क्या पढ़ना चाहता है। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का हमारे जो एडमिशन कमेटी की कन्वीनर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में डीन हैं हनीत गांधी जी, उन्होंने एक डाटा इकट्ठा करा और उस डाटा में एक बात निकल कर आई कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे पॉपुलर कोर्स कौन सा है, यहाँ उससे बाद 5-10 ऐसे पॉपुलर कोर्सेज हैं यहाँ बच्चा जाना चाहता है
2: जी।
3: तो उसमें बात सामने आई कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे पॉपुलर कोर्स है BCOM ऑनर्स।
2: अच्छा।
3: हाँ, हर बच्चा BCOM जो कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा है
2: जी।
3: हमारे यहाँ साइंस के कोर्सेज तो ज्यादा है नहीं, खाली BSc कंप्यूटर साइंस का कोर्स है हमारे यहाँ पर, बाकी हमारा जो है वो एक कॉमर्स बेस्ड कॉलेज है बेसिकली
2: जी।
3: तो कॉमर्स का बच्चा सबसे पहले उसकी चॉइस रहती है BCOM ऑनर्स और फिर उसके बाद सेकेंड चॉइस रहती है उसकी इकोनॉमिक्स ऑनर्स, और अगर इन दोनों ऑनर्स में उसको एडमिशन नहीं मिलता तो देन वो बच्चा चाहता है कि BA प्रोग्राम मिल जाए मुझे जिसमें कुछ अच्छे कॉम्बिनेशन मिल जाए उसको, जैसे कि कॉमर्स इकोनॉमिक्स मिल जाए या कंप्यूटर कॉमर्स मिल जाए या इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स मिल जाए, तो फिर बच्चे की चॉइस ये रहती है। जब बच्चा BA प्रोग्राम में इन कॉम्बिनेशन को पढ़ता है तो जो स्ट्रीम उसको चाहिए थी उसके पास रहता है और दूसरा उसको समय थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, वो कंपटीशन की तैयारी कर सकता है। और BA प्रोग्राम में एक और जो फ़ायदा ये होता है कि जो दो सब्जेक्ट पढ़ता है बच्चा, जैसे कि अगर मान लो आप BA प्रोग्राम पढ़ रहे हैं कॉमर्स इकोनॉमिक्स का, तो उसमें आपका एक सब्जेक्ट मेजर बन जाता है, उसमें आप उसके ज़्यादा पेपर पढ़ते हैं, और दूसरा सब्जेक्ट माइनर बन जाता है और आप दोनों ही सब्जेक्ट के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए एलिजिबल रहते हैं उसके लिए, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और ऑनर्स में भी मेजर माइनर बना सकते हैं लेकिन ऑनर्स में बच्चे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तो जो बच्चे कुछ अपनी स्टडी के साथ साथ कुछ और करना चाहते हैं, एड ऑन करना चाहते हैं, तो उनके लिए BA प्रोग्राम एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। तो इस बार पहली बार हमने अपने यहाँ पर जो हमारे पास अभी खाली कॉमर्स की स्ट्रेंथ थी खाली 92, इस बार हमने 340 कर दी, 340 बच्चे हैं जो आउटडेटेड कोर्सेज हमने खत्म किए और नए कोर्सेज हम ले गए।
2: तो सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि वो कौन से आउटडेटेड कोर्सेज थे जिनको आपने खत्म कर दिया?
3: जैसे मैंने बताया हमारे यहाँ वोकेशनल कोर्सेज चल रहे थे, वो वोकेशनल कोर्सेज शुरू हुए थे आज से 52 साल पहले, जैसे ह्यूमन रिसोर्स कॉमर्स के कंपोनेंट क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंस, फाइनेंस होता है उसके अंदर, मार्केटिंग होती है, इस तरह की चीजें, सप्लाई चेन आता है, मटेरियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो उस समय भी बीकॉम ऑनर्स नहीं होता था, तो ये नए नए पेपर एचआरएम होता है ऐसे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो उस समय इन कोर्सेज को शुरू किया गया यहाँ पर, फिर धीरे धीरे धीरे कॉमर्स ऑनर्स शुरू हो गया, तो ये जो हमारे कोर्सेज बने थे इनको और रिफाइंड फॉर्म में और अच्छे तरीके से कॉमर्स में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया और बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम चालू लगे, तो धीरे धीरे हमारा कोर्स आउटडेटेड हो गया था, तो हम चाहते थे कि हमारे बच्चे को एक ऐसा कोर्स पढ़ाया जाए, और ये जो हमारा वोकेशनल कोर्स में हम जिन चीज़ों को पढ़ाते थे उसमें बच्चे का मेजर और माइनर डेवलप नहीं हो पाता था, तो उसको एमकॉम में एडमिशन नहीं मिलता था, उसको पढ़ाने वाले टीचर्स तो कॉमर्स के होते थे लेकिन कॉमर्स डिपार्टमेंट उसकी ओनरशिप नहीं लेता था, तो बच्चों को बहुत नुकसान होता था। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर इस बार हमने क्या किया कि जैसे मेरा 340 ये बहुत बड़ा जंप है,
2: बिल्कुल
3: 340 बच्चों को हमारे कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स जो मोस्ट सॉट आफ्टर पॉपुलर कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसमें एडमिशन दिया जाएगा। उसके बाद हमने 100 बच्चों को दिया है, दो सेक्शन बनाए हमने बीए प्रोग्राम के, और उस बीए प्रोग्राम में जो कॉम्बिनेशन रहेंगे वो रहेंगे कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का, ये भी वही पॉपुलर जो है कॉम्बिनेशन है। फिर हमने एक कॉम्बिनेशन दिया बीए प्रोग्राम में कंप्यूटर एंड कॉमर्स, क्योंकि जो टीचर्स का जो कोर्स खत्म हुआ वर्कलोड भी खत्म नहीं होना चाहिए, बच्चों की स्ट्रेंथ भी उतनी रहनी चाहिए, इन सब बातों को ध्यान में रखे इन सारे कामों को हमने किया। एक और हमने बड़ा, क्योंकि मैं खुद मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, तो एक मैंने और बीए प्रोग्राम जो बहुत पॉपुलर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स, एक ये भी कोर्स हमने रखा है हम, और इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी बड़ा पॉपुलर कोर्स है, उसकी अभी हमारे पास 78 सीट्स थी, उसको हमने 92 कर दिया। और इंग्लिश ऑनर्स भी बहुत पॉपुलर कोर्स है बच्चों में, उसके हमने दो सेक्शन बना दिए इस बार।
2: तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी क्या ये मैनेजेबल है?
3: हाँ, इसको सब बातों को ध्यान में रखकर किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखा गया है, टीचर्स का वर्कलोड, एक्स्ट्रा टीचर हम नहीं मांगेंगे किसी से, तो वर्कलोड को भी ध्यान में रखा गया है, और जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है वो भी जो गड़बड़ा लेना, इन सब बातों को ध्यान में रखकर बड़ा साइंटिफिक तरीके से इस काम को हमने करा।
2: वाओ, दैट्स सो लवली। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल, स्टाफ अगर सपोर्ट कर रहा है तो ऐसी चीज़ों का बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिलना बनता ही और मिलना ही चाहिए। ऐसी काफ़ी सारी कोशिशें कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में हो रही हैं। थैंक यू सो मच सर, इतनी इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपके जरिए ही हमें मिल पाई, अदरवाइज शायद नहीं मिल पाती।
3: थैंक यू वेरी मच।
1: जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप तक पहुंची हमारे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से। अल्फाजन कैंपस कॉलिंग सुन रहे हैं आप ओनली ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो। दुनिया लगातार बदलती जाती है और लगातार जो है बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो आते जाते हैं। अब देखिए ना, एकेडमिक्स के साथ साथ वोकेशनल स्किल्स की भी इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है, कोर्सेज करिकुलम्स में चेंजेस किए जा चुके हैं, और अपडेटेड रहना ना अब केवल स्टूडेंट्स की ज़रूरत नहीं रह गई है बल्कि कॉलेजेस की भी ज़रूरत बन चुकी है। लगातार अपने आप को बदलते रहना, इवॉल्व

होते रहना, रिन्यू होते रहना, यही तो पहचान है ना जमाने के साथ लगातार आगे बढ़ते रहने की। और यही काम करता है हमारा कैंपस, क्योंकि वो जानता है अच्छी तरह से कि जो लोग यहाँ से होकर गुजरेंगे वही आगे जाकर ज़माने को बदलेंगे और उसकी दिशा को तय करेंगे। फिलहाल आज के मेरे इस प्रोग्राम का समय जो है ना वो यहीं पर ख़त्म होता है। अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन आप सुन रहे हैं मेरे यानी स्वाति के साथ। हमारे साथ रहीं माइला नेकी, हमारी सहयोगी, जिन्होंने पहुँचाई आप तक एडमिशन से जुड़ी हुई इतनी सारी ढेर जानकारी। आप सुनते रहिए हमारा ये प्रोग्राम और साथ साथ आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो। स्वाति को दीजिए इजाजत।

ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राजस्थान के श्रीगंगानगर में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और मानव तस्करी मामले का संज्ञान लिया है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली NCR में 5 परिसरों पर छापेमारी, सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं एन स्पेस लेबोरेटरीज को बधाई दी है। अमरीका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, संघर्ष समाप्त होने के लिए ईरान के साथ हुआ समझौता अब प्रभावी नहीं है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए हैं। ईरान ने हॉर्मुजगान प्रांत और महाशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। वैश्विक तेल की कीमतों में 3% से अधिक की उछाल आई। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार के साथ खड़ी है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राज्य में 6 जिलों में वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल ओडिशा के दौरे पर रहेंगे और स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराकर फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अगला मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। तो ये थे अब तक के FM रेनबो के समाचार। स्टे ट्यून्ड फॉर सिटी लाइट्स।

नमस्कार, हेलो आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों आप सुन रहे हैं म्यूजिकल यूर्स, आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6, दिल से दिल तक। दिल्ली और एनसीआर के अलावा आप हमें अलग अलग जगहों पर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पर सुन रहे हैं दोस्तों। और अब वक्त हो गया आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम का, जिसका नाम है सिटेलाइट्स। और आज सिटेलाइट्स के साथ स्टूडियो में मौजूद आपका दोस्त रोस्ट प्रवीण शर्मा।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

वेलकम है फ्रेंड्स, एवं पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। दोस्तों, दिल्ली के मौसम की बात करें तो आज तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। नमी का स्तर 57% है और वायुमंडलीय दबाव 998 के स्तर पर है। जहाँ तक कल के मौसम की बात है दोस्तों, कल के मौसम में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने का अनुमान है। दोस्तों IMD के अनुसार दिल्ली NCR के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके अनुसार रुक रुक कर बारिश होने का दौर जारी रहेगा। तो सुनते रहिए प्रोग्राम सिटी लाइट्स आकाशवाणी FM रेनबो पर।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

दोस्तों, एनएसडी ने भारत रंग महोत्सव 2027 में भाग लेने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये देश और विदेश के अन्य शहरों में आयोजित होगा। अंतिम तिथि 27 अगस्त है। इसकी विस्तृत जानकारी www.nsd.gov.in पर उपलब्ध है दोस्तों।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स। साथियों, सातों जिला अदालतों में 12 जुलाई को विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें 31 मार्च 2026 तक के लंबित चालानों का निपटारा होगा। आप सोमवार सुबह 10 बजे से traffic.delhipolice.gov.in/लोक अदालत से चालान स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की जानकारी आपको मिलते रहेंगी, बस आप बने रहेगा, मतलब सुनते रहेगा प्रोग्राम्स डिलाइट्स आकाशवाणी FM रेनबो पर।
0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दोस्तों, हजरत निजामुद्दीन से नांदेड़ के बीच विशेष रेलगाड़ी का परिचालन किया जाएगा। गाड़ी संख्या 07621 नांदेड़ से प्रत्येक शनिवार 25 जुलाई तक हजरत निजामुद्दीन आएगी और वापसी में गाड़ी हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से प्रत्येक रविवार 26 जुलाई तक नांदेड़ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, एक और ट्रैफिक अपडेट आपको देते चलते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में वजीराबाद रोड पर डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के चलते भजनपुरा मेट्रो स्टेशन से ब्रजपुरी कट के बीच दोनों तरफ की सड़क पर दिसंबर तक यातायात प्रभावित रहेगा। दोस्तों, दिल्ली ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर कहा गया है कि निर्माण स्थल पर लेन प्रतिबंध के कारण जाम मिल सकता है, खासतौर पर पीक आवर्स में ज़्यादा परेशानी हो सकती है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अपनी यात्रा के लिए पहले से पर्याप्त समय लेकर चलें। दोस्तों, तो इसी तरह की जानकारी आप लेते रहेंगे, बस आप सुनते रहिएगा सैटेलाइट्स आकाशवाणी FM रेनबो पर। लेते हैं एक प्यारा सा ब्रेक, सुनते हैं गीत।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सैटेलाइट आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। साथियों, डीडी ने अपनी नागरिक आवास योजना और डीडीए टावरिंग हाइट्स कलकडुमा आवास योजना के फ्लैट्स की बुकिंग की तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। आप नागरिक आवास योजना के तहत नरेला और सिरसपुर में HIG, MIG, LIG और EWS फ्लैट्स को बुक कर सकते हैं। दोस्तों,

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

दोस्तों आप इस वक्त सिटी लाइट्स के खूबसूरत महफिल में दोस्त प्रवीण शर्मा के साथ और सुन रहे हैं म्यूजिकल योर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को मजबूत कराने के उद्देश्य से नरेला सेक्टर A1 एवं A4 में रिठारा और कोहाट एनक्लेव में निर्मित अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बस डिपो का भी उद्घाटन किया गया। दोस्तों ये डिपो विशेष रूप से फीडर और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा।

दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में एमसीडी प्रशासन ने मिरांडा हाउस कॉलेज के सहयोग से अपशिष्ट प्रबंधन के लिए रिसाइकिल केंद्र को स्थापित किया है। इस केंद्र के जरिए कूड़े और कचरे को कम करना, फिर से इस्तेमाल करना और रिसाइकिल करने का काम किया जाएगा।

दोस्तों, डीयू के नॉन कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड एनसीवेब में बुधवार यानी आज से बीए प्रोग्राम और बीकॉम कोर्स के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू की गई है। दोस्तों, इसमें दिल्ली की रहने वाली छात्राएं ही आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, डीयू में छात्र फेलोशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार नॉन गेट वालों के लिए डीटीयू की तरफ से टीचिंग असिस्टेंटशिप फेलोशिप शुरू की गई है। इसकी परीक्षा इस महीने होगी। इसके अलावा बीटेक ज्वाइंट एडमिशन कमेटी जेएसी के जरिए आज छात्रों की काउंसलिंग होगी। बीए इकोनॉमिक्स कोर्स के लिए भी पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी प्रवेश की अंतिम तिथि 23 जुलाई है। दाखिले से जुड़ी अन्य जानकारी डीटीयू की वेबसाइट dtu.ac.in पर उपलब्ध हैं।

दोस्तों आखिरकार बारिश ने दस्तक दे ही थी। जी हाँ, बारिश का मौसम शुरू हो गया, आ ही गया दोस्तों। कम से कम भीषण गर्मी से तो निजात मिली हमें। बस हम कुछ सावधानियां अपनाकर बारिश से होने वाली बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं दोस्तों। मसलन उबला हुआ या फिर फिल्टर के हुआ पानी पीना चाहिए और स्ट्रीट फूड से हमेशा परहेज करना चाहिए। मच्छरों से बचाव के लिए घर और आसपास पानी जमा ना होने दें। भीगने पर तुरंत सूखे कपड़े पहन लें दोस्तों, और सूखी और इसके अलावा बिजली के तारों यानी खुले हुए बिजली के तारों और उपकरणों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। जब भी घर से बाहर जाएं तो कोशिश करें कि छाता अपने पास ही रखें, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है।

और इसके अलावा दोस्तों, बारिश के दिनों में बाहर कटे हुए फल, सलाद और खुले में रखे हुए खाद्य पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करें, सिर्फ ताजा और गर्म पका हुआ पौष्टिक आहार ही लें। इससे हम अपने आप को बारिश के दिनों में भी सुरक्षित रह सकते हैं, रख सकते हैं दोस्तों। वैसे दोस्तों, आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं, आप अपने सुझाव शिकायत हमें मेल भी कर सकते हैं। दोस्तों हमारा ईमेल आईडी नोट करें, हमारा ईमेल आईडी है feedbackfmrainbow@gmail.com। जी हाँ, feedbackfmrainbow@gmail.com। और सुना ना भूलें, हर महीने के तीसरे शुक्रवार को दोपहर 1 बजे प्रोग्राम बिंदास बोल। अब फिलहाल प्रवीण शर्मा आपसे लेता है सैटेलाइट से इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि मुक्ति सैनी का कीजिए आप स्वागत, क्योंकि जो अगला प्रोग्राम लेकर आ रही है इसका नाम है मैसेज मसाला मिक्स। तो आपसे फिर होगी भेंट, तब तक के लिए प्रवीण शर्मा का नमस्कार।

लीजिए प्रस्तुत है आपके एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रम्बानन मंदिर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राजस्थान के श्रीगंगानगर में 13 वर्षीय नाबालिग लड़के के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और मानव तस्करी मामले का संज्ञान लिया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया है कि अब तक

वाली सारस MK2 के डिजाइन चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं N-Space लेबोरेटरीज को बधाई दी है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, संघर्ष समाप्त करने के लिए ईरान के साथ हुआ समझौता अब प्रभावी नहीं है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार के साथ खड़ी है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राज्य में 6 जिलों में वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में आज 2% से अधिक की गिरावट आई। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, कमजोर वैश्विक संकेतों और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के कारण बाजार में मंदी आई। और स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराकर फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अगला मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। तो ये थे अब तक के FM रेनबो के समाचार।

वाकई में दुनिया कुछ अगर सोचती है तो आप उस पर गौर करते हैं? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप ज्यादा गौर करते हैं, कम नहीं बहुत ही ज्यादा गौर करते हैं और अपनी ना सुनकर बाकी सबकी सुनते हैं। मैं कौन, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर हूँ आपके लिए प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स लेकर। कि दुनिया पलटे या ना पलटे, कुछ हो या ना हो, लेकिन अगर हम खुश तो फिर सब खुश है। और इसी नोट के साथ, इसी वादे के साथ, इसी खूबसूरत मौसम में बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक्स लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। लेकिन आपको एक छोटा सा काम करना होगा, वैसे वो काम करना आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आपको हमें अपने व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से बताना होगा कि अगर किसी को कोई गिफ्ट देना हो, अगर किसी को कोई गिफ्ट देना हो तो वो क्या हो सकता है, वो तोहफा क्या हो सकता है जिससे उसे कोई ना कोई सीख मिले या हमारी याद भी उसके दिल में रहे, उसके आसपास रहे, और मतलब बेहद ख़ास वो गिफ्ट उसके लिए हो सकता है। तो ऐसा कुछ अगर आप बता सकते हैं तो ज़रूर बेहद तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। 9868107070 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं आप बात कि अगर किसी को गिफ्ट देना हो जो उसके लिए एक सीख का भी सबब बन जाए, एक सीख की तरह उसके जीवन में काम करे, तो वो क्या हो सकता है, बताइएगा और हमारे साथ जुड़ जाएगा। और सॉन्ग्स तो आपके लिए बेहद एक से एक खास मैं लेकर आई हूँ, मुझे ऐसा लगता है। फिलहाल आप भी सुनकर ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है।

आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी रेडियो 102.6 पर, साथ ही लाइव स्ट्रीम के जरिए भी हम आप तक पहुंच रहे हैं। न्यूज ऑन AIR ऐप के जरिए आप हमें लाइव सुन सकते हैं और कोई भी मौका ऐसा हम आपको नहीं देने वाले कि आप चूक जाएं और फिर कहें कि भाई आपने हमारा मैसेज नहीं लिया, आपको हम सुन नहीं पाए और हम तो बहुत परेशान है। ये है तो यहां पर अगर आप जुड़ जाएंगे ना 102.6 के साथ, आपकी नाराजगी, आपकी परेशानी सब जो है ना धीरे धीरे धीरे धीरे ही सही पर खुद ब खुद खत्म होती रहेगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ में और मुक्ति आ गई आपको सारी तकलीफों से देने की छुट्टी। तो फिर 9868107070 पर आप बता दीजिए कि अगर आप किसी को उपहार देना चाहते हैं तो वो क्या हो सकता है जिससे उसे कोई सीख भी मिले। अगर किसी को ऐसा उपहार देना चाहते हैं उनके लिए प्रेरणा बने तो कुछ विचारणीय चीजें हो सकती हैं, जैसे एक अच्छी किताब, किसी महान व्यक्ति की जीवनी या कोई मोटिवेशनल पुस्तक या फिर एक जर्नल डायरी जिसमें वो अपने विचार लिख सके और अपना विकास ट्रैक कर सके। एक अनुभव भी गिफ्ट दिया जा सकता है, जैसे किसी कार्यशाला या सेमिनार का पास, जिससे उन्हें कुछ नया सीखने का मौका मिले। मोहम्मद सरफराज आलम का ये दर्शना बाजार अररिया बिहार से मैसेज है। भाई बहुत ही खूबसूरत बात, देखिए एक डायरी वाला जो ना वो मुझे बेहद पसंद है, मुझे भी बहुत सारी डायरीज गिफ्ट मिलती है, मुझे डायरी पेन का बहुत ही ज़्यादा शौक है और मैं अक्सर कोशिश भी करती हूँ कि किसी को बहुत ही सुंदर किताब या कॉपी या जर्नल हम दे सकते हैं ताकि वो भी अपनी कुछ बातें जो है जो भी जिंदगी की वो उसमें लिख सकते हैं। ये है मोहम्मद वकार फरीदी का, छुपे छुपे से रहते हैं सारे अरमा नहीं होते, कुछ ऐसे एहसास होते हैं। देखिए यहाँ पे शायरी आपने शुरू कर दी है और वो भी आपने इतने सारे फूल और पता नहीं क्या क्या बना के भेजा, आप सही से हमें लिख के भेजिएगा। बिजनौर से हमको ये मैसेज आया है, ये है नरेंद्र सोनी का मैसेज है पटियाला से और वो लिखती है हम तो किसी को गिफ्ट देना होगा तो किताबें ही देंगे। किताबों से अच्छी सीख मिलती है इसलिए सब शायद किताबें ही लिखने वाले हैं। चलिए देखते हैं शायद किसी का कुछ खास निकल आए। होता है ये कहते हैं कि सीख देनी है तो आप मुझे याद आती हैं तो आपको बहुत ही

अच्छी चीज़ें हम गिफ्ट में कर सकते हैं। ये बात है कमल बिस्ट का, दिलशाद कॉलोनी से ये मैसेज आया है और वो क्या गिफ्ट देना चाहते हैं। शायद उन्होंने बहुत ही खुलकर नहीं लिखा, वो कोई फ़ोटो भेजना चाह रहे हैं। देखिए आप लिख दीजिए ना, फ़ोटो से क्या काम। आप गिफ्ट दो तो आपको यही पूरी तरह, हमारे को यही कहना है कि अगर किसी को गिफ्ट देना हो तो पूरी तरह पता होना चाहिए कि सामने वाले की पसंद क्या है, वरना तो कैश मनी ही दे देनी चाहिए, जिसकी वजह से वो अपनी पसंद की कोई भी चीज़ खरीद सकता है, ताकि बाद में ये कोई ना कहे कि हमें ऐसा गिफ्ट दिया जो हमारे काम का ही नहीं है। ये है किशन वंजनी नीलम स्वाति का, किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। भाई देखिए पैसे तो क्या है ना, पैसे तो आप दे सकते हैं किसी को कभी भी, लेकिन फिर भी अगर गिफ्ट देना हो तो गिफ्ट वो क्या हो सकता है। प्यारी सी गुड इवनिंग भारत जी का मैसेज है, आप कैसी हैं। और बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, सामने वालों को माफ़ करोगे तो सामने वाले के दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आप उसके काबिल हो जाओगे, सामने वाले की नज़रों में महान कहलाओगे। पर यहाँ महान बनने की बात नहीं कह रहे, अगर किसी को कोई गिफ्ट देना हो ना तो वो अगर कोई गलती की ही नहीं, अगर वो हमारे दोस्त हैं तो फिर माफ़ करने की बात तो आती ही नहीं है। तो इसलिए हमें बताइए कि अगर किसी को कोई गिफ्ट देना हो तो वो क्या हो सकता है। गिफ्ट देना हो तो मैं ऐसी बुक दूंगा जिसे पढ़कर उन्हें अच्छी सीख और प्रेरणा मिल सके। राकेश बोरा का बुराड़ी से हमको ये मैसेज आया है। किसी को अगर कोई गिफ्ट देना हो तो मैं घड़ी गिफ्ट करूंगा, क्योंकि घड़ी से समय देखकर वो हमेशा समय का सदुपयोग करेगा। पंकज का अमरावती महाराष्ट्र से ये मैसेज आया। भाई बहुत ही खूबसूरत बात हमें लिखकर भेज रहे हैं। जिन लोगों ने अभी अभी हमें ट्यून इन किया है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, तो कह सकते हैं कि बस आगाज हुआ है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं समापन की ओर, लेकिन अभी जो समय है उसमें तो रहते हैं ना थमकर, उसको क्यों जाया जाने दिया जाए। तो ब्यूटीफुल ट्रैक्स का सिलसिला जारी रहेगा 102.6 पर, साथ ही आपके मैसेजेस का साथ होगा। आपको बताना है ये कि अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो वो गिफ्ट क्या हो सकता है जिससे उन्हें कोई लाइफ में सीख भी मिल सके।

मोहम्मद वगार फरीदी का मैसेज हम तक पहुंचा, अगर मैं किसी को गिफ्ट दूंगा तो वो अपना वक्त, अपना टाइम जो बहुत कीमती है, हमें किसी के साथ गुजारा हुआ वक्त बहुत याद रहता है, किसी के साथ बिताए लम्हे हमेशा याद रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात। किसी को तोहफा देना पड़े तो अपने तजुर्बे के अनुभव, किसी पर अंधा भरोसा मत करना। किसी को उधार पैसे देते हो तो उस समय दान समझकर देना, क्योंकि वापस नहीं मिले तो मलाल ना हो। अनिल शर्मा का सरिता विहार से ये मैसेज है। बहुत ही खूबसूरत बात आपने लिखी है। और ये है कि आज के टॉपिक पर मैं यही कहना चाहूँगी कि जब बात किसी को ऐसा कोई गिफ्ट देने की आती है तो मेरा तो कोई अच्छी बुक देना चाहूँगी जिन्हें रीड करके कुछ सीख मिले एंड वो इंसान हमेशा याद करे कि ये गिफ्ट मिलने के बाद हमें कितनी अच्छी सीख मिली है। अंशी का मैसेज है हस्तिनापुर मेरठ से। ये मुझे मेरे फ्रेंड ने यूएसए से रेडियो गिफ्ट में दिया था और रेडियो लेकर मेरी लाइफ 8 मंथ तक चेंज हो गई और मैं बहुत ही हैप्पी हूँ और एनर्जी भरा रहने लग गया हूँ। मुझे लगता है कि जब रेडियो मेरे साथ है तो सब कुछ सही है, सब कुछ मेरे साथ है। सनी कंबोज का मैसेज हमें आया है पटियाला से, और ये मैसेज है इस जगह पर हम आपको सुन रहे हैं और हम अगर गिफ्ट देना चाहेंगे तो श्रीमद् भगवद गीता गिफ्ट करेंगे अपने जीवन करेंगे जिससे जीवन का सत्य और जीवन जीने की कला मिल जाए। बहुत ही खूबसूरत बात यहाँ पर लिखकर भेजी है। और स्पेशल गिफ्ट है भगवद्गीता देना चाहूँगा। नरेंद्र सोनी का ये मैसेज हम तक पहुँचा है। मैं किसी को श्रीमद् भगवद्गीता गिफ्ट के रूप में देना चाहूँगा क्योंकि ये जीवन जीने की एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका मानी जाती है। ये हमें बताती है कि किस प्रकार हम अपने कार्य को ईमानदारी से कर सकते हैं। रंजीत कुमार मंडल का बिहार से ये मैसेज हम तक पहुँचा है। शॉर्ट स्टोरीज बुक्स एंड बुकेट शैलजा का नीमराणा से ये मैसेज आया है। जी हाँ, शॉर्ट स्टोरी की जो बुक होती है ना वो बहुत ही प्यारी होती है। मैंने बहुत सारी पढ़ी हैं बचपन में, अक्सर मम्मी लेकर आया करती थी। और ये है कि यदि गिफ्ट दूँ तो पेन दूंगी, वो दूंगी जहाँ से वो, हाँ पेन दूंगी और वो जब लिखना शुरू करेगा और वो जो जो चीज़ें लिखेगा उससे वो सब हकीकत बनता जाएगा। तो यही है मेरे शब्दों का सफ़र जो उन तक पहुँचाना चाहूँगी। बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है, लेकिन आपने अपना नाम नहीं लिखा यहाँ पर। और यह है कि बच्चों के अच्छे मार्क्स लाने पर अच्छा सा पेन देती हूँ और फ्रेंड्स को अगर देने की बात आए तो मैं प्लांट्स गिफ्ट करना चाहती हूँ और साथ ही उन्हें देती भी हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि वो प्लांट अपने घर में लगाते हैं और वो घर की शोभा जो है वो बढ़ा देते हैं। मिसेज धर्म भाटिया का मैसेज हमें आया है रोहतक से, और ये मैसेज हम तक पहुँचा है कि दोस्तों को तोहफे में मैं दुश्मनों के बीच रहने की दुआएं दूंगा क्योंकि दुश्मनी में लोग बहुत गलत कर जाते हैं। अपने समय पर और ढेर सारा प्यार भी देना चाहूँगी। डॉली का मैसेज हम तक ये पहुंचा और बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपके हम तक पहुंच रहे हैं। जरूर हम इन मैसेजेस को शामिल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे। लेकिन उससे पहले ब्यूटीफुल ट्रैक्स का सिलसिला भी जारी रहेगा आपके लिए। आप हमें मैसेज, जी हाँ, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर। अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो फिर वो क्या होगा जिससे उनको लाइफ में कुछ सीख भी मिल सके, और साथ ही साथ ये भी बता सकते हैं आप हमें कि आप अभी इस समय कहाँ पर मौजूद है। जी हाँ, बारिश हो रही है, रिमझिम फुहार हो रही है, आराम से जो भी ड्राइविंग कर रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं, आराम से जाइए, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिए। स्लिपरी रोड बहुत ही ज़्यादा है, हम भी वहीं से आ रहे हैं तो इसलिए आपको हिदायत दे रहे हैं। आप मानेंगे तो वही आपके लिए भी भला और सबके लिए। फिलहाल यहाँ छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपके मैसेजेस और साथ ही सॉन्ग्स रहेंगे आपके लिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।
5: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
6: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुं सुदर्शन।
7: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

देखिए कभी कभी यूं ही हमने सुनने में मिला है ना कि भाई ज़िंदगी हमसे खफा है, पता नहीं हमसे क्यों नाराज़ है, हमने क्या कमी की है या हमारी क्या गलती है। देखिए ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी सबके साथ है, सबके पास है और उतनी ही मिली है जितनी मिलनी है। अगर आप ये सोचेंगे ज़िंदगी हमारे साथ बेवफा होगी, ज़िंदगी हमारे साथ गलत कर रही है या ज़िंदगी ने ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो करते हैं वो हम करते हैं, जो सोच है वो हमारी सोच है। अगर हम अपनी सोच अच्छी रखेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। अगर हाँ हमसे कोई गलती हुई है, हम कहीं लेट सवेर हैं या हमारे काम परफेक्ट नहीं है या हमारे काम अच्छे नहीं है, हमारा काम करने का तरीका अच्छा नहीं है, तो चीज़ें हमारी ओर से गलत है, ना कि हम हर बात के लिए ज़िंदगी को दोष देते रहेंगे। तो चलिए आपके मैसेजेस की, अगर किसी को गिफ्ट देना हो तो क्या गिफ्ट दिया जा सकता है। अगर किसी अपने को वाकई कुछ तोहफा देना है तो उस तोहफे में मैं उसे अपना वक्त दीजिए, क्योंकि वक्त से कीमती कुछ नहीं होता और ना ही कुछ होगा। मैं अक्सर अपने अजीज दोस्तों की दीवार घड़ी ही गिफ्ट करता हूँ ताकि उनको मेरी याद हर पल आती रहे। ललित राणा का पंजाब से ये मैसेज आया है। अगर हम किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो हमेशा यादगार रहे, तो अगर कोई ग्रुप ओकेजन है जिसकी बर्थडे है, फेयरवेल है, रियूनियन है, तो हम पूरे ग्रुप की अच्छी सी पिक्चर लेकर उस फोटो को प्रिंट करके उन्हें मैग्नेटिंग फ्रेम के साथ गिफ्ट कर सकते हैं और वो हमेशा के लिए यादगार बन सकती है। मारिया जोसफ का गोवा से ये मैसेज आया है। बहुत ही खूबसूरत बात कही है आपने, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसे बहुत सारे लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, तो मैं भी ज़रूर से करना चाहूँगी। और ये है, हमारे विचार से किसी को उपहार देना हो तो उसको तकलीफ़ में साथ दीजिए, इससे बड़ा और यादगार और कोई उपहार नहीं हो सकता। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी का शांति नगर सोनीपत से ये मैसेज आया है। भुवनेश का मैसेज है अशोक विहार दिल्ली से, वो लिखते हैं कि आई हैव टू गिव एनीवन सम गिफ्ट, आई वुड गिव दैट पर्सन अ म्यूजिक सिस्टम और अ रेडियो बिकॉज म्यूजिक इज दैट थिंग विच कैन मेक एनीवन फ्रेश एंड हैप्पी। वेरी ट्रू भुवनेश, और ये बेस्ट मेडिसिन भी कहा जाती है। जोया का मैसेज है, वो लिखती हैं, अगर मुझे गिफ्ट देना होता तो मैं तवा कढ़ाई चकला बेलन देती कि घर का खाना बनाओ और खाओ बाहर का, घर का खाना बनाओ और खाओ बाहर का खाना खाकर मोटा होना सही बात नहीं है। वेरी ट्रू, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और अगर आपके लोग और बहुत से लोग ये सुनेंगे तो बोलेंगे जोया हमारे पास ये गिफ्ट कर दीजिए, हम चाहते हैं ये आ जाएगा तो हम खाना बनाना शुरू कर देंगे। तो जोया आप ये कदम बहुत से लोगों के लिए अग्री कर जाएंगे वो। और ये मैसेज है हमारे पास बागपत से, रजनी शर्मा का मैसेज आया, गिफ्ट देना है तो वॉच से अच्छा गिफ्ट होता ही नहीं है। जो टाइम की कद्र नहीं करते उनको वॉच को देकर शायद टाइम की कद्र हो जाए। अच्छा, ऐसा होता है कि जो टाइम की कद्र नहीं करते अगर उन्हें घड़ी दे दी जाए तो वो टाइम की कद्र करने लगते हैं। तो चलिए भाई ऐसा है तो फिर तो करना चाहिए, फिर तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको घड़ी जो है वो गिफ्ट करनी चाहिए। रजनी जी काफ़ी अच्छा विचार है। अगर मुझे अपने सबसे प्यारे दोस्त राजीव रंजन को कोई गिफ्ट देने का मौका मिले तो मैं उसे कोई महंगी चीज़ नहीं बल्कि खूबसूरत डायरी और एक अच्छा सा पेन दूंगा, साथ में एक छोटा सा संदेश लिखूंगा, प्रिय राजीव, ज़िंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहना, हर दिन अपने सपनों की ओर एक नया कदम बढ़ाना, हमारी दोस्ती हमेशा ऐसी ही सच्ची और मजबूत बनी रहे। मेरा मानना है कि सबसे बड़ा गिफ्ट महंगी चीज़ें नहीं बल्कि प्यार, विश्वास और साथ होता है, यही दोस्ती की असली पहचान है। राजीव तुम हमेशा खुश रहो। गौतम का मैसेज है औरंगाबाद बिहार से, ये भाई बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है और अगर सुन रहे होंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। विल प्लांट अ ट्री इन दिस नेम, भाई ये है संजय श्रीवास्तव का ये मैसेज हमको आया है एमपी से। जी बिल्कुल, हम जो प्लांट जो ट्री है वो हम प्लांट कर सकते हैं और साथ ही साथ कुछ खूबसूरत सी ऐसी चीज़ें भी हम लगा सकते हैं जो हमारी यादगार बनी रह सकती हैं जीवन में। और ये है कि अगर मुझे किसी को सबसे अच्छा गिफ्ट देना हो, मोहम्मद फुरकान का ये मैसेज है, तो बहुत ही अच्छा है, घड़ी, मोबाइल, पेन और टॉर्च तो सभी गिफ्ट करते हैं, लेकिन मैं बादाम गिफ्ट करूंगा, बादाम खाकर, ताकि उन्हें ये याद रहे कि हमारे कुछ रिश्तेदार भी हैं तो उन्हें भी याद करते रहे। भाई बहुत अच्छी बात है। और चलिए जो जो गिफ्ट करने की सोच रहे हैं ना, मुझे लगता है धीरे धीरे गिफ्ट कर भी देना चाहिए, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। फ़िलहाल मैं भी आपको इंतज़ार नहीं करवाने वाली हूँ क्योंकि मैं बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक यहाँ पर लेकर आई हूँ आपके लिए। आप 9868107070 पर बता सकते हैं कि अगर किसी को बहुत अच्छा गिफ्ट देना हो तो वो गिफ्ट क्या हो सकता है। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी, प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स में।

प्यार में तो हैं आप, ये तो मुझे पता चल रहा है आपके मैसेजेस से कि भाई गिफ्ट देने के लिए एकदम उतावले हैं कि बस गिफ्ट करना है तो लीजिए। आपने गिफ्ट की बात कीजिए, हम तो बेहतरीन से बेहतरीन गिफ्ट दे चुके हैं, वही सुनकर अच्छा लग रहा है कि चलिए गिफ्ट तो करते हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा एक कहते ना जरिया बना रहता है, एक अच्छी मुलाकात हो जाती है इसी बहाने, और जो प्रेम प्यार कह सकते हैं, बातचीत कह सकते हैं, वो आगे बढ़ जाती है। कोई हमारे लिए कितना खास है ये भी हम कहीं ना कहीं जता सकते हैं। मीरापुर गाँव से ये मैसेज आया है मंजीत का और भूमा का, वो लिखते हैं कि हमें तो लगता है कि सबसे अच्छा गिफ्ट होता है ड्राई फ्रूट गिफ्ट देने चाहिए, खाकर तंदुरुस्त हो जाइए। भाई देखिए, मुझे भी आप ड्राई फ्रूट दे सकते हैं, मुझे बहुत पसंद है ड्राई फ्रूट्स और उनको भिगा के खाने में सुबह सुबह मजा आ जाता है। आज के विषय में इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि ऐसा उपहार देना हो जीवन भर में याद रहे तो रेडियो देना चाहूंगा। केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि देश दुनिया की खबरों, ज्ञान, संगीत और संस्कारों का सच्चा साथी है। ये समय का सदुपयोग सिखाता है, नई नई बातें सिखाने का अवसर देता है और अकेलेपन में भी हमेशा साथ निभाता है। रेडियो नहीं ये ज्ञान की निशानी है और आवाज़ में छिपी नई कहानी है, गंगा नहीं संस्कार भी सुनाता है। ये है हांसी हरियाणा से श्रीमती मोनिका अवाना का मैसेज हम तक पहुंच चुका है। भाई बहुत ही खूबसूरत सी बात आपने लिखी है, सबसे बढ़िया पौधा गिफ्ट कर दो। प्रवीण चौहान का मध्य प्रदेश से ये मैसेज हम तक पहुंचा है। और ये है कृष्ण कुमार मिश्र का, मैं लिखता है मैं दिल्ली में रहता हूँ, आज के विषय में यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी को कोई उपहार देना है तो उसकी पसंदीदा फोटो अपने साथ फ्रेम करके दे दीजिए। अरे उसे अगर अकेले चाहिए हो तो, उसे हमारे साथ चाहिए ही ना हो तो। मैं याद किसी को गिफ्ट में देना चाहता हूँ तो वो रिस्ट वॉच दूंगा जिससे वो अपना हर कार्य समय पर कर सके और वो मुझे हमेशा याद

जैसा कि यही मेरा अपना विचार है। यह है हर्षवर्धन पांडे का एमपी से मैसेज आया है। तो चलिए आप भी अपनी बात लिखकर भेज सकते हैं, कौन कौन सी बात है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, दिल खोल कर बता दीजिए। 9868107070 मैं हूँ आपके साथ, आपकी अर्ज दोस्त मुक्ति सैनी रहूँगी सिर्फ 7 बजे तक आपके साथ में। तो इसलिए जो भी मैसेज भेजने भेज दीजिए, क्या गिफ्ट देना चाहते हैं और वो क्यों खास हो सकता है, उससे क्या सीख मिल सकती है, ये भी आप हमें बता सकते हैं। 102.6 पर आकाशवाणी रेनबो और साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हम आपसे जुड़े हुए हैं।

0: और ये हरिओम जी का मैसेज हमारे पास आया है गाजियाबाद से। वो लिखते हैं कि कपल्स के लिए मैं कुल्लू मनाली का एक ट्रिप गिफ्ट करूंगा और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी ताकि ज़िंदगी के सबसे यादगार पल रहें उनके लिए। और ये मैसेज हमारे पास आया है, उपहार देना हमारे समाज में एक पारंपरिक परंपरा है, सबसे अच्छा गिफ्ट प्यार मोहब्बत है। देहरादून से आलोक पवार का और मिनी का ये मैसेज हम तक पहुँचा है। जी हाँ, प्यार मोहब्बत है, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, कैसा भी हो। काफ़ी देरी से हाजिर हुए हैं, चलिए कोई बात नहीं, आ गए तो यही बहुत बड़ी बात है आपके लिए। फारूक अली खान का, फैज़ फराज, फरहीन फरहान फारिया का मैसेज हम तक पहुंचा है। गिफ्ट के साथ साथ समय, और उस समय से आप अगले को यह एहसास दिला दें कि हमारे लिए वो इंसान कितना महत्वपूर्ण है, यह सबसे ख़ास गिफ्ट हो सकता है। तो मुझे लगता है गिफ्ट के साथ साथ उसे आप अपना कीमती समय दे सकते हैं। वंदना शिवांशी का मैसेज है मध्य प्रदेश से, और ये मैसेज हम तक पहुँचा है। मुसीबत और ज़रूरत के वक्त में हेल्प करूंगा, मेरी तरफ से मेरे सभी दोस्तों के लिए यही गिफ्ट होगा। राजन वोरा का दिल्ली से ये मैसेज हम तक पहुंचा है। हमें अक्सर किसी चीज़ की असली कीमत भी तभी पता चलती है जब वो हमसे दूर हो जाती है, जब कोई चीज़ या कोई हमारे साथ होता है वे धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी के बैकग्राउंड में चले जाते हैं, इतने जाने पहचाने कि हमें उन्हें असल में देखना बंद कर देते हैं। लेकिन जिस पल वे नहीं होते, वही खालीपन हमें रुकने और सोचने पर मजबूर करता है कि असल में वहाँ क्या था, उसकी मौजूदगी हमारे लिए कितनी मायने रखती थी। शिशिर का गुड़गांव से ये मैसेज हम तक पहुँचा है, और ये मैसेज है दीपाली बोरा का मैसेज हम तक आया है। भाई क्या कहना चाहते हैं आप, थोड़ा सा क्लियर लिखिए ताकि हम तक ये बात पहुंच जाए। जी हाँ, किसी को अगर आप कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो ऐसी चीज़ ज़रूर दे सकते हैं। यादों की कुछ एल्बम दे सकते हैं, कुछ पुरानी बुक्स दे सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ पहले यादों का, स्कूल टाइम्स में स्लैम बुक्स लिखी जाती थी, फ़ोटोज़ होती थी। कई बार हम पुराने पलों को भूल जाते हैं, अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लग जाते हैं, तो अगर उन पलों को याद किया जाए और उन पलों के बारे में बात की जाए, किसी के साथ बैठकर कुछ वक्त बिताया जाए, तो ये भी अपने आप में बेहद ख़ास होते हैं, जिन्हें हम सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं। और ये गुड्डू ठाकर का मैसेज उज्जैन से है। गांव से मैं मिठाई बनाता था, तो अपनी दुकान पर मैं वो सभी को वही गिफ्ट देता हूँ। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है कि अपनी जो मिठाई आप गिफ्ट करते हैं, देखिए जो बनाते हैं, अगर हलवाई अपनी मिठाई गिफ्ट करने लग जाए तो फिर वही वो खाएगा क्या। लेकिन अगर आप ऐसा काम करते हैं कि आप अपने गांव की मिठाई जो है वो लोगों को देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। कई बार कुछ टेस्ट हमारे गाँव के कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो बहुत पुराने होते हैं, जो बेहद ख़ास होते हैं, और उनका जो मुकाबला है ना वो शायद हो ही नहीं सकता। तो ऐसा ही कुछ होता है, तो उन सब चीज़ों से सभी को जोड़ा जा सकता है, जैसे हम आपके साथ अभी जुड़ गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि आगे आने वाले प्रोग्राम कौन से रहेंगे, तो अभी मैं चलूंगी थोड़ी ही देर में, और फिर आपके साथ 7 बजे रहेंगे सुशांत, और उसके बाद 8 बजे फिर मैं आऊंगी आपके लिए लेकर म्यूजिक मस्ती। तो ये मस्ती चलती रहेगी आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। फिलहाल जो ट्रैक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो प्ले करके जाती हूँ मैं आपके लिए, और मिलते हैं प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती में।
1: जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा, हुए जी।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: आए हाय,
3: तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मैं अभी कुछ लेकर नहीं गई हूँ आपके लिए, बहुत कुछ यहाँ पर लेकर आई हूँ। लेकर आई हूँ आपके लिए म्यूजिक मस्ती। इतने ब्यूटीफुल मौसम में म्यूजिक की मस्ती तो बनती है, और दन दनादन ये म्यूजिक मस्ती चलती रहनी चाहिए, कहीं भी रुकनी नहीं चाहिए। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी। प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती में मस्ती होती रहेगी, क्योंकि जब मस्ती एक बार शुरू होती है ना, तो आसानी से जो रुक जाए वो मस्ती थोड़ी ना होती। और ये रिमझिम पुहार, ये बादल, ये ठंडा मौसम, चाय पकौड़े कॉफ़ी, बस इस मौसम में और क्या चाहिए। चलिए, जो कुछ भी चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन अपने आप का साथ ज़रूर चाहिए कि इस मौसम में बाकी कुछ भी होता रहे, लेकिन एंजॉय करना हमको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि 102.6 के माध्यम से हम लगातार पहुंच रहे हैं आप तक, और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि बैक टू बैक सॉन्ग का सिलसिला जारी रहेगा खास आपके लिए।

जीने के चाहे जितने भी दिन हो ना, बस खुलकर जी लीजिए, खुशी के साथ जी लीजिए, और फिर कल हो या ना हो इसके बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम एक एक पल के बारे में सोच लेते हैं ना, तो जीवन और भी ज़्यादा खूबसूरत खुद ब खुद हम बना लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम करना चाहते हैं, जो हम सोचते भी हैं, जो हम शायद अपनी डायरी में लिखते भी हैं या अपने दिमाग में लिखते हैं या फिर कहीं ना कहीं अपने फ़ोन में भी वो लिख लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें लगता है कि ये हमारी ज़िंदगी में पूरी हो चुकी है। अगर आप इस रास्ते पे हैं तो अब समझ लीजिए कि बिल्कुल सही

दिशा की ओर आप बढ़ रहे हैं या फिर आपका फोकस अगर सिर्फ एक जगह पर हो गया ना तो कहीं ना कहीं आप डगमगा सकते हैं, क्योंकि एक जगह पर फोकस करने से मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ दो चीज़ें तो एक साथ कर ही सकते हैं। आप देखें ना, बहुत सारी चीज़ें हम साथ में करते हैं, चाहे ऑफिस भी जाते हैं, फ्रीलांस भी करते हैं, उसके अलावा हम पढ़ाई भी कर रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन फोकस में अगर दो चीज़ें कोई रहती है ना तो क्रिएटिवनेस बढ़ी रहती है, और कहीं ना कहीं कुछ वो काम करते हैं तो उस पर ध्यान आ जाता है, उस पर करते हैं तो वो ध्यान आ जाता है, तो कुछ ना कुछ नया हम खुद से जनरेट करते रहते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं तो चलिए, धूम धड़ाका मस्ती तो आप करते ही होंगे ना भाई। शादियों का सीज़न है और ये जो बारिश है ना, रिमझिम फुहार जो है ना, कहीं ना कहीं आपको ठंडक पहुंचा रही होंगी, क्योंकि यही लग रहा होगा ना कि भाई अब तो शादी है, अभी सगाई में जाना भी, एंगेजमेंट में जाना भी, रोके में जाना भी, बारात में जाना, इतना पसीना बहेगा तो कैसे चलेगा। देखिए, पसीना अगर आपका रुक गया है ना तो आप समझिए कि अब बारिश से आप कैसे बचेंगे। वाटरप्रूफ मेकअप आपको करना पड़ेगा, और जो लंबे लंबे बड़े बड़े लहंगे आपने ले लिए, लंबे लंबे पल्लू आपने निकाल लिए ना, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही मशक्कत करनी होगी। कहीं ना कहीं इनका ध्यान देते हुए, उठाते हुए जब आप चलेंगे ना तो आपको लगेगा अरे हम गर्मी में ही ठीक थे, वैसे बारिश की जरूरत ना केवल आपको, ना केवल मुझे, हम सभी को बेहद जरूरी थी। तो चलिए, थोड़ी बहुत बारिश का अगर सामना करना पड़ भी रहा है ना तो कोई नहीं जी, चलता है चलता है, क्योंकि ये नहीं ना तो उसके बिना कुछ भी नहीं। कुछ मौसम ऐसे हैं ना, मौसम्स हो गया कुछ मौसम ऐसे अगर नहीं आते ना तो उनका जो कहते ना, दिल में एक दुख दुख सी बनी रहती है, एक याद सी बनी रहती है कि जब तक वो नहीं आता ना, दो दिन से जो ये लगातार बारिश हो रही ना, इतना खूबसूरत मौसम हो गया, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप दिल्ली में, ऐसा लग रहा है कि आप कहीं हसीन वादियों में हैं। तो भाई अपनी साड़ी दिल्ली भी वादियों से कम है क्या भाई? बहुत ही खूबसूरत है और दिल के बेहद करीब है। तो इस दिल्ली में बहुत सारे मौसम ऐसे हैं, बहुत सारी कह सकते हरियाली ऐसी है जो आपके मन को मोह सकती है, और ख़ास ये बारिश के दिनों में तो ये मानसून की जो बारिश है ना, दस्तक दे चुकी है आपके दरवाजे पर। बस दिल खोलकर स्वागत कीजिए इस बारिश का, और फिर देखिए खूबसूरत नज़ारे सिर्फ आपके लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर आइए, बहुत सारी यादें आपके लिए लेकर आइए, उन यादों को बस संजो लीजिए। प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती में मैं हूँ आपके साथ, आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी।

0: यार रिमझिम फुहार से तो कहीं ना कहीं दिल जो है वो गार्डन गार्डन हो गया है और हर जगह हरियाली ही हरियाली छा गई है, ठंडक पहुंच गई है। बस यही ठंडक का तो इंतजार था पसीनों से जो परेशान थे। अब कुछ लोग कहेंगे बारिश से भी परेशान है, तो भाई खुश कहाँ है आप, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ परेशानी देती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी ढूंढना भी तो ज़रूरी है ना भाई। देखिए मौसम है, चीज़ें बदलती रहेंगी, हम बदल जाते हैं हर दिन, हमारे बाल बदल जाते हैं, आँख बदल जाती है, फेस बदल जाता है अगर कह सकते हैं, कई बार स्वेलिंग होगी, कई बार कुछ चेंज लगेगा, कई बार ज़्यादा साफ लगेगा, कई बार टैनिंग लगेगी, कई बार कोई पिंपल आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिन भर चेंज होती रहती है। लेकिन कुछ चेंज है ना, कुछ बदलाव है ना, मुझे लगता है अच्छे के लिए होते हैं। कुछ हो या बहुत कुछ हो या कुछ भी ना हो तो फिर लाइफ तो बोरिंग हो जाएगी ना, तो कुछ ना कुछ चीजें चेंज होती रहनी चाहिए। फिलहाल अब बैक टू बैक सॉन्ग्स का सिलसिला यहाँ चल रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे एक लेना चाहिए छोटा सा ब्रेक, कुछ चेंज तो यहाँ भी बनता है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं आपके साथ प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती में।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,

0: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
1: आज की रात मजा,
0: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
8: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: ब्रेक तो बनता है ना, हर समय काम करते रहो करते रहो करते रहो और ब्रेक ना मिले तो फिर ऐसा अच्छा लगता है, ब्रेक ना हो ना तो फिर जिंदगी अधूरी सी लगती है। जब ब्रेक मिलता है ना तो उसके बाद जो हाइप शुरू होती है, उसके बाद जो फ्रेशनेस आती है, उसके बाद जो चीज़ें होती है ना वो कुछ अलग हटके और कुछ अलग ही चर्चा में रहती हैं। तो मुझे लगा क्यों नहीं आपके साथ भी कुछ ऐसा ही किया जाए। ब्रेक तो बनता है जब जिंदगी में, तो फिर अपने

प्रोग्राम में भी तो ब्रेक बनता है और ब्रेक के लिए जरूरी है कि उसके बाद कुछ नया सा आए। जी हाँ, नया नहीं, बेहद खास आपके लिए आने वाले दो बैक टू बैक सॉन्ग्स और मजा ना आए तो कहना।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती में मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी और 102.6 के माध्यम से मैं बनी हुई हूं आप तक। म्यूजिक की मस्ती चल रही है और मुझे पता है पूरा चाय की चुस्की भी चल रही है। कुछ लोग तो खाने की तैयारी में हैं या फिर अभी जस्ट घर पहुंचे हैं और अब सोच रहे हैं कि थोड़ा सा गर्म पानी पिया जाए या फिर पानी पिया जाए और उसके बाद अपने आप को रिलैक्स किया जाए। तो चलिए कोई बात नहीं, आप हैं इस मूड में या आप हैं इस मौके में तो चलिए ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वॉल्यूम अप कर लेंगे तो आपको और भी ज़्यादा फ्रेशनेस महसूस होगी। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे ना, कैसे कहते हैं ना, म्यूज़िक जो है ना आपको और भी ज़्यादा ताजगी से भर देता है। कहीं गम है तो कुछ अलग से रिफ्रेशिंग से सॉन्ग सुन लीजिए, धूम धड़ाका सुन लीजिए, शादी है या जिस मूड के आप गाने सुनना चाहते हैं, जिस मूड में आप है ना, चाहे आपका मूड कितना ही स्विंग करता हो लेकिन हमारे पास गानों की इतनी भरमार है कि आप चाहे तो अपने मूड को इतनी जल्दी ईज कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, उस समय मन नहीं करता, कोई अगर कह दे तो सुन लेता है। भाई हम है ना कहने के लिए आपके साथ, दिल से दिल तक हम लगातार आप तक पहुँचते रहते हैं और कहते हैं ना म्यूजिकल योर्स, दिल से दिल तक हमारा और आपका रिश्ता है ही इतना खास कि कहते ना कि छूटे ना छूटे ये साथ और हमेशा बना रहे हमारे साथ में। लेकिन कहते हैं कि जब बारिश होती है या ठंडक होती है तो फिर कहते हैं कि कभी कुछ हो रहा है हमें, कभी कुछ ऐसा हो रहा है, तो अपने आप को इससे बचा के रखना भी होता है। माना कि गर्मी का मौसम है लेकिन अगर बारिश हो रही है और ठंडक पहुँचा रही है ना, तो ज़्यादा ये नहीं कि ठंडी चीज़ों को खाने में और भी ज़्यादा आप उतर जाएंगे, नहीं जी, चाहे वो मच्छर हो सकते हैं, चाहे आपको कोई परेशानी हो सकती है, फीवर हो सकता है, ज़ुकाम हो सकता है, खांसी हो सकती है, तो खास अपने आप को बचा के रहिए। अब नहाने की कोशिश भी कर रहे हैं, बारिश भीगना भी चाहते हैं तो जरूर भीगे, लेकिन एहतियात बरतना भी तो जरूरी है। हर चीज की अपनी एक समय सीमा होती है, वो अगर बढ़ा दी जाए, वो अगर लांग दी जाए तो फिर चीजें जो है वो चेंज हो ही जाती है। तो अगर आप चीजें चाहते हैं अच्छी लाना अपनी जिंदगी में तो कुछ बदलाव अच्छे होते हैं उनको अपना लेना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता सकती हूँ, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रोग्राम, यानी कि 9 बजे का समय रहेगा गीतांजलि शर्मा के साथ प्रोग्राम आपकी याद आती रही। उसके बाद होगा रेनबो क्लासिक और सुशांत मल्होत्रा रहेंगे आपके साथ। फिर रंगे महफिल में 11 बजे गीतांजलि आएंगी आपके साथ। तो आप समझ ही गए होंगे, ये कहते कहते मुक्ति कहना चाहती है कि अपना खास ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, प्यार की इज्जत कीजिए। आपकी हमारी मुलाकातें होती रहेंगी आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। फिलहाल बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है मेरे पास, आइए हम और आप मिलकर करते हैं

नमस्कार, वेलकम ऑन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ यानी आकाशवाणी रेनबो। और ये वक्त लग रहा है कि यहीं थम जाए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सी बरसात हो रही है, बहुत ही प्यारा सा मौसम हो रहा है और मेरे पास में कॉफ़ी का मग है जिसे मैं इस कॉफ़ी को पी भी रही हूँ, सॉन्ग्स को इन्जॉय भी कर रही हूँ और मैं जानती हूँ कि आप भी इन सॉन्ग्स को इन्जॉय कर रहे होंगे। वैसे ये वक्त तो आपको पता है किसका है, जी हाँ, आपके फेवरेट शो आपकी याद आती रही का, और इसे लेकर आई हूँ मैं आपके साथ आपकी दोस्त गीतांजलि। खूबसूरत सी बरसात जैसे मैंने पहले कहा, और खूबसूरत सी ये याद हमारी ज़िंदगी का आईना होती है। पलट कर जब हम इसके पन्ने देखते हैं तो खुद को वहीं पाते हैं। आपके पन्ने में कौन सी याद है ज़रा बताइए, और उन यादों के साथ साथ चलते चलते खूबसूरत से ट्रैक्स हम सुनते हुए चलेंगे। जो लोग इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं वो लोग भी इस शो को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे से सॉन्ग्स मैं प्ले करने वाली हूँ आपके लिए। और इसके अलावा जो इस वक्त घर पर हैं या फिर भीगते से मौसम को देख रहे हैं, उनके लिए भी ये शो बहुत ही ख़ास रहने वाला है। एक से एक ट्रैक्स हम आपके लिए प्ले करेंगे, आप इन्हें सुनते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा और आकाशवाणी रेनबो के साथ बने रहिएगा। प्रोग्राम चल रहा है, आपकी याद आती रहेगी, आपकी दोस्त गीतांजलि के साथ। स्टे ट्यून्ड।

ये विसलिंग सुनिए, बहुत ही स्पेशल लगती है ना, और कई लोग तो इसे बहुत ज़्यादा सुनते हैं, बहुत स्पेशल लगती है ये। फिलहाल यहाँ हम देख रहे हैं, कुछ मैसेजेस हमें आ रहे हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी सभी लिसनर्स को कि ये मैसेजेस का जो शो है वो नहीं है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। मैं जानती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी ऐसी यादें, अनगिनत यादें ऐसी जुड़ी होंगी जो आज भी आपके साथ साथ चलती हैं, भीगते गाते गुनगुनाते इस मौसम को जब आप देख रहे होंगे और बरसते आसमान को देख रहे होंगे, बारिश को देख रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा कि ये दौर कभी पिछला दौर भी था, यानी कि कुछ जो अच्छी सी यादें हैं वो हमारे साथ साथ चल रही होंगी। और मैं हमेशा कहती हूँ, यादें बहुत ही अच्छी हों ये ज़रूरी नहीं, यादें कभी कभी दिल को दुखाने वाली भी होती हैं, कभी कभी पुराना ज़ख्म जो है वो हमारी यादों का ताज़ा भी हो जाता है, लेकिन ज़िंदगी का फ़लसफ़ा क्या है, जी हाँ, इसे बिल्कुल जीते जाइए। बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक मैं प्ले कर रही हूँ आपके लिए, इस बरसात में अगर हमने ये ट्रैक नहीं सुना तो फिर कुछ नहीं किया। चांदी मूवी से ये सुरेश वाडकर जी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग मैं प्ले कर रही हूँ आपके लिए, और ये ज़रूर कहूँगी कि आप हमें सुनते रहिए, क्योंकि FM रेनबो पर आपका अपना शो, आपकी याद आती रही इस वक्त चल रहा है, और वक्त जो हमारे साथ चल रहा है वो खूबसूरत सी यादें बना रहा है। तो चलिए यादों में डूबते हैं, एंजॉय दिस ट्रैक।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। FM रेनबो पर रात 9 बजे।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी हाँ, बारिश का मौसम हो और रोमांटिक सॉन्ग ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। इसलिए ये सॉन्ग मैंने आपके लिए प्ले किया है। वैसे ज़िंदगी की खूबसूरत सी यादों में ना रोमांस भी एक बहुत ख़ास जगह रखता है। वैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि पिछली कई बातें आपको ऐसी याद आती होंगी, कई कपल्स इस टाइम बहुत सारी बातें याद कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि बरसात के मौसम में घूमना फिरना, चाय कॉफ़ी पीना और फिर अपनी चीज़ों को सोचना, अपनी फ्यूचर प्लानिंग करना, मतलब बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बारिश से तो हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होती हैं, ख़ास तौर पर मस्ती भरी यादें। बारिश को देखते ही जाने क्यों लगने लगता है कि चलिए इन्जॉय किया जाए। तो ये इन्जॉय करती यादें भी हमारे लिए बहुत ही खास होती हैं। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप, आपकी याद आती रही ऑनली ऑन आकाशवाणी रेनबो पर। चलिए एक और सॉन्ग मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ, अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ में, सूरज हुआ मध्यम। सुनिए, इन्जॉय दिस ट्रैक।

रात की इस तन्हाई को बयां करती ये बातें, ये यादें हमारे साथ साथ चल रही थीं, लेकिन अब इन यादों को थोड़ा सा रोकने का वक्त आ गया है। कल फिर से लौटेंगे, दोबारा से आपसे जुड़ेंगे अपने शो के साथ जो आपका भी फेवरेट है, आपकी याद आती रही। फिलहाल इस प्रोग्राम में मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द मिलेंगे, बहुत जल्द जुड़ेंगे और होंगी फिर ढेरों बातें। जाते जाते एक फाइनल ट्रैक आपके लिए, इन्जॉय दिस ट्रैक, टेक केयर।

0: right, that is The Carpenters with Rainy Days and Mondays. All right, time on this 2 o'clock says it's 37 and a half minutes past 10 p.m. Time for me to take a short and sweet break. Do not let it be that. Do not touch the dial. If you're enjoying the show right now, I'll be back with some more songs. Well, beautiful ones. Even there's a country song also, which I'll be playing that. Yeah, I'm enjoying it, but how's the weather outside? I'm inside the studio right now. I don't know exactly if it's still raining or not. But even if you're driving right now, listening to the show, and it's drizzling or it's raining, and there's less of traffic, I'm sure that you are actually enjoying it right now. But like I said before, I have to take a short and sweet break. Break time. I'll be right back after these messages.
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: कोयल सी तेरी बोली,
3: हाय
2: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, वेलकम ऑन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ यानी आकाशवाणी रेनबो। मैंने आपसे किया था वादा कि बहुत जल्द मिल रही हूँ आपसे। लीजिए, 11 बजे का वक्त है और ये वक्त है रंगी महफिल का, एक ऐसी महफिल जिसमें हम और आप जोड़ते हैं। गज़लों की खूबसूरत सी दुनिया होती है और इसमें हम खो जाते हैं। प्यार मोहब्बत इश्क पे बहुत सारी शेर व शायरी हुई है और बहुत सारी गज़लें भी हैं। जगजीत जी की आवाज़ में एक बहुत ही बेहतरीन सी गज़ल मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ, इसे सुनिएगा, इंजॉय करते रहिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतांजलि। तो लीजिए, प्ले कर रही हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सी ये गज़ल, इसे सुनिए, इसमें खो जाइए।

कितनी खूबसूरत सी लाइनें हैं ना, ज़िंदगी चांद से बेहतर नज़र आती है। जी हाँ, जब इंसान इश्क मोहब्बत में होता है तो ज़िंदगी तो उसे चांद के बराबर ही लगती है। ज़मीं पर होता है महबूब के साथ तो लगता है चांद की सैर कर रहा है, और ये एक्सपीरियंस बहुत ही खास, बहुत ख़ास होता है। फिलहाल आपको याद दिला दूं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो पर, आपकी दोस्त गीतांजलि के साथ। और गज़लों का ये कारवां रुकना नहीं चाहिए। गज़लें हमारी ज़िंदगी में तन्हाई के वक्त में हमें बहुत कुछ दे जाती हैं। ज़िंदगी का सुकून सिमटा है इन गज़लों में। सुनिए अगली गज़ल।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। FM रेनबो पर रात 9 बजे।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, अब एक नए समय पर, हर गुरुवार शाम 4 से 5 FM रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

कौन है जो एक साये की तरह मेरे दिल को छूता हुआ गुजर जाता है, कभी पास से कभी दूर से, एक आवाज, एक नगमा, एक गीत बनकर रख रख में उतर जाता है, कभी पास से कभी दूर से। कौन है जो मुझे अपनी तन्हाई का एहसास दिला जाता है, एक खालीपन, सूनापन छोड़ जाता है। मैं उसे देखना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ, उंगलियों से उसके चेहरे को छूना चाहती हूँ। कौन है जो पास रहकर भी मुझसे दूर है, कदमों की आहट सुनती हूँ, पलटती हूँ, उसे देखती हूँ, तस्वीर बन जाती हूँ, खुद को भूल जाती हूँ, बेखुद हो जाती हूँ।

0: चूड़ियां ले लो, चूड़ियां, रंग बिरंगी चूड़ियां।
1: जी हाँ, गजलों का ये सफर चलता रहा, हम भी इसके साथ साथ चलते रहे। गजलों की दुनिया बहुत ही अलग होती है ना, कव्वालियों की दुनिया, गजलों की दुनिया आपको जाने कहाँ से कहाँ ले जाती है। फिलहाल प्रोग्राम में वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन जाते जाते बाजार फिल्म की एक बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल मैं आपके लिए प्ले कर जा रही हूँ। इसे सुनते रहिएगा, इंजॉय करते रहिएगा, और FM रेनबो आकाशवाणी के सभी प्रोग्राम्स को आप यूं ही प्यार स्नेह से सुनते रहिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, शुभ रात्रि।
0: अब धानी चुड़िया कहाँ से लाऊं मैं, यही चित्ती मुश्किल से मिली, हफ्ते भर की कमाई गई ना इसमें।

आकाशवाणी रेनबो पर अब प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। नई दिल्ली में भारत और म्यांमार के बीच दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय बैठक संपन्न हुई। संगठित अपराधों से मिलकर निपटने पर चर्चा भी हुई। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की। भारत ने पश्चिम एशिया के बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मध्य प्रदेश के श्योपुर में गगनयान मिशन के लिए एकीकृत मुख्य पैराशूट एयरड्रॉप परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। सरकार ने तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफगानिस्तान के कृषि सिंचाई और पशुपालन मंत्री मौलवी अताउल्ला ओमारी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान जताया कि भारत इस वर्ष 7% की वृद्धि दर के साथ विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रिजर्व बैंक के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सोने के आभूषणों के बदले दिए गए ऋण में इस वर्ष मई में लगभग 70% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। भारतीय खेल प्राधिकरण और सफदरजंग स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर ने खेल विज्ञान, खेल चिकित्सा, खिलाड़ियों के पुनर्वास और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आकाशवाणी रेनबो पर आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम जीरो आर शो। आपके साथ मैं आपकी दोस्त अर्चना।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

आकाशवाणी रेनबो पर अब प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। नई दिल्ली में भारत और म्यांमार के बीच दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की बैठक संपन्न हुई। संगठित अपराधों से मिलकर निपटने पर चर्चा हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की। भारत ने पश्चिम एशिया के बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने उड़ीसा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मध्य प्रदेश के श्योपुर में गगनयान मिशन के लिए एकीकृत मुख्य पैराशूट एयर ड्रॉप परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। सरकार ने तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफगानिस्तान के कृषि सिंचाई और पशुपालन मंत्री मौलवी अताउल्ला उमारी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। नई दिल्ली में 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान जताया कि भारत इस वर्ष 7% की वृद्धि दर के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रिजर्व बैंक के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सोने के आभूषणों के बदले दिए गए ऋण में इस वर्ष मई में लगभग 70% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। भारतीय खेल प्राधिकरण और सफदरजंग स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर ने खेल विज्ञान, खेल चिकित्सा, खिलाड़ियों के पुनर्वास और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की अंडर 23 महिला मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 पदक पक्के किए। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में भारत की 9 मुक्केबाज सेमीफाइनल में पहुंची। और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी

0: रहा है आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: कोयल सी तेरी बोली, कु
1: हाय
0: कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु, तेरी
1: हाय।
0: तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

आकाशवाणी रेनबो पर आइए अब सुनते हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। नई दिल्ली में भारत और म्यांमार के बीच दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय बैठक संपन्न हुई। संगठित अपराधों से मिलकर निपटने पर चर्चा हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की। भारत ने पश्चिम एशिया के बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मध्य प्रदेश के श्योपुर में गगनयान मिशन के लिए एकीकृत मुख्य पैराशूट एयरड्रॉप परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। सरकार ने तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफगानिस्तान के कृषि सिंचाई और पशुपालन मंत्री मौलवी अताउल्ला उमारी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। नई दिल्ली में 17वां कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान जताया है कि भारत इस वर्ष 7% की वृद्धि दर के साथ विश्व की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रिजर्व बैंक के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सोने के आभूषणों के बदले दिए गए ऋण में इस वर्ष मई में लगभग 70% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। भारतीय खेल प्राधिकरण और सफदरजंग स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर ने खेल विज्ञान, खेल चिकित्सा, खिलाड़ियों के पुनर्वास और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और खेलों में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की अंडर 23 महिला मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 पदक पक्के किए और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में भारत की 9 मुक्केबाज सेमीफाइनल में पहुंची। और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्टा कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

आकाशवाणी रेनबो पर अब आपके लिए लेकर आए हैं हम अपना अगला कार्यक्रम जिसका शीर्षक है भुलाए ना बने। तो आइए सुनते हैं कुछ यादगार गीत जिन्हें हम हमेशा गुनगुनाते रहना चाहते हैं। आपके साथ हूँ मैं आपकी दोस्त अर्चना।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं FM रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की। भारत ने पश्चिम एशिया के बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल कुवैत के विदेश मंत्री शेख जर्रा जाबेर अल अहमद अल सबा से मुलाकात की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के क्षेत्रीय प्रभावों पर चर्चा की।

0: नई दिल्ली में भारत और म्यांमार के बीच 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय बैठक हुई। संगठित अपराधों से मिलकर निपटने पर चर्चा की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाई टेस्ट किया। सरकार ने तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफगानिस्तान के कृषि सिंचाई और पशुपालन मंत्री मौलवी अताउल्लाह उमारी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। विभिन्न कार्यक्रमों सहित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अगरतला में त्रिपुरा व्यापार सम्मेलन 2026 में शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान जताया कि भारत इस वर्ष 7% की वृद्धि दर के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की अंडर 23 महिला मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन। 9 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्के किए। विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्टा कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया। और दिल्ली में आज बादल छाए रहने की संभावना। सुबह और दोपहर में कई जगहों पर हल्की बारिश का अनुमान। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ 102.6 MHz पर। आइए अब हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम मिडनाइट मेलोडीज का टाइम। यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, है एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय उजला है, प्रातः के 4:25। आइए आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की। भारत ने पश्चिम एशिया के बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल कुवैत के विदेश मंत्री शेख जर्रा जावेर अल अहमद अल सबाह से मुलाकात की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के क्षेत्रीय प्रभावों पर चर्चा की। नई दिल्ली में भारत और म्यांमार के बीच 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय बैठक हुई। संगठित अपराधों से मिलकर निपटने पर चर्चा की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने

अफगानिस्तान के कृषि सिंचाई और पशुपालन मंत्री मौलवी अताउल्ला ओमारी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। विभिन्न कार्यक्रमों सहित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अगरतला में त्रिपुरा व्यापार सम्मेलन 2026 में शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान जताया कि भारत इस वर्ष 7% की वृद्धि दर के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की अंडर 23 महिला मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन। 9 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्के किए। विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्टा कोस्त्यूक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया। दिल्ली में आज बादल छाए रहने की संभावना। सुबह और दोपहर में कई जगहों पर हल्की बारिश का अनुमान। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम सारेगामा का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया

आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल

बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। प्रातः के 5 बजे हैं, आइए आप सुनते हैं FM रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न पहुंच गए हैं। वे भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की। भारत ने पश्चिमी एशिया के बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल कुवैत के विदेश मंत्री शेख जर्राह जाबिर अल अहमद अल सबा से मुलाकात की, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के क्षेत्रीय प्रभावों पर चर्चा की। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अगरतला में त्रिपुरा व्यापार सम्मेलन 2026 में शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान जताया है कि भारत इस वर्ष 7% की वृद्धि दर के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की अंडर 23 महिला मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन। 9 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्के किए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों राजस्थान हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में रात से ही बारिश हो रही है। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेमो चैनल के साथ। समय उजला है भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का। यूँ जुड़े रहिए और सुनते रहिए

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो।

0: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।